आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 जून 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

0: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।
1: जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक

0: आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्यस्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं और प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। आरंभ करते हैं मातृ वंदना के साथ।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। लीजिए, आप सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: और श्रोताओं, इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। इसका प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से किया गया। इस समय प्रातः के 6:30 हुए हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।
1: आधुनिक युग विज्ञान की तुमुल प्रगति का है। आज मनुष्य विज्ञान के सहारे नई सृष्टि रच रहा है, वह नए उपग्रह बनाकर अंतरिक्ष में छोड़ रहा है। कृत्रिम गर्भाधान तथा परख नली संतान के प्रयोग भी सफल हो चुके हैं। ऐसे प्रयोग भी हो रहे हैं जिनसे माता के गर्भ का सहारा न लेते हुए शिशु का जन्म प्रयोगशाला में हो जाए। ऐसी स्थिति में बौद्धिक वर्ग ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में अत्यंत शंकालु हो गया है। वह समझता है कि विज्ञान के नवीनतम आविष्कारों ने ईश्वर के मिथ्यात्व को सिद्ध कर दिया है तथा आज ईश्वर को कोई स्थान नहीं रह गया है। पर यदि हम ध्यान पूर्वक अपने युग की प्रगति का अवलोकन करें तो हमें प्रतीत होगा कि नव्यतम वैज्ञानिक अन्वेषण ईश्वर और तत्वज्ञान के मिथ्यात्व का बोध नहीं कराते, परंतु उसके अस्तित्व और उसकी महत्ता को ही पुष्ट करते हैं। तात्विक ज्ञान की दृष्टि से वेदांत की ज्ञान प्रणाली सर्वोत्कृष्ट है। वेदांत की दृष्टि से प्रत्येक जीव ही शिव है, हर आत्मा ही परमात्मा है। अज्ञान के कारण जीव अपने ईश्वरत्व का बोध नहीं कर पाता। इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य ईश्वर के ही समान सब कुछ करने में समर्थ है, उसमें अनंत शक्ति है। पर हां, उसे इस शक्ति के प्रकटन का उपाय जानना चाहिए। मनुष्य दो स्तरों पर कार्य करता है, शरीर के स्तर पर और मन के स्तर पर। यदि वह अज्ञान के बंधनों को काट सके तो वह दोनों धरातलों पर असीम शक्ति संपन्न हो जाएगा। शरीर भौतिक धरातल है और इसी पर विज्ञान की अलौकिक शक्तियां प्रकट हुई हैं। यह जो मनुष्य नई सृष्टि रच रहा है, उपग्रह बना रहा है।

0: यह इसी सत्य की पुष्टि करता है कि मनुष्य में अनंत शक्ति है। जैसे बाहरी जगत के संदर्भ में, वैसे ही भीतरी या अध्यात्म जगत के संबंध में भी। यदि किसी दिन गर्भ के बाहर प्रयोगशाला में शिशु का जन्म हो गया तो उससे ईश्वर को कोई आंच नहीं आती, बल्कि उससे मनुष्य का ईश्वर तो ही सिद्ध होता है। गड़बड़ी इसलिए उत्पन्न होती है कि हम ईश्वर को व्यक्ति विशेष समझते हैं और उसके संबंध में कल्पना करते हैं कि वह कहीं विराजित होगा और वहां से विश्व का कामकाज चला रहा होगा। ईश्वर वास्तव में ऐसा नहीं है, वह तो विश्व में सर्वत्र व्याप्त नियम है, अथवा आइंस्टीन की भाषा में कहें तो महत्बुद्धि है। जैसे धर्म इस महत्बुद्धि अथवा सर्वव्यापी नियम की खोज है, उसी प्रकार विज्ञान भी इसी की खोज है। नई सृष्टि बनाने अथवा उपग्रह रचने अथवा प्रयोगशाला में शिशु उत्पन्न करने के मिस से वास्तव में विद्वान विज्ञानी उस अनुस्यूत नियम या महत्बुद्धि को ही पकड़ना चाहता है। जिस दिन वैज्ञानिक उस सर्वानुस्यूत नियम को पकड़ लेगा, उस दिन वह ईश्वर ही हो जाएगा। धर्म भी ठीक यही बात करता है। यहां धर्म का तात्पर्य वेदांत से है। इस दृष्टिकोण से विचार करने पर पता चलता है कि विज्ञान और ईश्वर में कोई विरोध नहीं है। विज्ञान का अर्थ उसके आविष्कारों से नहीं लगाना चाहिए। उपग्रह, कृत्रिम गर्भाधान अथवा गर्भ के बिना उत्पन्न शिशु, यह सब विज्ञान नहीं है, वह विज्ञान का चमत्कार है। विज्ञान ज्ञान की अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति को कहते हैं। जब हम इंद्रिय ग्राह्य जगत को छानबीन का विषय बनाकर उस सर्वानुस्यूत नियम को पकड़ने जाते हैं तो वह विज्ञान की प्रणाली कहलाता है, और जब मन को खोज का विषय बनाकर उस ओर आगे बढ़ते हैं तो वह धर्म की प्रणाली के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मनुष्य का ईश्वरत्व अकाट्य है। इसी अर्थ में वेदांत कहता है कि मनुष्य ही ईश्वर है। केवल अज्ञान की परतें भर खुलनी है कि वह छिपा हुआ ईश्वरत्व प्रकट हो जाएगा। विज्ञान उत्तरोत्तर मनुष्य के इसी ईश्वरत्व को उद्घाटित कर रहा है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चिंतन। प्रातः के 6:35 हुए हैं श्री रामचरितमानस से।

पक्षीराज गरुड़ को अपने पूर्व जन्मों का वृत्तांत सुनाते हुए काकभुशुंडी ने बताया कि शायद ही कोई ऐसी योनि होगी जिसमें उन्होंने जन्म नहीं पाया। अपने अनेक जन्मों में उन्होंने योग, जप, तप, दान, पुण्य सभी कुछ किया। कलयुग में उनका जन्म अयोध्या के एक शूद्र कुल में हुआ। उस जन्म में वे मन, वचन और कर्म से भगवान शिव के आराधक थे। शिव भक्त होने का उन्हें मात्र अभिमान ही नहीं था, बल्कि वे अन्य सभी देवताओं की निंदा भी करते। कलयुग में धर्म के विरुद्ध आचरण होता है। डींग मारने वाले पंडित और दंभी व्यक्ति संत कहलाते हैं। स्त्री वश में होकर व्यक्ति मदारी के बंदर की तरह नाचता है। काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये सब लोगों के गुण समझे जाते हैं। शिष्य गुरु के उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता। स्वयं गुरु भी ज्ञान दृष्टि रहित होता है। तनिक से लाभ के लिए लोग गुरु की हत्या तक कर डालते हैं। ये है कलयुग की विशेषता।

0: अभी आप श्री रामचरित मानस में आज का प्रसंग सुन रहे थे। कलाकार थे सुरेश वाटकर। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 6:45 हुए हैं और प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि समय की। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर मुकेश कुमार भार्गव से जानकारी। विषय है खरीफ फसलों में संतुलित उर्वरक का उपयोग।
1: किसान भाइयों, आने वाला समय खरीफ फसलों का होगा और खरीफ फसलों से अच्छा उत्पादन के लिए अच्छा प्रबंधन उपाय अभी से करना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है संतुलित उर्वरक उपयोग। संतुलित उर्वरक उपयोग से आशय है किसान भाइयों, जो अनुशंसित मात्रा में है, जिस फसल के लिए जितनी खुराक है वह मृदा परीक्षण के आधार पर दी जाए और एक समन्वित प्रणाली होती है उसके माध्यम से पूर्ति की जाए। यहाँ किसान भाइयों ये बताना भी जरूरी है कि समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली फसल उत्पादन के लिए जो मुख्य कारक होते हैं उसमें सबसे पहले गोबर की खाद आता है, जिसको हम जीवांश खाद कहते हैं। गोबर की खाद हम नाडेप के माध्यम से दे सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से दे सकते हैं। आजकल प्राकृतिक खेती का दौर चल रहा है तो घन जीवामृत के माध्यम से देते हैं। तो ये सारी फसलें के लिए जो आवश्यक होती हैं, सारे पोषक तत्व देती हैं, इसको फसल की बुवाई से पहले खेत की आखिरी जुताई के समय दी जाता है। लेकिन अभी आवश्यकता है ऐसी खादों का, आप सही तरह से उनको बना लें और ताकि वो आने वाले समय में आपको उपयोगी हो सके। दूसरा आता है हरी खाद। हरी खाद भी एक ऐसी खाद है जो जीवांश पदार्थ की मात्रा बहुत तेजी से जमीन में बनाती है और बढ़ाती है। आने वाले समय में कभी कभी वर्षा हो जाती है, आप देखते हैं, तो हरी खाद में जो सन है, ढेंचा है या उड़द मूंग है, इसका भी बीज आप फसल में डाल सकते हैं। तो खेत में डालेंगे तो 25-30 दिन की जब ये हरी खाद की फसल हो जाती है तो खेत में इसकी पलटाई कर दें। खेत में जब पलटाई कर देते हैं तो ये 25 से लेके 80 किलोग्राम तक प्रति हेक्टर नाइट्रोजन फिक्स करती है। और ये जैसे हमारी धान की फसल लगाएंगे या जो भी फसल लगाएंगे उसमें प्रतिपूर्ति नाइट्रोजन की करने में बहुत सहायक होती है और मिट्टी की भौतिक दशा में बहुत अच्छा सुधार लाती है। तीसरी बात आती है किसान भाइयों, जब हमने ये दो उपाय कर लिए, जीवांश खाद दी, हरी खाद दी, अब आता है कि हमको जैव उर्वरक जो हमारे ऐसे हैं, जो चाहे वो बैक्टीरिया हो या हमारी जो फफूंद है, जो मित्र हैं, लाभकारी हैं, जिसमें एजिटोबैक्टर है, एजोस्पोरिलियम है, ये अनाज वाली फसलों के लिए उपयोगी है, या ब्लू ग्रीन एल्गी है जो धान के लिए उपयोगी है, और साथ ही राइजोबियम है या फास्फोरस गोलक जीवाणु है, इसके टीके भी लगाए जाते हैं। तो ये बातें हमको ध्यान रखना चाहिए जब हम बीजोपचार करते हैं, तो उस खेत में हमको जैव उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। या खेत की जुताई के समय भी किसान भाइयों, हम ऐसे उर्वरकों का कुछ मात्रा में मिट्टी में मिला के बुरकाव कर सकते हैं ताकि जैव उर्वरकों की पूर्ति, जो वहाँ का माइक्रोबियल एक्टिविटी है, वो बढ़ सके। फिर आती है कि रासायनिक उर्वरकों को हम देना है। जब हम ये सारा समन्वित करते हैं तो रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता हमारी 50% तक कम की जा सकती है और वो 50% से हमारी फसल की उत्पादन की लागत भी कम होगी। तो हम रासायनिक उर्वरक जब देते हैं, चाहे अनाज वाली फसल हो या दाल वाली फसल, अनाज वाली फसलों में हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश देते हैं, जिसमें फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा नाइट्रोजन की 2 भागों में या 3 भागों में मात्रा दी जाती है। खासतौर से खरीफ में अब धान की जब बोनी की जाती है तो नाइट्रोजन को 2 या 3 भागों में स्प्लिट डोज में दी जाता है। लेकिन जब मूंगफली है, सोयाबीन है, उड़द है या जो ऐसी फसलें दलहन परिवार से तालमेल रखती है, उनके लिए हम एक ही बार में देते हैं, तो उसमें संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन की ये प्रणाली अपनाते हैं तो बहुत कम मात्रा में रासायनिक खादों की आवश्यकता होती है और रासायनिक उर्वरक महंगे भी होते हैं, पर्यावरण के लिए अति ज़्यादा देने से नुकसान भी होता है, जमीन का भी दुष्प्रभाव छोड़ते हैं। तो संतुलित मात्रा में, अनुशंसित मात्रा में देने की उपाय करना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया को समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली कहलाती है। अब किसान भाइयों बात आती है, जो हम फसल लगाने जा रहे हैं, यदि हम दलहनी परिवार की लगा रहे हैं तो हम उसके लिए दलहनी परिवार के लिए जो राइजोबियम है या जो एजिटोबैक्टर है अनाज वाली फसलों के लिए, उसको अभी से व्यवस्था करें और उसको छाया में रखें, कभी भी इसको धूप में नहीं रखना चाहिए। और जब हम जैसे जो खाद बनाते हैं उसको भी खुली मात्रा में ना छोड़ें और उसको छाया में रखें। जब बीज उपचार करेंगे तो बीज उपचार के प्रक्रिया में राइजोबियम का उपयोग करें, फिर उसके बाद आप फफूंदनाशक से उपचार करें। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, आने वाले खरीफ में आप समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से संतुलित उर्वरक उपयोग कर सकते हैं, अपनी फसलों की लागत कम कर सकते हैं, पर्यावरण को और मिट्टी के स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं।
0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि समय की। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय प्रातः के 6:50 हुए हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ देर बाद 6:55 पर सुनिएगा संस्कृत में समाचार। हिंदी में समाचार होंगे 7:00। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। पर्यावरण संदर्भित एक लघु वार्ता होगी हमारे केंद्र से 7:05 पर। प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से 7:10 पर। 7:20 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। प्रातःकालीन सूचना परख कार्यक्रम होगा नमस्कार शिवपुरी अपने निर्धारित समय 7:45 पर। 8:00 सुनिएगा समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश 8:30 पर। 9:00 सुनिएगा लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। इसमें आज के कलाकार होंगे बादाम सिंह और साथी और अर्चना जाटव। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषश्च ह्यः नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यांमार भारत देशयोः मिथः सुरक्षां सम्पर्कं च समेत्य देशद्वयोः सम्बन्धानां समेपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्यानन्तरं विदेश सचिवः विक्रम मिसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेश व्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय साहमत्यं प्रकटितम्।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: राष्ट्रपतेः द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतस्य नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, महासागरादि नीतिषु म्यांमार देशः महत्वपूर्णः सहभागी अस्ति। ह्यः राष्ट्रपतिभवने म्यांमार देशस्य राष्ट्रपत्युः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य स्वागतं कुर्वन्ति राष्ट्रपतेः मुर्मुः अवदत् यत् उभयोः देशयोः मध्ये पुरातनाः सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् म्यांमार देशः भारतस्य दक्षिण पूर्व एशिया देशस्य प्रवेशद्वारः अस्ति, अपि च एकमात्रः आसियान देशः अस्ति यस्य भूसीमा भारतेन सह संलग्ना अस्ति। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धिः CEPA इति ह्यः क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः देशद्वयोः आर्थिक रणनीतिक सम्बन्धान् दृढयिष्यति। वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्री गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः नूतनापणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते

0: वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धेः अन्तर्गतं भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पाद समूहेषु विपणौ प्रतिशत 98-मिता शुल्क मुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः, श्रमिकेभ्यः, महिलाभ्यः, कृषकेभ्यः, मत्स्यजीविभ्यः, सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः च महत्वपूर्णरूपेण लाभो भविष्यति।
1: I am confident that this comprehensive agreement
2: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: of our shared future.
0: भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षामन्त्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्याम् अभवत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्रिश्च रिचर्ड माल्सः उपवेशनस्य अध्यक्षताम् कृतवन्तौ। श्रीसिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षासम्बन्धः सुदृढः अभवत्। श्रीमार्स अवादीत यत् ऑस्ट्रेलिया भारत देशौ रक्षा सहभागितां सुदृढः अकुरुताम्। देशद्वयं सामुद्रिक क्षेत्रे मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। वार्तायां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विषये प्रगतिः समीक्षिता, यया सहभागितायाः नूतन मार्गस्य अन्वेषणं भविष्यति। भाजपेति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिननवीनः ह्यः नवदिल्ल्यां दलस्य वरिष्ठैः पदाधिकारिभिः कार्यकर्तृभिः च सह उपवेशनं कृतवान्। प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् दलस्य सांसदः, प्रवक्ता च डॉक्टर संवितपात्रावर्यः नरेन्द्रमोदीप्रशासनस्य 12 वर्षाणां सेवायाः विषये, सङ्गठनात्मकविस्तारस्य विषये तथा च समाजस्य विभिन्नेषु वर्गेषु दलस्य प्रसारस्य विषये विवरणानि विनिमयीकृतवान् इति वार्ताः।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
4: Both sides underscored the
5: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
4: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रैंडन लिंच कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने बताया कि भारत को ओमान की 98% टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, जो ओमान को होने वाले भारत के 99% से अधिक निर्यात को कवर करती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किए। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंदर सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 7:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है पर्यावरण चर्चा। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपसे पर्यावरण से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। श्रोताओं, पर्यावरण आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बन चुका है, जिसके लिए न केवल हमारी सरकार वरन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तमाम देशों की सरकारें इस ओर ध्यान दे रही हैं। श्रोताओं, पर्यावरण को बचाना आज समय की सबसे बड़ी मांग है और यह पर्यावरण केवल जंगल और पहाड़ों तक ही सीमित नहीं है, वरन हम लोगों के आसपास रहने वाला स्थान भी पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है। श्रोताओं, यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हमारे घर से निकलने वाला गंदा पानी एक व्यवस्थित नाली से बहकर गांव के बाहर तक चला जाए, जिससे कि इधर उधर गंदगी न फैल सके। नगरीय क्षेत्रों में व्यवस्थित क्रम से चूंकि नालियां बनी रहती हैं, जिससे गंदगी एकत्रित नहीं हो पाती है, लेकिन कभी हम देखते हैं कि प्लास्टिक की पन्नियां जमा हो जाने के कारण ये नालियां अवरुद्ध हो जाती हैं, चौक हो जाती हैं और उनमें पानी इकट्ठा होने लगता है। तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि हमारे घर के बाहर कोई भी कूड़ा करकट इकट्ठा न होने पाए। नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका और नगर निगम द्वारा चलाई जाने वाली कचरा गाड़ी, इस दिशा में किया गया एक सकारात्मक प्रयास है। इसके अलावा जगह जगह पर रखे हुए कूड़ेदानों का भी हमें उपयोग करते हुए कूड़ा उन्हीं के अंदर हमें डालना चाहिए, जिससे कि आसपास किसी भी तरह की गंदगी न फैले। श्रोताओं, हमें चाहिए कि पानी को भी हम बर्बाद होने से रोकें। जितनी जरूरत हो उतना ही पानी प्रयोग में हमें लाना चाहिए। अनावश्यक रूप से पानी को सड़कों पर फैलने से हमें अब रोकना होगा। तो श्रोताओं, हमें ऐसा विश्वास है कि इन छोटी छोटी बातों पर अगर हम ध्यान देंगे तो अपने आसपास साफ सफाई का वातावरण बना सकेंगे और इस प्रकार से हम पर्यावरण को भी स्वच्छ रख सकेंगे। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण चर्चा। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी का प्रसारण FM 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर बनी सहमति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश जल संरक्षण और जल संचयन के कार्यों में देश में अग्रणी। प्रदेश में सबसे पहले इंदौर संभाग से शुरू होगा मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा में बसों का संचालन, और भोपाल के साथ ही झाबुआ और छिंदवाड़ा समेत प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी टीम बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया था। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी सांसद और प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने पत्रकारों से बातचीत में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के प्रयासों पर हुए विचार विमर्श का ब्यौरा साझा किया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का मौका मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश जल संरक्षण और जल संचयन के कार्यों में देश में अग्रणी है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशों से शुरू किए गए जल संरक्षण के अच्छे कार्यों की बदौलत संभव हुआ है। भारत भवन के बहिरंग में आयोजित सदा नीरा जलगंगा संवर्धन समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर यादव ने कल कहा कि प्रदेश केन, बेतवा और पार्वती कालीसिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए दी गई मंजूरी से वृहद स्तर पर लाभान्वित होगा।
1: कई प्रकार की जल रचनाएं अपनी जो पुरानी बनी हुई है, लगभग 2 लाख जल रचनाओं पर, जिसमें नदी, नाले, तालाब, पोखर, कुएं, बावड़ी, जल के उद्गम, वैसे तो 250 से लेकर 1000 से ज्यादा नदियां, इनका उद्गम मध्य प्रदेश में है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जल संरक्षण के काम पूरे देश में चल रहे हैं। पूरे देश में मध्य प्रदेश जल संरक्षण के काम पे नंबर 1 पे चल रहा है। हमारी विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्था ने अलग अलग जिलों वाइज इसका आंकड़ा भी जुटाया है।
0: राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि स्वस्थ समाज एवं परिवार के लिए महिलाओं का स्वस्थ होना जरूरी है। राज्यपाल ने कल अपने जन्मदिन पर लोकभवन में आयोजित स्वास्थ्य शिविर के शुभारंभ कार्यक्रम में महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि महिलाएं अपनी व्यस्त जीवन शैली में अपने स्वास्थ्य की चिंता करें, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए समय निकालें, संतुलित आहार, योग और व्यायाम को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। राज्यपाल श्री पटेल के जन्मदिवस पर लोकभवन के सांदीपनि सभागार में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया था। राज्यपाल ने वहां उपस्थित महिलाओं को स्वच्छता किट भी प्रदान की और सिविल डिस्पेंसरी में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों का अवलोकन किया। इस मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने बच्चों से संवाद भी किया। चुनाव आयोग ने प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए अधिसूचना कल जारी कर दी। इसके साथ ही चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। इन सीटों पर 30 जून को मतदान होना सुनिश्चित है। ये सीटें 21 जून को खाली हो रही हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा 22 मई को कर दी थी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश में PM ई बस सेवा और मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना में बसों का संचालन सबसे पहले इंदौर क्षेत्र से शुरू किया जाएगा। इंदौर क्षेत्र के तहत इंदौर संभाग के समस्त जिले तथा इंदौर स्थित अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड अब पूरे इंदौर संभाग से प्रारंभ होने वाली बसों के कार्यक्षेत्र में कार्य करेगी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत 3 श्रेणी की बसों का संचालन जुलाई महीने में शुरू करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक में ये जानकारी दी गई। बैठक में बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह और मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अब रुख करते हैं मौसम का। नौतपा का आज 9वां और आखिरी दिन है। हालांकि उत्तर भारत के साथ ही प्रदेश में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम केंद्र के अनुसार भोपाल, इंदौर, देवास और सीहोर समेत प्रदेश के 46 जिलों में कल तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। मौसम केंद्र ने आज भोपाल के साथ ही झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांडुर्णा समेत 40 से अधिक जिलों में आंधी, गरज चमक, बारिश और ओले गिरने की चेतावनी दी है। वहीं खंडवा कलेक्टर ने बारिश में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी विभागों को अग्रिम तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। एशियाई खेल 2026 से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कहा कि इन खिलाड़ियों को योजना में शामिल करने का उद्देश्य केवल पदक जीतने की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना नहीं बल्कि विभिन्न नौका श्रेणियों में सक्षम समूह तैयार करना है। चयनित समूह अब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। वहीं जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने पूल ए के मुकाबले में कोरिया को 4-1 से हरा दिया। भारत पूल ए में जापान और कोरिया के साथ 6 अंकों की बराबरी पर आ गया है। पूल की शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में अवैध उत्खनन करने और पट्टा शर्तों का उल्लंघन करने पर कलेक्टर ने एक खदान का पट्टा निरस्त कर दिया है जबकि 2 खदानों पर जुर्माना लगाया है। झाबुआ जिले में पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून को जिले के सभी पोलियो बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। गुना कलेक्टर ने कृषि कार्य करते हुए करंट लगने से मृत्यु होने पर मृतकों के आश्रितों को 12 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत करने के आदेश दिए हैं। डिंडौरी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कल विकासखंड बजाक के गांव चाड़ा सिलपड़ी पहुंचकर मिलेट्स अम्बेसडर लहरीबाई के 150 बीज भंडार केंद्र का अवलोकन किया। छतरपुर जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। 30 दिन तक चले इस महाअभियान में संबंधित डेटा को डिजिटल माध्यम से एकत्रित किया गया। सागर संभाग कमिश्नर ने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए दमोह पन्ना के सीएमएचओ को नोटिस जारी करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। खंडवा जिला कलेक्टर ने ओंकारेश्वर में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और आगरमालवा जिला कलेक्टर प्रीति यादव ने कल एक बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर बनी सहमति। मध्य प्रदेश जल संरक्षण और जल संचयन के कार्यों में देश में अग्रणी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा। प्रदेश में सबसे पहले इंदौर संभाग से शुरू होगा मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा में बसों का संचालन। और भोपाल के साथ ही झाबुआ, छिंदवाड़ा समेत प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर।

आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 7:20 हुए हैं और प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नागिन फिल्म का ये गीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और पप्पी लहरी को फिल्म नमक हलाल के लिए।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें हा? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नसीब फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार उषा मंगेशकर की आवाज़ों में। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इसका प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से किया गया। सुबह के 7:45 हुए हैं और प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना परख कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी।

कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को नमस्कार। अजय रनकर की ओर से। श्रोताओं, हमारा जीवन तमाम तरह के झंझावातों, रुकावटों और पग पग पर आने वाली संकटों से भरा होता है और अकेले हमें ही इन सब से मुकाबला करना पड़ता है। इस पूरे दौर में या कहीं कि विपरीत समय में लोग तो क्या हमारा साया भी हमारा साथ छोड़ देता है। लोग हमारे साथ खड़े होने से कतराने लगते हैं, वे हमसे दूरी बना लेते हैं और हमें स्वयं ही इस मुश्किल राह को पार करना होता है। लेकिन श्रोताओ, इस वक्त हमें बड़ी ही हिम्मत के साथ, विवेक, धैर्य और साहस के साथ अपने कदम आगे बढ़ाते जाना चाहिए और इस कठिन दौर को पार करना चाहिए।

मध्य प्रदेश कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत हितग्राहियों के आश्रितों के लिए श्रमोदय मॉडल आईटीआई भोपाल में सत्र 2026-27 के प्रवेश शुरू हो गए हैं। विभिन्न तकनीकी ट्रेडों में निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण मिलेगा। आवेदन 30 जून तक ऑनलाइन लिए जा सकते हैं। सीटें सीमित हैं, पात्र अभ्यर्थी समय पर अपना आवेदन कर सकते हैं। श्रोताओं, अवैध भ्रूण लिंग जांच लिंग चयन अथवा संबंधित गैर कानूनी गतिविधियों की सूचना देकर कार्रवाई में सहयोग करने वाले मुखबिरों को अब प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। सफल सूचना अथवा स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर कार्रवाई होने और न्यायालय में अपराध सिद्ध होने पर कुल 2,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मुखबिर, डिकॉय महिला, अभियोजन अधिकारी और जिला नोडल अधिकारी और अन्य अधिकृत व्यक्तियों को नियमानुसार वितरित की जाएगी। श्रोताओं, सांख्यिकी कार्यालय ने त्रैमासिक राजभाषा हिंदी कार्यशाला कराई। आयोजन क्षेत्रीय प्रमुख ग्वालियर के मार्गदर्शन में हुआ। नेतृत्व कार्यालय प्रभारी सहायक निदेशक डॉ. शिवांशी शुक्ला ने किया। इस कार्यशाला में क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर से सहायक निदेशक रामगोपाल विजय मौजूद रहे। उप क्षेत्रीय कार्यालय रतलाम से सहायक निदेशक मनीष मीना पहुंचे। इस कार्यशाला का उद्देश्य शासकीय कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रभावी प्रयोग बढ़ाना रहा। श्रोताओ, मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने वर्ष 2026-27 के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। आवेदन 12 जून 2026 तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर किए जा सकेंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार होंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में सामान्य रूप से 30 प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाएगा। इसमें 30% सीटें महिलाओं के लिए प्राथमिकता पर होंगी। आवेदक का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए। आवेदक ने पहले किसी शासकीय विभाग से निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण नहीं लिया हो। दस्तावेजों का सत्यापन जिला स्तरीय समिति करेगी और पात्र पाए जाने पर चयन होगा। श्रोताओ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत पशुपालकों को आधुनिक डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए बैंक ऋण और अनुदान प्रदान किया जाएगा। उपसंचालक डॉक्टर सुभाष बाबू दोहरे के अनुसार 25 दुधारू गाय या भैंसों की इकाई लागत लगभग 42,00,000 रुपए है। सामान्य वर्ग को 25% और SC/ST वर्ग को 33% अनुदान मिलेगा। कृषि विज्ञान केंद्र पेपरसमा पर रविवार को प्रधानमंत्री के मन की बात का 134वां संस्करण प्रसारित किया गया। इस कार्यक्रम में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील पर चर्चा हुई। केंद्र प्रमुख डॉ. पुनीत कुमार के अनुसार वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एस.के. भार्गव ने किसानों को खरीफ पूर्व आदान व्यवस्था पर तकनीकी परामर्श दिया। डॉ. पुष्पेंद्र सिंह ने घरेलू बीज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सफाई, छनाई और अंकुरण परीक्षण की प्रक्रिया बताई। रासायनिक उर्वरकों के कम उपयोग और समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन पर भी जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में 35 किसान ऑफलाइन और 360 से अधिक ऑनलाइन जुड़े।

श्रोताओं, अग्निवीर भर्ती के तहत पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीईई की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। परीक्षा 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 केंद्रों पर होगी। श्रोताओं, नए पोर्टल और ऐप से एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए अनुरोध की प्रक्रिया अब अधिक सरल होगी और साथ ही अब तेज होगी। पोर्टल में एयर एम्बुलेंस फ्लीट की रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। और श्रोताओं, इन समाचारों के साथ ही आज का नमस्कार शिवपुरी का अंक समाप्त करने की अजय रनगढ़ को आज्ञा दीजिए।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना परख कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुन सकेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल, और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
4: Both sides underscored the importance.
5: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
4: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
3: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री आउं लाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउं लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
6: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
7: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
8: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
6: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
9: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
6: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में

0: आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
1: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नवनियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अभी रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पंवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK-1 के सफल परीक्षण के

0: समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमा भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन आउन क्लाइंग सेज हिज कंट्री विल नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under 18 Asia Cup. Myanmar President Ooh Min Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that Myanmarese territory will not be allowed to be used against India's security interests. The two leaders held wide-ranging talks to boost bilateral ties in trade, defence, energy and connectivity in New Delhi yesterday. Mr. Aung Hlaing is on a 5-day visit to India. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said the President of Myanmar reiterated the assurance that Myanmar's territory will not be permitted to be used against India's security interests. Mr. Misri said Prime Minister Modi reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests.
3: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
2: The Foreign Secretary said that both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in areas of trade and investment, health, education, energy, and critical technologies like artificial intelligence. The Myanmarese leader, accompanied by a high-level delegation, will travel to Mumbai today for business and industry interactions and site visits. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said, India and the United States have finalized most elements of the first phase of the bilateral trade agreement, and negotiations are now focused on a few minor issues commerce and full stops. We have a report.
4: Commerce Minister Piyush Goyal said that the team from United States is in New Delhi to hold talks on finalizing the first phase of bilateral trade agreement, BTA. The talks will take place in New Delhi from today and it will last till Thursday. India's chief negotiator is Darpan Jain, additional

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे निकाह फिल्म का ये गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। इस गीत को पसंद किया था आदर्श नगर मलोट से लिखने वाले श्रोता राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा ने।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे निश्चय फिल्म का ये गीत, कविता कृष्णमूर्ति और अमित कुमार की आवाजों में। फरमाइश आप सभी श्रोताओं की थी, नेपाल पैलेस सागर से लिखने वाले श्रोता तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और नितिन की आवाज में ये गीत, फिल्म थी नूरी। फरमाइश आप सभी श्रोताओं की, ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मतलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। इस फिल्म का ये गीत, आवाज थी कार्तिक की। इस गीत को सुनना चाहते थे भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से लिखने वाले श्रोता स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाव मराठा, गणेश दादा मराठा, परी संजना मराठा और ललिता नारायण खर्चे की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खां की आवाज में ये गीत। इसे हमने लिया था फिल्म पाप से। इस गीत को पसंद किया था लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से लिखने वाले श्रोता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे ललिता नारायण खर्चे गणेश कार्तिक खर्चे और परी खर्चे ने। इसके साथ ही फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं समाप्त होता है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं और प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। इसमें हमारे आज के कलाकार हैं बादाम सिंह और साथी और अर्चना जाटव। पहले सुनिए बादाम सिंह और साथियों के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बादाम सिंह और साथियों के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। लीजिए आप सुनिए अर्चना जाटव के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत।

लोक रंग में अभी आप सुन रहे थे अर्चना जाटव के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इसका प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से किया गया। सुबह के 9:30 हुए हैं और प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे पारसमणि फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। इस गीत को पसंद किया था न्यू ब्लॉक शिवपुरी से सुमिता, अक्षम, डॉली, मोनिका, विहान, अभय और तरुण ने।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में ये गीत, फिल्म थी पड़ोसन। फरमाइश हमें लिखकर भेजी थी मलोट कैंप पंजाब से लिखने वाले श्रोता सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर सिंह संधू, महावीर संधू, गुरुचरण करोवर और रमेश मिगलानी ने।

इस फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में। गीत सुनना चाहते थे छत्तीसगढ़ फाटापारा दतरंगी से लिखने वाले श्रोता द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और ज्ञानवंत कुमार वर्मा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पाकीज़ा फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को पसंद किया था रायगढ़ से लिखने वाले श्रोता रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी और आपके परिवार वालों ने।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे पारस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। इस गीत को पसंद किया था वंदना नगर एयरपोर्ट रोड इंदौर से बबीता, शोभा, रेखा रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी और ललिता खर्ची ने। लीजिए, कार्यक्रम के आखिर में सुनिए पारसमणि फिल्म के लिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को।

0: इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश अभी ही समाप्त होता है। इसका प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से किया गया। सुबह के 10 बजने वाले हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। जबलपुर जिले में नौतपा की शुरुआत में जहां भीषण गर्मी ने रौद्र रूप दिखाया था और तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, वहीं अब इसके जाते जाते तेवर कुछ ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं। जबलपुर और आसपास के जिलों में पिछले 3 दिनों से मौसम सामान्य बना हुआ है। तेज गर्मी का असर पहले की तुलना में कम महसूस किया जा रहा है। आकाश में हल्के बादलों की आवाजाही के कारण धूप की तीव्रता कम हो रही है, जबकि रात में ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी मौसम लगभग इसी तरह बना रह सकता है। दोपहर में हल्की गर्माहट और सुबह शाम सुहावना मौसम रह सकता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर बीते दिनों जबलपुर के भंवरताल उद्यान में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक और शपथ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। युवाओं, विद्यार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों ने तंबाकू और निकोटीन उत्पादों के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया। नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से तंबाकू सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में शासकीय रानी दुर्गावती नर्सिंग महाविद्यालय और हितकारिणी डेंटल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इसके समापन पर सभी ने तंबाकू और निकोटीन उत्पादों से दूर रहने और जन जागरूकता प्रसार करने का संकल्प लिया। जबलपुर जिले में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग अभियान चलाएगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवीन कोठारी के निर्देशों पर कोटपा अधिनियम के तहत बस स्टैंड, अस्पताल, शासकीय कार्यालय, स्कूल, कॉलेज और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। बीते दिनों जबलपुर में फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजन, एम्पावरिंग जस्टिस वाया यूनाइटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने देश का पहला एकीकृत डिजिटल न्याय मॉडल प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीश भी शामिल हुए। जनगणना 2027 के पहले चरण का कार्य पूरा करने वाला कुंडम जबलपुर जिले का पहला विकास खंड बन गया है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रशासनिक समन्वय और टीम वर्क के बल पर कुंडम ने ये उपलब्धि हासिल की। विकासखंड की 68 ग्राम पंचायतों के 199 गांवों में फैली 251 ईबीसी का लक्ष्य निर्धारित समय में पूरा किया गया। अभियान में 187 प्रगणक और 31 पर्यवेक्षक तैनात रहे, जबकि आपात स्थिति के लिए 19 प्रगणक और 3 पर्यवेक्षक रिजर्व रखे गए थे। इससे पहले जबलपुर नगर निगम ने भी हाउस लिस्टिंग का कार्य निर्धारित समय से पूरा कर लिया। जबलपुर जिले में इस वर्ष 34,660 किसानों से 25,89,031 क्विंटल गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया, जिसके एवज में किसानों के खातों में अब तक 553 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जबकि लगभग 126 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान प्रक्रिया में है। 28 मई तक चले उपार्जन अभियान में 36,948 किसानों ने स्लॉट बुक कराए थे। खरीदे गए कुल गेहूं में से 99.6% का परिवहन भी हो चुका है। जबलपुर के नर्मदा तटों को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के अभियान के तहत नगर निगम ने गौरी घाट, तिलवारा घाट सहित विभिन्न घाटों से चिन्हित 367 भिक्षुकों में से लगभग 85% का पुनर्वास कर दिया है। निगम आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान में स्थानीय भिक्षुकों को समझाइश देकर घर भेजा गया, जबकि दिव्यांग, बुजुर्ग और जरूरतमंदों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित किया गया। सक्षम लोगों को रोजगार से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहीं गौरी घाट पर नगर निगम ने 3R के तहत रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग सेंटर विकसित किया है, जिसके तहत यहां पर खिलौना बैंक, पुस्तक बैंक, बर्तन बैंक और थैला बैंक की व्यवस्था भी की गई है। नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत करीब 20,000 सफाई कर्मचारी 3 शिफ्टों में सुबह 6 बजे से आधी रात तक काम करेंगे। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए विशेष टीम का गठन भी किया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 के पहले माह में 42 मिलियन टन माल लदान कर 341.90 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर विशेष उपलब्धि हासिल की है। जबलपुर मंडल रेल प्रबंधक कमल कुमार तलरेजा ने बीते दिनों बताया कि मंडल ने भोपाल और कोटा मंडल को पीछे छोड़कर पश्चिम मध्य रेलवे में सर्वाधिक वाणिज्यिक आय अर्जित की है। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के तहत पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा 15 मई से 5 जून तक पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जिले में मानसून के दौरान संभावित बाढ़ और जल आपदाओं से निपटने के लिए होमगार्ड विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में गौरीघाट स्थित नर्मदा तट पर 4 दिवसीय संभागीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें जबलपुर, कटनी, मंडला और नरसिंहपुर सहित अन्य जिलों के 51 जवान शामिल हुए। जबलपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी का था और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का।
1: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 10:05 हुए हैं और प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली की कई चंद गजलें।

श्रोताओं, सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे गुलाम अली की गाई चंद गजलें। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी का प्रसारण FM 100.2।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे पराया धन फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। लीजिए आप सुनिए मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत, फिल्म का नाम परवरिश।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में ये गीत, फिल्म थी पत्थर के सनम। लीजिए अब सुनिए पहचान फिल्म का ये गीत मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फागुन फिल्म का ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इसका प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से किया गया।

0: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुन सकेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण भोपाल केंद्र से।
1: फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
2: नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों? हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।

0: सभी सुनने वालों को साधना जैन का नमस्कार। गर्मी की भीषणता में कुछ शीतलता लेकर आते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम। तो तैयार हो जाइए हमसे बातें करने और हमारी पसंद के गीत सुनने के लिए। तो लगाइए नंबर 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। आप लोग तैयार हैं ना? तो चलिए आज हम आपको विषय देते हैं। आज के कार्यक्रम में हम बातें करेंगे श्रृंगार के बारे में। तेरी मुस्कान से महके जीवन का हर पल जैसे फूलों पर ठहरा हो ओस का निर्मल जल। तेरी आंखों में देखा जब प्रेम का संसार मन में खिल उठे सहसा खुशियों के हजार। तेरा स्नेह मेरा सबसे सुंदर श्रृंगार, तुझसे ही जीवन में आया है मधुमय बहार। तो दोस्तों फोन करिएगा और हमसे बातें करिएगा इस विषय पर कि श्रृंगार हम क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है। तो हमें इंतजार है आपके फोन कॉल्स का।
1: हेलो
0: जी, आपका फोन लग चुका है। नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। हेलो
1: जी, फोन करें गीत सुने
0: जी, बात आपकी गीत हमारे हैं आज सर।
1: जी बिल्कुल, बात आपकी गीत हमारे जी। नमस्ते।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है मेरी?
1: जी प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बचोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: उज्जैन से जी?
1: हाँ
0: प्रेम सिंह जी।
1: जी जी जी,
0: आज हमने विषय लिखा है साज श्रृंगार। महिलाएं जो श्रृंगार करती है ना, उसके बारे में बताइए, आपको कैसा लगता है देखकर?
1: जी महिलाओं को तो ऐसा कहा जाता है कि श्रृंगार के बिना महिला अधूरी होती है
0: जी।
1: लेकिन इतना भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए कि मतलब कुछ ऐसे दिखे कि अलग हटके दिखे। हाँ, महिला सुंदर दिखने के लिए श्रृंगार करती है और हर महिला का अधिकार भी है श्रृंगार करना, लेकिन साथ में पुरुष भी इतने मतलब पीछे नहीं हटते हैं ना दीदी, आपको बताऊं। वो भी तैयार होते हैं, वो भी श्रृंगार करते हैं और मतलब किसी शादी समारोह में जाते हैं ना
0: जी,
1: तो इसी तरह से वो भी तैयार होके जाते हैं
0: जी। तो वही तो हम कह रहे हैं कि जब हम अच्छे से तैयार होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है ना
1: जी। बिल्कुल, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे तैयार होके जाएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि हमारी तरफ लोग आकर्षित होंगे, तो ऐसा होना भी चाहिए
0: जी। जी तो
1: मैं बताऊं, अब मैं कहीं शादी में जाता हूं ना तो अच्छी तरह से सज संवर के ही जाता हूं और अपने बच्चे है, मेरे बड़ी वाली लड़की बिंदिया है वो भी रेडी होके जाती है, उसके बाद कृष्णा है, साक्षी है, उसकी मम्मी है, मतलब सब तैयार होके जाते हैं ना तो हाँ। ऐसा बतलाया जाता है कि हमारी फैमिली सबसे अलग ही दिखती है।
0: अच्छा जी,
1: हम सब लोग मतलब अच्छे से रेडी होके जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो वही तो है, अपडेट होकर जाना और अप टू डेट होकर जाना, यानी दोनों बहुत जरूरी है ना। तो आपने फोन किया, आज बात आपकी गीत हमारे हैं, तो अपनी पसंद का कोई गीत हम आपको सुनवाएंगे। फोन करने के लिए बहुत धन्यवाद
1: जी। थैंक यू सो मच
0: जी।

0: नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: बात आपकी गीत हमारे में, आज हमने विषय रखा है साज श्रृंगार के बारे में।
1: महिलाओं के
0: जी, महिलाएं या पुरुष? पुरुष भी तो अच्छे से तैयार होके जाते हैं ना, तो हम कैसा फील करते हैं? और हम जब कोई बहुत अच्छे से तैयार होता है, मतलब व्यवस्थित होता है,
1: जी,
0: तो कैसा लगता है हमें देखकर?
1: प्रमुख रूप से तो उन्हीं के बारे में बातें करेंगे। अब
0: जी
1: पुरुषों का तो अनुभव थोड़ा सा कम रहता है।
0: जी तो अपना परिचय दे दीजिएगा पहले, बताइए
1: जी,
0: अपने बारे में।
1: नमस्ते जी।
0: जी जी बताइए।
1: हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़। जी
0: योगेश जी जी बताइएगा, कैसे हैं वहाँ? गर्मी कैसी हो रही है?
1: बहुत गर्मी है, 43-44 डिग्री तापमान चला जा रहा है।
0: जी, तो इसीलिए तो हमने ये विषय रखा है कि ऐसी गर्मी में यदि हमें कहीं शादी ब्याह या फंक्शन में जाना है तो हम कैसे तैयार हों कि हम लास्ट जब लौटें तब भी उतने ही फ्रेश फ्रेश रहें।
1: बड़ा
0: जी योगेश जी
1: है, उसमें काफी जो धूप होता है, पसीना आता है, तो
0: जी
1: वो काफी चैलेंजिंग होता है स्थिति को बनाए रखना।
0: जी जी जी
1: और रही बात साज श्रृंगार की, तो वो तो अपने अपने जो प्रदेश है या फिर अपने क्षेत्र
0: जी
1: है हमारे यहाँ।

0: प्रमुख रूप से तो ग्रामीण परिवेश में हमारे यहाँ ही नहीं, लगभग सभी जगह साड़ी सबसे प्रमुखता होता है एक श्रृंगार के रूप में महिलाओं का।
1: जी जी
0: और
1: जी
0: पुरुष जैसे हम लोग हो गए तो जींस हो गया, शर्ट हो गया, पैंट हो गया,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: यही चीजें बहुत आयत में चलती हैं। और
1: जी
0: श्रृंगार में तो जितना हम कर ले उतना कम लगता है।
1: जी क्योंकि 16 श्रृंगार माने गए हैं ना महिलाओं के तो
0: बिल्कुल बिल्कुल। और भारतीय संस्कृति और जो सभ्यता है
1: जी जी
0: वो तो इन्हीं सब चीजों पर कह सकते हैं टिका हुआ है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो योगेश जी, आपको ये नहीं लगता कि आजकल लोग थोड़ा सा इससे दूर जा रहे हैं जो
0: अब आधुनिकता है और तरह तरह की जो आजकल की जो हम आधुनिकता में जो देखते हैं
1: जी
0: वो कुछ ऐसी ऐसी चीजों को भी ट्रेंड में लेते हैं जिनसे हमारा ज्यादा मेल नहीं खाता है।
1: जी जी जी
0: जो पारंपरिक परिधान है
1: जी
0: वो मतलब उनकी जगह कोई नहीं ले सकता।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी कभी जब हम पारंपरिक रूप से तैयार होते हैं शादी ब्याह में तो अलग ही दिखता है ना, पहचान ही नहीं आते कि अरे वो ये वही है। तो फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और
0: धन्यवाद।
1: जुड़े रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: जी नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे आज आपकी सेवा में हम हैं।
1: नमस्कार मैम
0: जी।
1: जी, मैं शिवपुरी जिले के रामखेड़ी गांव से मोतीलाल परियार बोल रहा हूँ।
0: मोतीलाल जी,
1: सही जी
0: मैं साधना जैन बोल रही हूँ।
1: मैम, नमस्ते।
0: जी, मोतीलाल जी, कहाँ से, जगह कहाँ है आपकी? खेड़ी
1: शिवपुरी जिले के रामखेड़ी मारा से मोतीलाल परियार
0: से।
1: बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी, कैसे हैं मोतीलाल जी?
1: बहुत कृपया कृपा मैम ईश्वर की और आप लोगों की।
0: जी, हम लोगों का सबका स्नेह है आपके साथ। अच्छा मोतीलाल जी, आज जैसे आपके नाम में ही मोती लिखा हुआ है, तो
1: जी
0: आज हम साज और श्रृंगार के बारे में बात कर रहे हैं कि जब हम श्रृंगार करते हैं या बहुत अच्छे से तैयार होके जाते हैं तो हमें कैसा फील होता है और लोग हमें किस तरह से देखते हैं। आज हम वही बात कर रहे हैं आपसे।
1: जी मैम, तो
0: बताइए, महिलाएं जब श्रृंगार करती हैं, वो जब वो निकलती हैं घर से, तो कभी वेणी लगाती हैं, कभी सिंदूर, कभी बिंदी लगाती हैं, तो कैसा लगता है देखकर?
1: जी मैम ऐसा ही है कि बढ़िया लगता है। वो जो बड़ी श्रृंगार करके जाते हैं तो मिलते जुलते रिश्तेदारों में
0: जी,
1: और
0: जी।
1: बढ़िया।
0: और मोतीलाल जी, इसका कुछ साइंटिफिक रीजन भी है, पता है? जब पैरों में हम
1: क्या
0: पायल पहनते हैं, पहले देखा था कि बहुत मोटी मोटी पायलें पहनी जाती थी, तो
1: जी
0: जो
1: मैम, अब भी तो पहनती है ना।
0: जी तो जो पहनती है ना, उनके कमर में, पैरों में उनके दर्द नहीं होता है, लेकिन जो नहीं पहनती है उनको ज्यादातर शिकायत रहती है। और यदि शिकायत रहती है और वो अच्छी मोटी मोटी पायलें पहन लेते हैं, पहले तो जैसे करधोनी भी पहनी जाती थी, करधन बोलते हैं जिसको, तो ये अपनी जो स्पाइन है, अपनी रीढ़ की हड्डी, ये दबी रहती थी और ये बहुत सारे दर्द हमें नहीं होते थे। आप क्या बोलते हैं इस बारे में?
1: जी मैम क्या है वो, इसमें हमारे गांव में तो सब औरतें पहनती हैं, अब भी पहनती हैं।
0: जी,
1: और जो बाजार का में वो बाजार में कुछ नहीं पहनती, तो
0: हाँ
1: गांव गांव में तो अच्छी लगता है उनको पहनना।
0: जी, तो वो स्वस्थ भी रहती हैं, आप देखिएगा, है ना?
1: बिल्कुल स्वस्थ रहती हैं वे, तो
0: बिल्कुल,
1: उनका शौक यही है मैडम श्रृंगार उनका।
0: हाँ। तो देखिए, हमारे जो बुजुर्ग थे वो बड़े वैज्ञानिक थे, है ना? पहले तो
1: जी।
0: गले में हंसली और ये सारी चीजें पहनी जाती थी स्वस्थ रखने के लिए। तो मोतीलाल जी, आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको फोन करने के लिए,
1: जी मैम
0: और
1: नमस्ते।
0: सुनते रहिएगा आकाशवाणी।

0: बात आपकी की थी हमारे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपको याद है कि आज बात आपकी गीत हमारे होना है।
0: जी जी जी बिल्कुल याद है, नियमित होता हूँ इसलिए याद रहता भी है
1: रखते
0: और
1: हैं,
0: रखना भी चाहिए।
1: बिल्कुल। तो आज मैं आपका परिचय जानने से पहले विषय बता देते हैं, आज हम साज और श्रृंगार के बारे में बात करेंगे आपसे। अब अपना परिचय दे दीजिएगा मुझे।
0: जी मैं पुरानी दलिया छतरपुर मध्य प्रदेश से आपका नियमित श्रोता रशीद अहमद खान बात कर रहा हूँ।
1: रशीद अहमद जी,
0: जी
1: हाँ, छतरपुर से
0: जी छतरपुर से। जी
1: जी, बताइए रशीद जी।
0: साज और श्रृंगार मतलब ये
1: 16 श्रृंगार होता है ना, जो हम बेड़ी लगाते हैं, चूड़ी पहनते, बिंदी महावर लगाते, मेहंदी लगाते, इसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं जी।
0: श्रृंगार तो खैर ठीक है अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ा श्रृंगार तो आपका सादगी और आपका चरित्र सबसे बड़ा श्रृंगार
1: जी जी जी
0: है ना।
1: जी
0: सारी चीजें अपन लोग करते हैं ठीक है, लेकिन
1: जी
0: सबसे बड़ा जो है वो आपका उसमें झलकना चाहिए आपके किरदार से।
1: अरे वाह वाह जी, यही तो हम चाह रहे थे कि कुछ ऐसी बातें निकल कर आए जो कि हमारे श्रोता भी लाभान्वित हो जाएं उससे
0: जी
1: जी।
0: जी जी है ना।
1: तो
0: बाकी बाहरी रूप रंग तो ठीक है, आदमी को अपना मेंटेन करना चाहिए है ना, ईश्वर के दिया हुआ रूप रंग होता है,
1: जी,
0: जो जैसा है उसको अपन वैसा स्वीकार करें और उसको अपन थोड़ा बहुत मेंटेन भी किए रहे वक्त के
1: हाँ
0: हिसाब से है
1: जी,
0: ना। जैसे धूप पड़ रही है तो उसमें अपनी सुरक्षा रखें अपन, या बारिश में इधर उधर जहाँ जैसा भी है
1: जी। अब जैसे
0: लड़की
1: कोई
0: है ये
1: घर
0: है
1: में
0: वो
1: कोई
0: है।
1: फंक्शन होता है या कहीं जाते हैं तो थोड़ा सजना धजना अच्छा लगता है ना।
0: हाँ नहीं बिल्कुल करना भी चाहिए, वो
1: हाँ
0: करना चाहिए वक्त की डिमांड के हिसाब से, वो
1: जी
0: चीज अच्छी भी
1: जी,
0: है ना करना चाहिए, लेकिन इतना मतलब ओवर भी ना हो जाए मेकअप के, स्किन को भी नुकसान हो या कोई
1: हाँ
0: मतलब वैसे लोग कमेंट्स करें कोई, है ना
1: जी।
0: ये है
1: आज
0: मेन
1: जो
0: बात।
1: इतने प्रोडक्ट चल रहे हैं कि सुंदर बनाने के लिए, उसका भी हमें बहुत सोच समझ के उपयोग

0: करना चाहिए ना।
1: जी जी जी मतलब प्रचार तो बहुत हो रहा है, लेकिन
0: जी
1: मतलब ऐसा नहीं है कि सारी चीजें इफेक्टिव हैं,
0: जी वही वही
1: है ना?
0: वही
1: बिल्कुल
0: आज का
1: बात
0: आज आज
1: बिल्कुल
0: इस बात आपकी गीत हमारे में ये विषय लेने का यही मतलब है मेरा, कि
1: सही।
0: हम अंधाधुंध या जो हम देख लेते हैं इधर के विज्ञापन में इसमें उसके हिसाब से ना जाकर बहुत प्रैक्टिकली सोचें और फिर अपने ऊपर यूज करें सब सामान
1: बिल्कुल
0: का।
1: जो चीज अपन को सूट कर रहा है उसे यूज करें, और ज्यादातर ये हो कि हर बार अपन यूज करें, है
0: जी,
1: ना, तो ज्यादा अच्छा है उसमें।
0: अब श्रृंगार में देखिए उबटन है तो हमारे यहाँ बताया गया है कि घर का ही उबटन करें, बेसन ले लें और चावल
1: जी
0: दाल का
1: जी
0: निकाल के, है ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: दही है और फ्रूट्स
1: जी
0: हैं, इस हिसाब से करेंगे तो आप सुंदर भी रहेंगे और कोई नुकसान भी नहीं है इससे।
1: जी जी मेन वही है कि मतलब श्रृंगार करें लेकिन कोई नुकसान ना हो, वो ज्यादा सही
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: है ना। और बाकी तो सादगी सबसे बड़ा श्रृंगार है ना,
0: जी,
1: सिंपल रहना, मतलब उच्च विचार।
0: जी
1: अच्छा एक दूसरा आज हम थोड़ा सा एक चर्चा एक मिनट की और कर ले, मत कि
0: बताइएगा।
1: सुमन कल्याणपुर साहिबा गुजर गई है कल,
0: जी,
1: है ना, तो क्योंकि फिल्म संगीत से उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: अब पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से हम मतलब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, है
0: बिल्कुल,
1: ना,
0: पूरे
1: उनका
0: श्रोताओं
1: बहुत।
0: और हमारी आकाशवाणी परिवार, पूरा मध्य प्रदेश, क्या पूरा
1: जी जी
0: भारत ही उनको श्रद्धांजलि दे रहा है ना।
1: जी जी जी बिल्कुल,
0: तो
1: ईश्वर उनकी
0: एक
1: आत्मा को शांति दे, उनके
0: बिल्कुल
1: तमाम प्रशंसकों को दुख झेलने की हिम्मत है,
0: बिल्कुल
1: और उनकी
0: बिल्कुल
1: आवाज लगातार गूंजती रहेगी, क्योंकि उनकी
0: बिल्कुल
1: आवाज सुनते सुनते अपन लोग बड़े हुए हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए इस अहमद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, जुड़े रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: ओके थैंक यू मैम, थैंक
0: जी
1: यू
0: जी
1: थैंक यू।

0: जी नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: जी दीदी नमस्कार।
0: जी, आज हमने
1: मैं ग्राम बापुष्ट सोना कुशमाण थाना सूजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका अपना रेडियो मित्र दीपक कुमार नामदेव बात कर रहा है दीदी।
0: दीपक जी जी दीपक जी, आज हमने विषय रखा है साज और श्रृंगार के बारे में। जी तो आप क्या करते हैं दीपक जी?
1: जी मैं सिलाई का काम करता हूँ।
0: अच्छा, आप सही, तो श्रृंगार आप ही कराते हैं लोगों का
1: जी, अगर लोग जैसे कपड़े बनवाते हैं जिस प्रकार के, तो सभी प्रकार के डिजाइनों कई डिजाइनों द्वारा कपड़ा बना देते हैं और वही व्यक्ति को पहना देते हैं तो बहुत अच्छा लगने लगता है। जैसे शादी ब्याह में, अगर शादी ब्याह में अगर दूल्हे का कोट पैंट हम लोग ही बनाएंगे तो कहाँ से वो श्रृंगार होगा, कहाँ से अच्छा लगेगा।
0: हाँ, वही तो कह रहे हैं कि पूरा बेसिक चीज तो आप ही उसमें तैयार करते हैं उनको। तो बताइए क्या महत्व है अच्छे कपड़े, मतलब फिटिंग के, और अच्छे कपड़े पहनने का, साफ सुथरे प्रेस किए हुए और थोड़ा बहुत श्रृंगार करने का क्या महत्व है?
1: सबसे पहले अच्छा कपड़ा हम लोगों का राजा रंग कहलाता है, सफेद कलर का, व्हाइट कलर का कपड़ा।
0: जी
1: अगर वो कपड़ा व्यक्ति को बन जाए और उसका फिटिंग का बन जाए तो काफी अच्छा लगने लगता है और व्यक्ति बहुत ही सुंदर लगने लगता है। कपड़ा जैसा चाहे तो इतना ही खराब कपड़ा हो, लेकिन उसकी फिटिंग बनावट सही आ जाए तो कपड़ा ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगता है और आदमी को भी अच्छा लगने लगता है।
0: बिल्कुल।
1: और हमारे घर में लेडीज काम भी होता है, तो दुल्हनों का हमारी बहन जी तैयार करती हैं जैसे, और कपड़े भी बनाती है, लहंगा चुनरी, तो बहुत अच्छा साज सज्जा कर लेती है।
0: जी, तो मतलब एकदम रूप परिवर्तन हो जाता है ना साज श्रृंगार और अच्छे कपड़े पहनने के बाद।
1: अगर कितना ही कलर मद्दा हो, मेकअप कर दिया जाए तो उस व्यक्ति को आप हम पहचान नहीं सकते।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल रूबरू हो जाता है, बिल्कुल अलग से रूप बदल जाता है।
0: जी बिल्कुल, यानी कि हम बहुत सुंदर कर देते हैं लोगों को, है ना, साज श्रृंगार से। तो आप किसके, जेंट्स के कपड़े सिलते हैं या महिलाओं के सिलते हैं?
1: जी हम तो दोनों सिल देते हैं, लेकिन बहन आ रहे हैं तो वो लेडीज सिलती हैं, हम जेंट्स सिलते हैं, लेकिन बना तो हम लोग दोनों लेते हैं, जेंट्स भी बना लेते हैं और लेडीज भी बना लेते हैं।
0: अच्छा जी जी,
1: क्योंकि हमारा क्षेत्र धंधा सिलाई ही है।
0: जी तो चलिए दीपक जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।

बड़ा तंग किया, डोरे मेरे पास हो तो सैया तो ही खींच लूं, जाने ना दूं आंखों में बसा के आ

0: मध्य प्रदेश भोपाल से बात आपकी गीत हमारे। आज हमने विषय लिखा है साज और श्रृंगार के बारे में, है ना? कैसे सजना धजना जो 16 श्रृंगार हमारे माने गए हैं ना, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। अपना परिचय दे दीजिएगा पहले।
1: मैं कालचंद यादव बोल रहा हूँ, संदलपुर आदरी से।
0: जी जी, आपका नाम?
1: आप मैडम कौन बोल रही हैं?
0: मैं साधना जैन बोल रही हूँ।
1: आपने नाम बोले थे मेरे लिए।
0: जी जी,
1: आपको समझ नहीं आता, बता नहीं पाऊंगा समय, मैं बता।
0: जी जी, तो कुछ बोलेंगे आप?
1: क्या बोले, आप बताओ।
0: अरे यही कह रहे हैं कि जब हम सज धज जाते हैं, लोगों को सजा धजा देखते हैं, अच्छे से तैयार हुए देखते हैं, तो हमें कैसा लगता है?
1: अच्छा लगता है ना, कहीं जा रहे हैं सज,
0: जी जी
1: हाँ, कहीं जा रहे हैं शादियों में, कहीं सरपंचियों में, अच्छा लगता है।
0: जी जी, तो वैसे भी घर में बहुत अच्छे साफ सुथरे और धुले धुलाए कपड़े और रोज धो के कपड़े पहनना चाहिए।
1: सफाई सुथरे तो अच्छे लगेंगे, कपड़े अच्छे पहनो अच्छे लगते हैं।
0: जी जी, तो
1: सफाई रखो घर में, कहीं जाऊँ तो बस।
0: आपका नाम मैं फिर से सुन सकती हूँ?
1: कालीचरण यादव, सुंदलपुर से।
0: सुंदलपुर,
1: सुंदलपुर आदरी के पास गाँव है मेरा, सुंदलपुर ग्वालियर के पास में।
0: जी जी जी, तो चलिए, आपने फोन किया उसके लिए बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी नमस्कार। बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका।
0: जी, नमस्कार।
1: जी आज आज हमने विषय रखा है साज और श्रृंगार, यानी सजना धजना। इसके बारे में आपसे बात करेंगे, तो अपना पहले परिचय दीजिएगा और फिर जगह का नाम बताइए और इसके बारे में कुछ बताइएगा।
0: मैं ग्राम कटारिया खेड़ी जिला राजगढ़ से मैं राम नरेश बोल रहा हूँ
1: राम नरेश जी,
0: जी। ग्राम
1: जगह का नाम क्या बताया आपने?
0: कटारिया खेड़ी जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश।
1: राजगढ़ से। जी बताइए राम नरेश जी।
0: जी
1: साज श्रृंगार जब हम सजते धजते हैं या घर की महिलाएं जब बहुत अच्छे से तैयार होती हैं तो क्या फीलिंग होती है, और क्यों हमें जो 16 श्रृंगार हमारे बताए गए हैं वो क्यों जरूरी हैं?
0: अब ये तो देखिए, घर की जो महिलाएं रहती है 16 श्रृंगार की विषय में वो बेहतर बता पाएंगी, और उनमें किस तरह की भावना आती है, किस तरह की फीलिंग आती है
1: तो
0: सोलह
1: आपके
0: श्रृंगार
1: आपके घर
0: करने
1: में
0: की।
1: हैं कोई महिलाएं? बात कराइए हमें।
0: अभी तो नहीं, और मेरे ख्याल से जो हैं वो स्पष्ट रूप से आपको अपने विचार नहीं बता
1: तो
0: पाएंगी।
1: आप ही बता दीजिएगा आप क्या फील करते हैं कि मतलब ये जो अपने जेवर हैं या गहने हैं ये पहनना चाहिए।

0: नहीं।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा। जो जेवरात होते हैं, जो गहने होते हैं, जो आभूषण जो पहनती हैं हमारी जो घर की महिलाएं होती हैं, तो वो तो खैर उनको अच्छा ही लगता है। और हर स्त्री चाहती है कि मैं किसी समारोह में जाऊं, विवाह समारोह हो, कोई भी बर्थडे पार्टी हो, तो सबसे अलग दिखूं, या यूं कहे कि एक आकर्षण हो, और दूसरी उनकी जो साथी मित्र हैं वो पूछें कि बड़ी अच्छी लग रही हो,
0: हाँ।
1: या फिर ये गहना कैसे लिया,
0: जी।
1: इस तरह की बातें वो करे, तो वो बेहतर से बेहतर तैयारी करती हैं कि पूरी कोशिश करती हैं कि हाँ कि मैं अच्छी दिखूं, अच्छी सजूं सवरूं, लोगों अच्छा लगे और तारीफ करें, ऐसा भी भावना आती है, फीलिंग आती है महिलाओं की।
0: राम नरेश जी, और जब उनको उपहार में पति या भाई या पिता कुछ आभूषण देते हैं तो बहुत खुश होती हैं ना?
1: हाँ, जो घर की महिलाएं होती हैं, जैसे पति हुआ,
0: हाँ।
1: या कोई भाई हुआ, जैसे मान लो रक्षाबंधन पे भाई ने कुछ पायल का उपहार दिया, तो वो इस चीज को संभाल के रखती है कि ये मेरे पीहर का है, मायके का है, और इस चीज को बड़ा वो संभाल के रखती हैं और पहनती हैं। और कई बार जैसे कोई अच्छा उपहार मिला और उसे पहन लिया तो दूसरी महिलाएं पूछती है बड़ी अच्छी है, कितने में ली, तो वो कहती है कि हमने ली नहीं, हमारे भैया ने उपहार में दी है, या फिर हाँ, या फिर वो कहते हैं हमारे पति ने हमें उपहार में दी है, या हमारी माँ ने हमें उपहार में दी है, तो इस तरह की बातें होती हैं। और जहाँ तक सजने सवरने की बात है, तो हर स्त्री को सजना सवरना चाहिए, क्योंकि मानुष्य जीवन मिलता है, और सजना संवरना और अच्छी तरह से साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखना, वो कहते हैं कि माता अन्नपूर्णा का उसमें भाव होता है, और माता अन्नपूर्णा तो एक हमारी जो भारतीय नारी होती है, वो जिस तरह से वो सजती संवरती है, ऐसा लगता है कि देवी का स्वरूप हो।
0: बिल्कुल, तो हमारी जो देवियां हैं वो भी पूरे श्रृंगार में रहती हैं ना?
1: पूरे श्रृंगार में रहती हैं, और जब उनको देखते हैं तो एक देवी जैसी भावना आती है, अच्छा लगता है कि हमारे मन में एक सम्मान जागता है कि हमें जो हमारी भारतीय नारी, हमारी माता है बहन, इनका हमें सम्मान करना चाहिए। और जो वो शक्ति संवरती है, सजना संवरने से व्यक्ति हुआ या महिला हुई या कोई भी हुई, वो थोड़ा देखता है कि जैसे महिला कहती है अरे आपने कितनी अच्छी साड़ी पहन रखी है आज, तो आपने चोटी बड़े अच्छे ढंग से की है, उस पार्टी में आपने उस तरह से की थी, इस पार्टी में इस तरह से की है, बड़े अच्छी की है।
0: चलिए, तो बहुत सारी बातें आपसे हो गई राम नरेश जी, और आपने बहुत अच्छे से बताया है, तो फोन करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका, और जुड़े रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: साधना जैन को।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। फोन इन कार्यक्रम था ये। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 11:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
2: सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियोग में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू कर दिया है, जो 6 जून तक खुला रहेगा। छात्रों को त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रूपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रूपए का भुगतान करना होगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ग्रामीण उपभोक्ताओं को मात्र 5 रूपए में स्थायी घरेलू कनेक्शन उपलब्ध करा रही है। इस योजना में दिसंबर 2024 से अब तक 83,936 ग्रामीणों को लाभ मिल चुका है। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी विद्युत वितरण केंद्र अथवा कंपनी के कॉल सेंटर नंबर 1912 पर संपर्क किया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर की जन्म जयंती के अवसर पर आज भोपाल में शाम 6 बजे से भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान भजनों से उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने क्षेत्र के सभी स्नेहीजनों, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से इस आयोजन में शामिल होने का आग्रह किया है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया। अब भारत पूल ए में जापान और कोरिया के साथ 6 अंकों की बराबरी पर आ गया है। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज 40 से अधिक जिलों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहला गीत रहना है तेरे दिल में इस फिल्म से है। सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें, समीर का गीत और हरीश जयराज का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है गौतम नगर जिला नांदेड से प्रभाकर जोंधरे, आरती जोंधरे, औरंगाबाद से राजेश सावली पाटिल।

शीतल, राजेश, राजदीप, राजेश और राशि राजेश। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये नगमा।

अगला गीत की फरमाइश भेजिए घंटाघर चौखंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित ने। इनने सुना चाहा है कोयला फिल्म से ये नगमा, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में इंदिवर के लिखे गीत की धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जितेंद्र बिरक, मीका बिरक, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। आप सबने सुनना चाहा है मन फिल्म का ये गीत। उदित नारायण और हेमा सिरदेसाई की आवाजें हैं, समीर का गीत है और संजीव दर्शन का संगीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आपकी फरमाइश कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। अगली फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जाविंद्र कुमार वर्मा। ग्राम अमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज, ज्योति, रियांश ठाकुर ने इन सब ने सुनना चाहा है बॉम्बे फिल्म का ये नगमा चित्रा की आवाज में, महबूब का गीत और ए आर रहमान का संगीत।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा गुलाम फिल्म से, आवाजें कुमार सानू, रलका याग्निक की, समीर का की तो जतिन ललित का संगी। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, करियादंड हट्टा बालाघाट से हुलास राम कटरे, नानेश्वरी कटरे, सरोच्चो कमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, साइमा खान, मुस्तफ़ा खान, अफिया खान, राव भाई, शहीद भाई, गांधीबाग का कोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत।

इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यही कार्यक्रम दोपहर 2:30 बजे भी आप सुन सकेंगे। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, वक्त है अंतराल का।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में समय 12:30 बजे हैं। संग्रहालय के अंतर्गत सुनिए धारावाहिक सिसकियां की 7वीं कड़ी।

0: मैक्स प्रस्तुत है धारावाहिक की सातवीं कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना कि फाता मुश्ताक के घर तलाकनामा भिजवाती है और मुश्ताक गुस्से में आकर तलाकनामे पर दस्तखत कर देता है। इधर फाता मुश्ताक का दस्तखत किया तलाकनामा दिखाकर पैसों के लिए सारे का दूसरा निकाह करवाने की तैयारी शुरू कर देती है। अब आगे
1: नूरी, नूरी मेरा सामान बांध, मैं जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ।
2: कहाँ जा रहे हो?
1: तुझसे जितना कहा उतना ही किया कर।
2: कहाँ जा रहे हो, कब तक आओगे ये तो बता दो।
1: बहस ना कर, तुझसे जितना कहा उतना ही कर, समझी?
2: अजीब आदमी हो तुम, कहाँ जा रहे हो ये भी नहीं बता सकते।
1: शहर जा रहा हूँ, एक महीना लग जाएगा वापस आने में शहर से।
2: अच्छा, सामान में क्या क्या बांध दूँ?
1: नूरी नूरी मुझे देर हो रही है, सामान बांध जल्दी से, चल।
2: बांधती हूँ।
1: और सुन, पहले एक कप चाय पिला।
2: ये लो चाय।
1: रख दे, मेरे सिर पे रखेगी क्या? और खड़ी खड़ी क्या कर रही है, चल। ये चाय है, है? ये चाय बनाई है तूने, ये ले।
2: अब चाय में क्या खराबी थी?
1: चाय में क्या खराबी थी, हा? जा अपने अपने बाप से पूछ कि क्या खराबी थी, ऐसी घटिया चाय पिलाकर मारेगी मुझे।
2: देख देख रसूल, तू बात बात पर बाप का नाम ना लिया कर।
1: क्यों, बाप बहुत पसंद है तो यहाँ क्यों आई? वहीं रहती, मेरे सर मरने की क्या जरूरत थी तुझे?
2: रसूल बस करो, मैं बहस नहीं करती, तुम्हें जाना है जाओ, मुझे जो कहना है कहो, पर मेरे बाप का नाम बीच में ना घसीटो।
1: जुबान लड़ाती है।
2: हाँ हाँ, औरत पर ही हाथ उठाएगा नामर्द।
1: जुबान तो तेरी कैंची की तरह चलती है।
2: अब अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो अच्छा ना होगा।
1: अच्छा, अरे तुम औरतों को जब तक मार ना पड़े तब तक अकल ठिकाने नहीं आती तुम्हारी।
2: ये क्यों नहीं कहते कि अपनी नामर्दी को छुपाने के लिए हम औरतों पर जुल्म करते हो?
1: नूरी नूरी, अपनी जुबान बंद कर, मुफ्त की खाती है तो तुझे चर्बी चढ़ गई है, हैं?
2: रसूल, मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ जो तू मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेगा।
1: नूरी नूरी, तू औरत है, औरत के धर्म को मान, पति जो करे जैसा कहे उसे मान, अगर मैं तुझे अपने पैर की जूती बनाकर रखूं तो भी तुम्हें अपना धर्म समझकर मानना चाहिए।
2: तू अपने मर्द होने पर इतना इतरा क्यों रहा है? मैं जानती हूँ तुझे बाहर से अंदर तक कि तू कितना मर्द है, और तेरे मर्द होने पर जो औरतों को अपनी जूती बनाकर रखना चाहता है, थूकती हूँ ऐसे मर्द पर।
1: अब समझ में आया कि मर्द कौन है और कैसा होता है, है?
2: तुम एक औरत को गलत समझ रहे हो, वो तुम्हारी जूती नहीं बनेगी, और अगर तुम मार पीट कर गाली गलौज कर उसे अपने वश में रखने की बात सोच रहे हो तो भूल कर रहे हो। औरत प्यार में बंद कर रह सकती है, गुलाम बनाकर औरत को नहीं रख सकते।
1: अच्छा, औरत हमेशा से मर्दों की गुलाम रही है और आगे भी ऐसा ही होगा, तेरे कहने से कुछ भी नहीं बदलेगा, तू मेरी है, जैसे मैं तुम्हें रखता हूँ तुझे वैसे ही रहना पड़ेगा, समझी?
2: अब ऐसा नहीं होगा, जब से तुम्हारे साथ हूँ तुमने मेरे

0: साथ जुल्म ही किए हैं, लेकिन लेकिन अब तुम्हारा जुल्म नहीं सहूंगी। अगर तुम्हें सलीके से रहना है तो ठीक है, नहीं तो नहीं तो आज से हमारा तुम्हारा रास्ता अलग।
1: नूरी, मर्द के बिना औरत की बिसाथी क्या है? मैं हूं तो तू है, और मेरे बगैर तू कुछ और सोच भी नहीं सकती, समझी?
0: तुम भूल कर रहे हो, अगर मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ तो तुम्हारे जुल्म से नफरत भी कर सकती हूँ। अगर तुम अपने जुल्म को नहीं छोड़ सकते तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ।
1: चल चल, अपनी बेतुकी बातें छोड़ और घर का काम कर। चल, मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है। मेरा बैग तैयार कर, चल, मुझे देर हो रही है।
0: मेरा फैसला भी सुनते जाओ, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ।
1: क्या? तलाक?
0: हाँ, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म।
1: पागल हो गई है क्या?
0: ये मेरा फैसला है, तुम्हारे जुल्मों को अब मैं नहीं सह सकती, इसलिए मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ, आज से हमारा रास्ता अलग अलग होगा।
1: नूरी, रुको रुको नूरी, नूरी।

0: अरे अरे पाता पाता जरा सुनना।
1: कहो।
2: पाता तुमने सारे के निकाह के लिए लड़का देखने को कहा था ना?
1: हाँ कहा तो था, कोई नजर में है क्या?
2: अब है तो, मगर मगर उसका एक तलाक हो चुका है। वैसे तुम जानती होंगी उसे।
1: कौन है?
2: अरे वही, अरे अपने रसूल मियाँ, अरे वही जो ड्राइवरी किया करता है।
1: अरे उस मुए का तो निकाह हो चुका था।
2: फाता, उसका निकाह नूरी से हुआ था और नूरी ने उसे तलाक दे दिया है। अगर अगर तुम कहो तो मैं रसूल मियाँ से बात करूं।
1: रसूल वैसे कमाता कितना होगा?
2: कमाता तो है, और सुना है जल्द ही अपनी मोटर कार लेने वाला है। सारे को रानी बना कर रखेगा पाता।
1: अच्छा, मैं आज ही रसूल से मिलती हूँ।
2: अच्छा अच्छा, तो अब मैं चलूंगा। और हाँ, अब वो रसूल मियाँ से मिल जरूर लेना पाता। खुदा हाफिज़।
1: खुदा हाफिज़।

0: कौन है?
1: मैं हूँ फाता।
0: आओ आओ बैठो। मेरे तरफ कैसे आना हुआ?
1: अम्मा मियाँ, तुमसे जरूरी काम था, एक बात करनी थी तुमसे।
0: हाँ हाँ कहो, क्या बात है?
1: बुरा ना मानना, सुना है नूरी से तुम्हारा तलाक हो गया।
0: अरे नाम ना लो उस चुड़ैल का।
1: अरे अरे, तुम तो बुरा मान गए बेटा, मैं भी तो अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ, अगर कोई अच्छी लड़की मिले तो दूसरा निकाह करोगे?
0: अभी तो कुछ सोचा नहीं है, पहले मुझे ढेरों पैसे कमाने हैं और जल्द ही मुझे एक मोटर कार भी लेनी है, और फिर उसके बाद ही कुछ और सोचूंगा।
1: हाँ, ये तो तुमने अच्छा सोचा है, जिंदगी में पैसा कमाना तो बड़ी अच्छी बात है, खुदा तेरी मुराद जल्द ही पूरी करें।
0: फाता, आप किसी लड़की की बात कर रही थी?
1: हाँ, वो सारे को तो तुम देख ही रहे हो।
0: हाँ हाँ पर उसका निकाह तो मुश्ताक से हुआ था।
1: हाँ, पर नसीब ही खराब था बेचारी का, निकाह के कुछ समय बाद मुश्ताक ने सारे को तलाक दे दिया।
0: क्यों?
1: अरे अब तुमसे क्या छिपाना, हमारी स्थिति तो तुम जानते ही हो, सारे के अब्बा ने चौकीदारी करते करते अपनी जिंदगी गुजार दी, अब हमारे पास देने को कुछ बचा ही क्या है कि उस मुश्ताक को देते। हमने कहा भी कि हमारे यहाँ ही आकर रहो, पर वह माना नहीं और सारे को तलाक दे दिया।
0: चिंता ना करो, अगर मुझसे कोई मदद की जरूरत हो तो जरूर कहना।
1: मेरी बात पर जरा गौर करना बेटा, सारे के बारे में सोचना, मैं फिर आऊंगी कभी, अभी चलती हूँ बेटा।
0: जी सोचूंगा, खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज।
2: रसूल, ये फाता क्यों आई थी यहाँ पे?
0: अब बस यूं ही आई थी।
2: फाता यूं नहीं आ सकती मियां, उधर जरूर कोई काम रहा होगा।
0: अरे वो अपनी बेटी सारे की बात कर रही थी।
2: सारे की बात?
0: हाँ।
2: अभी अभी तो उसका मुश्ताक से तलाक हुआ है, बड़ी अच्छी लड़की है वो।
0: तुम जानते हो उसे?
2: बहुत अच्छे से।
0: कैसी है?
2: देखोगे तो देखते रह जाऊंगे मियाँ।
0: अच्छा।
2: जन्नत की परी लगती है।
0: हा?
2: एक बार उसको देख ले, उसके हुस्न के जादू से बच नहीं सकता मियाँ।
0: अच्छा, तो मैं सारे के लिए हाँ कर दूं?
2: अरे इसके लिए तुम्हें फाता को बस में करना होगा और उसे कुछ पैसे जरूर देने होंगे मियाँ।
0: अच्छा,
2: और वो तुम्हारे बस में हो जाएगी, वो खुश होगी तो बात आसानी से पढ़ सकती है।
0: फिर तो समझो मिया कि ये रिश्ता पक्का हुआ।
2: फिर तो मिया बात बन गई।

0: अरे अरे भाई फजी।
1: आ गए आप।
0: हाँ भाई ले ये सामान रख लो। लो तो। हाँ भाई वो मुश्ताक का बुखार उतरा या नहीं अभी?
1: नहीं, नींद में ना जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है।
0: हाँ?
1: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
0: अरे फजी हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। हकीम ने दवा दे दी है, उसे खिला दो। खुदा ने चाहा तो आज रात तक बुखार उतर जाएगा। अरे
1: अजी, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते तो।
0: भाई सोचता तो मैं भी हूं, पर कुछ पैसे का इंतजाम हो जाए तो किसी डॉक्टर के पास ले जाऊंगा।
1: सारे से तलाक क्या हुआ, बिस्तर पकड़ लिया और ऐसा पकड़ा कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा।
0: अरे आदमी तन के जख्मों को आसानी से झेल सकता है, लेकिन मन पर लगे जख्मों को भरने में वक्त लग जाता है। देखो फजी, साराय का जाना हमें बुरा लग रहा है, तो मुश्ताक की तो वो बीवी थी। मुश्ताक के लिए एक बुरा दौर, एक बड़ा इम्तिहान है ये। मुश्ताक कमजोर न पड़े, बस सब ठीक हो जाएगा।
1: अल्लाह, मेरे बच्चे पर रहम कर, ठीक कर दे उसे। उसकी सलामती ही हमारी जिंदगी है परवरदिगार।
0: अरे फजी भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा।
2: अरे करीम भाई, घर में है क्या?
0: कौन? अरे आ जाओ भाई आ जाओ, मैं घर में ही हूं।
2: अस्सलाम वालेकुम भाई जान।
0: वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ भाई अकरम, आओ आओ बैठो। हाँ भाई कहो, कैसे आना हुआ?
2: बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे थोड़ी मुलाकात कर लो।
0: ये तो आपने अच्छा किया। अरे भाई मिलते जुलते रहने से अच्छा लगता है। अरे भाई फजी चाय तो पिलाओ।
1: हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी चाय लाती हूँ।
0: हाँ भाई अकरम, और सुनाओ काम धंधा कैसा चल रहा है?
2: भाईजान, अल्लाह के रहमो करम से सब ठीक है। आप बताएं। सुना था मुश्ताक की तबीयत कुछ नासाज है, अब उसकी तबीयत कैसी है?
0: क्या बताऊं जनाब, जब से सारे से तलाक हुआ है बिस्तर से उठा ही नहीं।
2: ओहो, किसी डॉक्टर को देखा?
0: हिम्मत हार गया हूं अकरम। औलाद की तकलीफ बुजुर्गों की रही सही हड्डी तोड़ देती है। अब तो बस ऊपर वाले पर ही भरोसा है, अब वही कुछ करे तो करे।
2: भाईजान, आदमी की नीयत बदल जाए तो वो सिर्फ अपना ही नहीं, औरों का भी बुरा करता है।
0: मैं समझा नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं?
2: अरे वही फाता की।
0: फाता की?
2: क्या आपको पता नहीं है?
0: क्या?
2: साराय का दूसरा निकाह हो रहा है।
0: सारे का दूसरा निकाह?
2: हाँ।
0: किसके साथ?
2: अब रसूल मियाँ को तो आप जानते ही होंगे, और नहीं तो नाम तो जरूर सुना होगा।
0: रसूल से सारे का निकाह?
2: जी।
0: ये आप क्या कह रहे हैं? क्या फाता को मालूम नहीं कि रसूल एक नंबर का लफंगा आदमी है?
2: अजी मालूम क्यों नहीं है, पर लालच का पर्दा आंखों पर पड़ा हो तो कोई क्या करे। रसूल तो अब फाता को पैसे भी देता है, और इसी लालच में आकर फाता साराय का निकाह रसूल से कर रही है।
1: चाहे किसका निकाह हो रहा है?
0: अरे साराय का निकाह हो रहा है।
1: क्या, सारे का निकाह किसके साथ?
0: रसूल के साथ।
1: रसूल के साथ? तुम तो कह रहे थे कि वो अच्छा आदमी नहीं है, और उसका तो पहले भी निकाह हो चुका है।
0: अरे नूरी से निकाह हुआ था उसका।
2: लेकिन नूरी ने रसूल से तलाक ले लिया, अब रसूल अकेला ही रहता है।
1: नूरी ने तलाक ले लिया?
2: हाँ, अब बेचारी और क्या करती।
1: सुना है भाई जान, नूरी भी बहुत बुरा बोलती थी।
2: अब नूरी कब तक जुल्म सहती उस हत्यारे का? एक नंबर का जालिम है रसूल। नूरी को हर बात पर पीटता था, आखिर कब तक बर्दाश्त करती बेचारी। एक दिन झगड़ा हुआ और नूरी ने रसूल से तलाक ले लिया।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ।
2: अच्छा ही हुआ कि नूरी ने उससे तलाक ले लिया, आखिर उसे सुख ही क्या था। रसूल काम से शहर में महीने दो महीने बाहर रहता और वहाँ शहर में कई औरतों से उसके नाजायज ताल्लुकात थे। अरे वो तो शहर में मौज करता था और नूरी यहाँ इंतजार करती थी। और जब शहर से घर लौटता तो नूरी को पूरे तरीके से पीटता था। नूरी ने बहुत बर्दाश्त किया, जानवरों की तरह पिटती थी बेचारी। अब बताते हुए भी जुबान कांपती है, अल्लाह माफ करे।
0: ठीक ही हुआ। अरे एक औरत अपना जमीर बचाए, ये अच्छी बात है। आखिर मर्दों के जुल्म कब तक सहेगी, उसकी अपनी जिंदगी है, आखिर उसे भी जीने का हक है। और अगर कोई उस पर जुल्म करे तो उसका जवाब औरत को देना ही चाहिए, इसमें मुझे कोई बुराई नहीं दिखती। अरे अरे ये तो औरतों की अपनी लड़ाई है और नूरी ने इसकी शुरुआत की है।
1: अजी पर अब पाता तो उसी जालिम रसूल से सारे का निकाह

0: कर रही है ना।
1: अरे लालच में आकर वो सारे की जिंदगी बर्बाद कर देगी।
2: लेकिन सारे की बर्बादी में मुश्ताक का भी हाथ है।
1: वो कैसे?
2: भाईजान, ये भी फाता की चाल होगी। फाता चाहती है कि उसका दामाद उसे खूब पैसे दे, और मुश्ताक ऐसा नहीं कर पाया। उसने सारे से छुपाकर मुश्ताक से तलाक ले लिया, और अब उसकी शादी रसूल जैसे लफंगे से कर रही है ताकि वो उसे खूब पैसे दे।
1: अपनी खुशी के लिए फाता सारे की जिंदगी बर्बाद करने पर लगी है।
0: फाता इतनी लालची और मतलबी होगी, ये हमने सोचा भी नहीं था। वो सारे के साथ ऐसा धोखा करेगी, अगर ये मालूम होता तो मुश्ताक सारे को कभी तलाक नहीं देता।
2: हाँ, ये तो धोखा हुआ है, पर अब कुछ किया भी तो नहीं जा सकता भाईजान।
1: अरे भाई, हसन भट्ट से रोक सकते हैं।
2: फाता सुनती किसकी है? हसन भट्ट को गुलामों की तरह रखती है, हमेशा उसकी बेइज्जती करती रहती है। और सारे तो तलाक के सदमे से बेहोश ही हो गई थी, अभी तो उबर भी नहीं पाई है बेचारी। ना जाने रसूल से अपने निकाह को कैसे सह पाएगी।
0: औरतों की जिंदगी ही ऐसी हो गई है भाईजान कि उसे दूसरों के किए फैसले पर चलना होता है। ना जाने अल्लाह ने औरतों के नसीब में क्या लिखा है, कहीं नफरत तो कहीं जुल्म सहती रहती है।
1: मायूस मत हो फजी, अल्लाह ताला सब देखता है, सभी के जुल्मों का हिसाब रखता है वो, और देखना एक दिन सारे जुल्मों का बदला लेता है।
0: अजी, यकीन नहीं होता, जो ताकतवर है वो तो मजे से जुल्म करता है, और शराफत से जिंदगी बसर करने वाला जुल्म सहता है। यही होता आया है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। ना जाने कब बदलेगी ये तस्वीर।
2: अच्छा भाईजान, अब मैं चलूंगा, बहुत देर हो गई।
1: अच्छा, और सुनो भाई, मिलते जुलते रहना।
2: खुदा हाँ।
0: सुनो, हकीम जी के पास चले जाते, जरा दवा ले आते मुश्ताक।
1: ठीक है, अच्छा भी जाता हूँ। सुनो, वो पहले कप चाय पिला दो, बस मन जरा भारी हो गया है।
0: हाँ, पर हकीम जी के पास जरूर जाना, और किसी अच्छे डॉक्टर का पता लगाओ। मुश्ताक की बीमारी अब देखी नहीं जाती।
1: पता करता हूँ, तुम जरा जल्दी से चाय पिला दो बस।
0: हाँ, अभी लाती हूँ।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकिया की सातवीं कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीत दिया था मोहनलाल ने, गायिका सुप्रिया श्रीवास्तव, ध्वनि मुद्रण और संपादन जितेंद्र, लेखक अक्रम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे ललित, कोयना, सुप्रिया, सतीश कक्कड़, नीलम, लोकेश और आनंद। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक सिसकियां की 7वीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कवि हेमंत देवलेकर,
4: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाजें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाए। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 होने को हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
5: भारत के नए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागो, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। CBSE ने उत्तर पुस्तिकाओं की त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए आज से 6 जून तक के लिए पोर्टल शुरू किया है। छात्रों को त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को मात्र ₹5 में स्थायी घरेलू कनेक्शन योजना में दिसंबर 2024 से अब तक 83,936 उपभोक्ता लाभान्वित हो चुके हैं। अधिक जानकारी विद्युत वितरण केंद्र या कॉल सेंटर नंबर 1912 पर प्राप्त की जा सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर की जन्म जयंती पर आज भोपाल में शाम 6 बजे से भजन संध्या का आयोजन होगा। इस दौरान उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने क्षेत्र के सभी स्नेहीजनों, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से इस आयोजन में शामिल होने का आग्रह किया है। पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को हराकर पूल ए में जापान और कोरिया के साथ 6 अंकों की बराबरी कर ली है। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज 40 से अधिक जिलों में आंधी बारिश और ओले की चेतावनी दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

क्यों प्यार, विश्वास और खुशी को एक साथ समेटे हुए महिला सभा के इस अंक में आप सभी सखियों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार करें अपनी रेडियो सखी आराधना का बड़े ही प्यार व स्नेह के साथ। नमस्कार सखियों, किसी ने क्या खूब कहा है कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। जी हाँ सखियों, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। सखियों कहते हैं यदि हमारे अंदर हौसला है तो हम विकट से विकट परिस्थितियों से भी बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि परेशानियों से या कठिनाइयों से लड़ने का हौसला जो है वो हमारे भीतर ही उत्पन्न होता है। क्योंकि सखियों यदि हम हौसला रखेंगे और उसे डगमगाने नहीं देंगे ना, तो ना सिर्फ हम उस कार्य में सफल होंगे बल्कि हम मंजिल तक के सफर को आसानी से मेहनत और ईमानदारी के बल पर हासिल कर लेंगे, पालेंगे, जीत लेंगे। इसलिए सखियों बढ़िए मंजिल की तरफ और रखिए अपने मन में विश्वास इस प्यारे से गीत के साथ।

0: सदियों खूबसूरत गीतों के साथ सूचना, शिक्षा, संस्कृति, चिकित्सा और मनोरंजन, यानी ये सभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से। आकाशवाणी जो कि 1936 से अपनी स्थापना के साथ ही 90 वर्षों से भारत की आवाज बना हुआ है। पता है सखियों, आकाशवाणी दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क में से एक है, जो देश के 99% से अधिक आबादी तक 23 भाषाओं और 179 बोलियों में अपने कार्यक्रम पहुंचा रहा है। साथ ही सखियों, 90 वर्षों से अनवरत अपनी सेवाएं देने वाला आकाशवाणी कभी ट्रांजिस्टर तक ही सीमित था, लेकिन आज ये एप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी सेवाएं उपलब्ध कर रहा है, जिसमें सभी प्रोग्राम आप घर बैठे या विदेश में कहीं भी सुन सकते हैं और जुड़ सकते हैं कार्यक्रमों से। तो सखियों, 90 वर्षों के इस योगदान में सबसे बड़ी भूमिका है आप सभी के साथ की, यानी आप सभी श्रोताओं की। तो फिर सुनते रहिए भारत की आवाज आकाशवाणी। और सखियों, इस जानकारी के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2008 में शुरू की गई प्रतिभा किरण योजना के विषय में। सखियों, इस योजना का उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना व आर्थिक सहायता प्रदान करना। सखियों, इस योजना में पात्रता की यदि बात करें तो पात्र छात्रा को शहर की निवासी होना चाहिए, उसे बीपीएल श्रेणी में आना चाहिए, साथ ही कक्षा 12वीं में कम से कम 60% अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए। सखियों, इस योजना से मिलने वाली सहायता में सामान्य स्नातक की पढ़ाई के लिए प्रतिवर्ष 5000 और मेडिकल या इंजीनियरिंग जैसे पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए 7500 रुपए की वार्षिक आर्थिक सहायता दी जाती है। तो सखियों, इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए या आवेदन करने के लिए आप मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति पोर्टल पर जा सकते हैं और पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और सखियों, इस जानकारी के बाद अब वक्त है क्रम मेरी उड़ान का, पहचान का, कुछ कर दिखाने का। तो आइए सुनते हैं क्रम मेरी उड़ान। सखियों, वर्तमान परिवेश पर यदि नजर डालें तो नारी का संघर्ष, उसकी सफलता की कहानी, कहीं उसकी आगे बढ़ने की चाहत पर, तो कहीं कुछ महिलाओं की घर परिवार की जरूरतों को मद्देनजर रखकर बनी होती है। यानी आज की नारी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, ऊंची सोच और लक्ष्य से हर उस मंजिल को छू रही है जो सिर्फ हमारे लिए कभी सपना हुआ करता था। हाँ, इस राह में कई मुश्किलें और मुसीबतें जरूर आती हैं, लेकिन आज की नारी अपने हौसले से हर बाधा को पार कर आगे बढ़ रही है। तो चलिए आज बात करते हैं ऐसी ही एक सफल, सशक्त और कुछ हटकर व्यवसाय को अपनाने वाली सखी अर्पणा जैन से। अर्पणा जी जो एक मेडिकल स्टोर चलाती हैं, तो चलिए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो अर्पणा जी, स्वागत है आपका हमारे इस क्रम में।
1: नमस्कार।
0: तो अर्पणा जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसे और कहां से आपने इस कार्य की शुरुआत की, यानी आपका ये सफर कहां से शुरू हुआ?
1: एक्चुअली मेरे इस सफर की शुरुआत शादी के बाद और बेटे के जन्म के बाद हुई। मैं हमेशा से ही कुछ अलग करना चाहती थी जिससे मेरी एजुकेशन का सदुपयोग हो और साथ ही समाज के लिए मैं कुछ उपयोगी कर सकूं, ऐसा व्यवसाय करना चाहती थी।
0: बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है अर्पणा जी। तो इसके लिए आपने क्या पढ़ाई की और कौन सी डिग्री लेना इसके लिए जरूरी होता है?
1: वैसे तो मैंने फिजिक्स में MSc किया है, BEd हूँ और डी फार्मा भी है। देखा जाए तो मेरे पास टीचिंग का सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल कैरियर का ऑप्शन था, पर चूंकि मुझे कुछ अलग सा करना था जिसमें मेडिकल स्टोर खोलने का ऑप्शन ज्यादा पसंद आया। और मेडिकल स्टोर खोलने के लिए कम से कम आपके पास फार्मेसी में डिप्लोमा होना जरूरी होता है और साथ ही फार्मेसी स्टेट काउंसिल से रजिस्ट्रेशन और ड्रग सेलिंग का लाइसेंस भी होना चाहिए।
0: तो अर्पणा जी, जब आपने मेडिकल स्टोर खोलने का जो निर्णय लिया, सभी के बीच में आपने जब अपनी बात रखी, तब आपके परिवार से आपको सपोर्ट मिला? और सपोर्ट यदि मिल गया तो इस दौरान कौन कौन सी आपके बीच में परेशानियां आई?
1: क्योंकि हमारे देश में मेडिकल स्टोर जनरली देखा है कि पुरुष ही चलाते हैं।
0: हाँ, ये पुरुषों का व्यवसाय है
1: हाँ जी
0: बिल्कुल।
1: हाँ, तो पुरुष ही चलाते हैं, तो एक महिला होने के नाते मेडिकल स्टोर खोलना और चलाना एक्चुअल में टफ वर्क है।
0: बिल्कुल, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत सारी महिलाएं करती हैं और
1: या
0: लड़कियां करती हैं, लेकिन वो खोलने से
1: मेडिकल
0: थोड़ा
1: स्टोर
0: हिचकती हैं।
1: हिचकती हैं, तो कि आपको हर तरह के व्यक्ति को उसमें डील करना पड़ता है। तो इन सब में मेरे परिवार, स्पेशली पति का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा। उनके सपोर्ट के बिना तो ये काम संभव ही नहीं था, क्योंकि एक तो ये बहुत ही जिम्मेदारी और अलर्टनेस का जो है, आज
0: बिल्कुल
1: का समय ऐसा है, रोज रिसर्च हो रहे हैं, तो रोज नित नई तरह की बीमारियों के बारे में हम सुन रहे हैं, तो नित नई दवाइयां आ रही हैं उनके लिए, और उन सबको अवेलेबल कराना, किस जगह किस एरिया में उपलब्ध है कहाँ नहीं है, उन सबको उपलब्ध कराना, एक्सपायरी डेट वगैरह चेक करना, साथ ही जीएसटी के बाद सारा ये बिलिंग का काम, जीएसटी, तो ये सब बिजनेस के उतार चढ़ाव, इस सब में मेरे पति ने बहुत ज्यादा सहयोग दिया।
0: अपना जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है। अच्छा अर्पणा जी, ये बताइए कि क्या कभी किसी व्यक्ति या महिला के पास में कोई आपके पास में आई दुकान पर दवाई खरीदने, तो उस टाइम दवाई खरीदने के उसके पास में पैसे नहीं है मान लीजिए, तो उसको जरूरत है, तो ऐसे में आप क्या करती हैं?
1: जनरली तो देखा गया है कि दवा खरीदने वाला आया हुआ व्यक्ति जो आता है वो अब पैसे लिए हुए हो, पर कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर के पास पूरे पैसे नहीं होते हैं, तो हम उन्हें या तो दवा में ही अमाउंट कम कर देते हैं, उन्हें छूट दे देते हैं, और यदि बिल्कुल भी ना हो तो जरूरत की दवा उन्हें फ्री में ही दे देते हैं,
0: यानी कमजोर
1: ताकि
0: व्यक्ति हो, कोई भी हो, तो आप उनको फ्री में भी कई बार दवा
1: दे
0: दे देते
1: देते हैं। जी
0: हैं, है ना?
1: बिल्कुल।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो अर्पणा जी। अच्छा ये बताइए कि क्या इस व्यवसाय में, आप जो व्यवसाय कर रही हैं, इसमें उधार भी लिया दिया जाता है, बाद में आप उन पर चुकाने आते हैं लोग बाग?
1: जी, जैसे ये बिजनेस है, मेडिकल स्टोर का बिजनेस है, इस बिजनेस की एक खासियत है, यहाँ बिजनेस में अन्य तरह के जो बिजनेस होते हैं उनमें आप माल खरीदते हैं और फिर आप बेचते हैं, फिर आपका पैसा वापस आता है,
0: बिल्कुल
1: लेकिन ये इन सभी बिजनेस के अपोजिट होता है, इसमें माल उधार पर आता है और कुछ समय के लिमिट के बाद उसको चुकाना होता है, और लेकिन दवा बिकती नकद में है, तो इसमें चूंकि मेडिसिन के रेट काफी बढ़ते रह रहे हैं, आप अभी समय देख रहे हैं जिसमें काफी रेट में इंक्रीज ही होते जा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है व्यक्ति पूरा अमाउंट लिए नहीं होता है तो हमें उधार भी देना होता है, और क्योंकि सबसे बड़ी बात तो होती है कि व्यक्ति की जान सबसे ज्यादा कीमती है, सबसे
0: ये
1: बड़ी बात
0: सबसे
1: है,
0: बड़ी बात है।
1: तो एक आध मामले को आप यदि छोड़ दें तो उधार लेने वाले व्यक्ति लेकिन समय के साथ कोशिश करते हैं कि वो अपना उधार चुका देते हैं।
0: बिल्कुल अर्पणा जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि व्यक्ति की जान सबसे ज्यादा कीमती है
1: बिल्कुल।
0: ना? अंत में आप हमारी सखियों से क्या कहना चाहेंगी?
1: मेरा तो अपनी सभी सहेलियों से, सखियों से यही कहना है कि आज के इस महंगाई के युग में, जहाँ कोई काम हमें आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करता है और किसी महिला का कैरियर, यानी कहना चाहिए कि सफल कैरियर, यदि वो उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाता है, तो साथ ही उनके पीछे आने वाली जो महिलाएं हैं वो उन्हें अपना रोल मॉडल मानने लगती हैं,
0: बिल्कुल कुछ ना कुछ सीखती हैं
1: सीखती
0: आगे
1: हैं,
0: बढ़ने के
1: तो
0: लिए।
1: वो जो
0: बिल्कुल
1: है काम करने वाली महिला है वो तो आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनती है, उसका आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता बढ़ती है,
0: बिल्कुल
1: लेकिन उनके पीछे पूरी एक महिलाओं की लाइन आ रही होती है, सफल वर्किंग वुमेन रोल मॉडल होती है और उनके लिए प्रेरणा का काम करती है, तो महिलाओं को कहना चाहिए, सबसे जरूरी बात यह है कि एक आर्थिक रूप से कामयाब महिला कई और महिलाओं की प्रेरणा बन जाती है और
0: बिल्कुल
1: उन्हें आगे बढ़ाने में प्रेरणा भी देती है, तो हम चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे करियर हल्का भी थोड़ा हो, लेकिन हमें उसको सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत, पूरी लगन और निष्ठा से काम करना चाहिए।
0: बिल्कुल, यानी छोटे छोटे स्टेप लेकर आप यदि आगे बढ़ते जाएंगे तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी और आप उस काम
1: जी
0: में
1: हाँ जी
0: सफल
1: हाँ
0: होंगे। और आपने हमारी सखियों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके
1: धन्यवाद।
0: लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सखियों, ये तो था क्रम मेरी उड़ान, और अब सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

और सखियों, इस प्यारे से गीत के बाद अब चलते हैं खूबसूरती की ओर। सखियों, खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए मेकअप के छोटे छोटे राज को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ढेर सारा मेकअप ही आपको खूबसूरत बनाएगा या फिर दिखाएगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो चलिए सखियों, आज आपको बताते हैं कि सौंदर्य के छोटे छोटे उपायों से भी आप अपने व्यक्तित्व को बना सकती हैं आकर्षक और खूबसूरत। जैसे कि सखियों, रोज रोज लिपस्टिक से बचने के लिए आप गहरे रंग की लिपस्टिक के बजाय होंठों पर हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक का प्रयोग करें। इससे होंठों पर हल्की चमक व तरावट बनी रहती है और साथ ही हल्का गुलाबी रंग होंठों के कुदरती रंग को भी बरकरार रखता है। होंठों के बाद अब बात यदि आँखों की करें सखियों, तो यदि आप आँखों के मेकअप से कतराती हैं और नहीं करना चाहती हैं, और बेवजह आई शेडो, आई लाइनर या फिर काजल का प्रयोग भी नहीं करना चाहती हैं, तो ऐसे में आँखों को सिर्फ मस्कारे की थोड़ी मोटी परत पलकों पर लगाएं। ये पलकों को इतना आकर्षक बना देती है कि इसके साथ आपको अन्य कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से क्यों, नमी रहित त्वचा से चेहरा बेजान और अस्वस्थ यानी बेरंग बेनूर नजर आता है, इसलिए बेरंग त्वचा को चमकदार बनाने के लिए मॉइस्चराइजर में हल्का शिमर मिलाएं। इससे आपकी त्वचा जो है वो दमकती नजर आएगी। तो सखियों, ये तो थे मेकअप के छोटे छोटे से राज, जिनको आजमा कर देखें आप भी मेकअप करते समय। और अब कार्यक्रम में चार चांद लगाते हैं इस गीत के साथ।

गीत के बाद अब सखियों चलते हैं अपनी रसोई में। सखियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम फलों के राजा आम का चल रहा है, आम जो कि बाजार में कई सारी वैरायटियों में इस समय उपलब्ध है, तो चलिए आज रसीले आमों से ही बनाते हैं अपनी रसोई में एक बहुत ही आसान और यम्मी टेस्ट वाला ठंडा ठंडा मैंगो श्रीखंड। सखियों, दो लोगों के लिए मैंगो श्रीखंड बनाने के लिए आपको चाहिए सामग्री: ताजा दही 500 ग्राम, आम 2 नग, पिसी हुई चीनी स्वादानुसार, साथ ही चाहिए आपको इलायची पाउडर, बादाम की कतरन, पिस्ता की कतरन, केसर और थोड़ा सा गुलाब जामुन।

और अब इसे बनाते कैसे हैं, तो नोट कीजिए सखियों इसे बनाने की विधि। सखियों, सबसे पहले दही को मलमल के कपड़े में डालकर 3 घंटे के लिए टांग दें, ताकि उसका जो पानी है वो सारा पानी निकल जाए। अब एक आम का पल्प बना लें और दूसरे को बारीक टुकड़ों में काट लें। अब एक आम का पल्प बना लें और दूसरे को बारीक टुकड़ों में काट लें। इसके बाद अब एक बड़े बाउल में विस्कर की मदद से दही को अच्छी तरह से फेंट लें, जब तक कि वह एकदम क्रीमी ना हो जाए। फिर उसमें पिसी हुई चीनी और आम का पल्प डालकर 5 मिनट तक और फेंटें। अब इसमें कटे हुए आम, इलायची पाउडर, बादाम और पिस्ता की कतरन और साथ ही भीगी हुई केसर और थोड़ा सा गुलाब जल डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें और अब तैयार श्रीखंड को 1 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने दें। तो लीजिए, तैयार है सर्व करने के लिए स्वादिष्ट ठंडा ठंडा मैंगो श्रीखंड। और अब सखियों आनंद लीजिए इस प्यारे से गीत के साथ ठंडे ठंडे मैंगो श्रीखंड का।

और बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बात करते हैं अज्ञात विज्ञापनों से रहें सावधान। यानी सखियों, उन लुभावने, झूठे या बिना पहचान वाले विज्ञापनों से सतर्क रहें जो हम उपभोक्ताओं को ठगने या गुमराह करने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे में सखियों, धोखाधड़ी से बचने के लिए विज्ञापनों की सत्यता को परखना बेहद जरूरी है। यानी कुछ सावधानियां बरतना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। जैसे कि अतिशयोक्ति से बचें, यानी अगर कोई विज्ञापन बहुत ही शानदार लग रहा है तो उस पर आसानी से विश्वास बिल्कुल भी न करें, बल्कि किसी भी सामान को सखियों खरीदने से पहले कंपनी के आधिकारिक स्रोतों से उसकी पुष्टि कर लें। साथ ही सखियों, उस विज्ञापन से संबंधित निष्पक्ष रिव्यूज और रेटिंग्स की भी जाँच करें। वही लुभावने विज्ञापनों के पॉपअप पर अपनी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी कभी भी दर्ज न करें। लेकिन हाँ सखियों, भारत सरकार के राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पोर्टल पर जाकर विज्ञापनों से संबंधित नियमों और धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के तरीकों के बारे में जागरूक अवश्य रहें। तो सखियों, ये तो थी छोटी सी जानकारी अज्ञात विज्ञापनों से सावधान रहने की। और अब सखियों, हमारे मिलने का समय बस यहीं तक। चलते चलते हम आपको बता दें कि हमारे इस खूबसूरत कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने। और अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति आराधना जैन को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला सभा कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। समय है अंतराल का।

0: कवि श्री राग तेलंग।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्व होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है जिसमें आप सुनेंगे नारायण सिंह सिसोदिया और साथियों के गाए मालवी लोकगीत।

0: इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। डीटीएच पर आप सुन रहे ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: न सनसनी, न सनसनी, न सनसनी, न उत्तेजना, न उत्तेजना, न उत्तेजना, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे परीक्षित पर नीरकर के गाए गीत।

परीक्षित पर्निकर के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। वक्त है अंतराल का।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2 बजे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत सुमन कल्याणपुर की आवाज में दादा फिल्म से, महेंद्र दहलवी का गीत और उषा खन्ना का संगीत।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा लोगों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों की प्रगति से ही देश का समग्र विकास संभव है। राष्ट्रपति ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाओं ने जनजातीय समुदाय के युवाओं को उच्च शिक्षा और नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना अपनी समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और उद्यमशीलता की भावना के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने स्वामित्व योजना के तहत पट्टाधारियों को संपत्ति के पंजीकृत दस्तावेज का फैसला किया है। इस निर्णय से प्रदेश के करीब 48 लाख पट्टाधारियों को लाभ मिलेगा। सरकार इसके लिए लगभग 3,800 करोड़ रुपए खर्च करेगी और पंजीयन समेत अन्य शुल्क भी वहन करेगी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत जुलाई से नई बस सेवा शुरू की तैयारी है। इसकी शुरुआत इंदौर क्षेत्र से होगी, जहां इंटरसिटी, सिटी और अंतर्राज्यीय बसों पर मार्गों पर बसें चलाई जाएंगी। योजना के तहत इंदौर शहर में 150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी प्रस्तावित

0: हैं। प्रदेश भर में कुल 1164 मार्गों पर 5206 बसें चलाने की योजना बनाई गई है। इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया,
1: जब आज सड़कें अच्छी बन गई और गांव के अंदर बिजली पानी सड़क सारी प्रबंधन हो गए, तो आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सबकी जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी, इस साल का रक्षाबंधन बहनें अपनी बसों से जाएगी, ये प्रयास कर रहे हैं। सेवा के माध्यम से राज्य के अंतर्वर्ती क्षेत्रों में भी बाकी राज्यों के साथ भी इसका संबंध जोड़ते हुए परिवहन का एक बहुत अच्छा तंत्र सड़क परिवहन में यात्री परिवहन सेवा के रूप में आएगा।
0: बालाघाट जिले के ग्राम नांदी की महिला किसान प्रभावती हरिणखेड़े तिल की वैज्ञानिक खेती अपनाकर अन्य किसानों के लिए मिसाल बन रही हैं। कृषि विभाग के मार्गदर्शन में उन्होंने उन्नत बीजों और आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर तिल की फसल लगाई है। कम पानी में होने वाली इस फसल से बेहतर उत्पादन और आय की उम्मीद है। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए आज से शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से चुने गए 1872 शिक्षकों को राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद ये शिक्षक अपने अपने जिलों में अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। और अब बात मौसम की। प्रदेश में नौतपा के आखिरी दिन भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले 8 दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है, जिससे गर्मी और लू का असर लगभग खत्म हो गया है। मौसम विभाग ने आज 45 जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। भारत में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका की योगासन टीम भारत के लिए रवाना हो रही है। 11 सदस्यीय अमेरिकी दल युवा और वरिष्ठ दोनों वर्गों में प्रतिस्पर्धा करेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा में 5 जून तक ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी पालन सहित जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। छिंदवाड़ा के चौरई में काले हिरण का शिकार करने वाले एक आरोपी को वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। आरोपी पिछले एक माह से फरार चल रहा था। झाबुआ में 28 जून को सभी पोलियो बूथों पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। 29 और 30 जून को स्वास्थ्य टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को खुराक पिलाएंगी। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने राजस्व विभाग में पदस्थ राजस्व निरीक्षक को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पन्ना जिले में आज तड़के शाहनगर और पवई सहित कई हिस्सों में बूंदाबांदी हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिली है। शिवपुरी जिले में अवैध उत्खनन करने और पट्टा शर्तों का उल्लंघन करने पर कलेक्टर द्वारा एक फर्जी पत्थर खदान का पट्टा निरस्त किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए, पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
3: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार

0: फलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
0: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक हैं। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
0: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
1: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण, समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं उन्हें बुखार, सिरदर्द, और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुनिए गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जाँच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

0: रिपोर्ट। ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गाजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जनकेंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर आधा प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आवृजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का पहला नगमा हमने लिया है क्रांति फिल्म से। आवाज़ें लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की है। संतोष आनंद का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इस गीत को पसंद किया है। ग्राम महेश्वाड़ी, तहसील मलकापुर, महाराष्ट्र से शत्रुघ्न खाड़े, वाल्मीकि खाड़े, निनाजी खाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय शिरोडकर, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये नगमा।

महबूब की मेहंदी, लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने, आनंद बख्शी की बोल है और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की। इस गीत की फरमाइश भेजी है नेपाल पैलेस सागर से।

राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका, रॉबिन, कोटवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल रॉय, आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं महबूब की मेहंदी फिल्म का ये नगमा।

अगली फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गनुलाल रजक के आर साहू अश्विनी वर्मा गणेश कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली मीना श्रीमाली आदित्य अदिति शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने आप सबने पसंद किया है चमत्कार फिल्म का ये गीत जिसे आवाजें दी हैं कुमार सानू और अलका याग्निक ने आनंद बख्शी का गीत और अनु मलिक का संगीत।

नूरी फिल्म से सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश को जान निसार अख्तर के लिखे गीत की धुन बनाई है खय्याम ने। इस गीत की फरमाइश भेजी है जयराज प्लोट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा जासमिन और प्रयागराज भट्ट, आदर्श नगर मलोट से दास शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाही

कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश संगीत फिल्म के इस गीत की अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर ने जिसे आवाज दी है, संतोष आनंद का गीत और आनंद मिलिंद का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद, सौरभ गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, किशोरी बोस, छोटू डुंडुन और समस्त परिवार, जयराज प्लोट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा जासमिन और प्रयागराज भट्ट, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा लोगों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों की प्रगति से ही देश का समग्र विकास संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना अपनी समृद्ध संस्कृति गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने स्वामित्व योजना के तहत पट्टाधारियों को संपत्ति के पंजीकृत दस्तावेज देने का फैसला किया है। इस निर्णय से प्रदेश के करीब 48 लाख पट्टाधारियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत जुलाई से नई बस सेवा शुरू करने की तैयारी है। इसकी शुरुआत इंदौर क्षेत्र से होगी, जहां इंटरसिटी और अंतर्राज्यीय मार्गों पर बसें चलाई जाएंगी। योजना के तहत इंदौर शहर में 150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी प्रस्तावित है। प्रदेश की शासकीय स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए आज से शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से चुने गए 1872 शिक्षकों को राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। और अब बात मौसम की। प्रदेश में नौतपा के आखिरी दिन भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने आज 45 जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 188.32 मीटर साथी डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर रात 8:15 और रात 10:00। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:00। 6:30 सुनिएगा चित्रपट संगीत। 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में आप सुनेंगे 1 जून 2026 को ग्राम रामसिया जिला रायसेन में आयोजित राष्ट्रव्यापी बचाओ अभियान के उद्घाटन की रेडियो रिपोर्ट। रात 8:00 समाचार सेवा आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष किसान कल्याण, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे। उर्दू प्रोग्राम कहकशा में आप सुनेंगे गजलों पर आधारित कार्यक्रम आबशारे गजल रात 9:30 और रात 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे रामदास मुंगरे का ख्याल गायन रागों का गौण मल्हार। ये थे हमारे केंद्र से शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 188.32 मीटर साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है शाम 5:00 से मीडियम

जानेंगे कि कैसे आप कागजात को संभालने की टेंशन को कम कर सकते हैं। साथ ही सुनेंगे कुछ सदाबहार फिल्म संगीत और जानेंगे रोजगार के सुनहरे अवसर। तो बने रहिए हमारे साथ, आइए बिना देर किए ट्यून इन करते हैं आज की शाम का ये पहला गीत।

आवाज़ों का एक ऐसा सफ़र जो 9 दशकों से जारी है, हर दिल तक पहुंचने की जिसकी अपनी जिम्मेदारी है। कभी खबर बनकर, कभी गीत बनकर, कभी प्रेरणा की कहानी है। समय बदला, तकनीक बदली, लेकिन जिसकी पहचान आज भी उतनी ही पुरानी है। तरंगों पर सवार होकर जिसने पूरे देश को जोड़ा है, वह और कोई नहीं, हमारी अपनी आकाशवाणी है। साथियों, जून का यह पहला हफ्ता अपने साथ एक खास खुशी लेकर आया है। कुछ ही दिनों बाद यानी 8 जून को हमारी अपनी आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूरे करने जा रही है। 9 दशक यानी पूरी 90 साल का यह बेमिसाल गौरवशाली सफ़र। साथियों, यह सफ़र सिर्फ समय का नहीं बल्कि लोगों के विश्वास, प्यार और साथ का सफ़र है। एक समय था जब न मोबाइल था, न इंटरनेट और ना ही सोशल मीडिया। तब दूर दराज गाँव में बैठे किसी बुजुर्ग से लेकर शहर के नौजवान तक सबकी सुबह इसी एक परिचित आवाज़ से होती थी, यह आकाशवाणी है। और बस इस वाक्य के साथ शुरू हो जाता था खबरों, जानकारियों, गीत संगीत और प्रेरणादायक कार्यक्रमों का सिलसिला। दोस्तों, आकाशवाणी सिर्फ एक प्रसारण सेवा नहीं है, यह उन करोड़ों श्रोताओं की भावनाओं से जुड़ी एक ऐसी संस्था है जिसने 90 वर्षों तक लोगों के जीवन में अपनी खास जगह बनाए रखी है। किसी ने इससे देश दुनिया की खबरें सुनी, किसी ने अपने पसंदीदा गीतों का आनंद लिया, तो किसी ने नई बातें सीखी। कई लोगों के लिए यह मनोरंजन का साधन था, तो कई लोगों के लिए जानकारी और मार्गदर्शन का भरोसेमंद साथी। यही कारण है कि 90 वर्षों का यह सफ़र केवल आकाशवाणी का नहीं है बल्कि उन लाखों करोड़ों श्रोताओं का भी है जिन्होंने इसे सुना, सराहा और अपना प्यार दिया। समय बदलता गया, पीढ़ियां बदलती गईं, लेकिन आकाशवाणी और श्रोताओं के बीच का यह रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत बना हुआ है। वक्त बदला, तकनीक बदली, लेकिन आकाशवाणी की विश्वसनीयता और इसका आकर्षण आज भी हमारे दिलों में वैसा ही जिंदा है। दोस्तों, यह मंच कभी पुराना नहीं होता बल्कि हर दौर के युवाओं के साथ और भी नया हो जाता है। आज आकाशवाणी न सिर्फ रेडियो सेट पर उपलब्ध है बल्कि न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन, OTT वेव्स और DTH के ऑडियो चैनल पर भी उपलब्ध है। तो आकाशवाणी के इस आने वाले ऐतिहासिक पड़ाव के लिए आप सभी श्रोताओं को एडवांस में बहुत बहुत बधाई। आपके इसी प्रेम और अटूट भरोसे ने हमारी इस यात्रा को इतना आनंददायक और यादगार

साथियों, अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, एक ऐसी सुविधा की जिसने हमारे जरूरी दस्तावेजों को संभालने का तरीका काफी आसान बना दिया है। जरा सोचिए, अगर आप किसी जरूरी काम से बाहर निकले हों और अचानक आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या मार्कशीट की जरूरत पड़ जाए, लेकिन वह दस्तावेज आपके पास ना हो तो क्या होगा? ऐसी ही परेशानियों को कम करने के लिए भारत सरकार ने शुरू किया है डिजी लॉकर। साथियों, डिजी लॉकर आपके स्मार्टफोन के अंदर रहने वाली एक ऐसी सरकारी डिजिटल तिजोरी है जहां आपके सारे जरूरी दस्तावेज हमेशा सुरक्षित रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कभी भी कहीं भी आप उन्हें अपने मोबाइल में देख या साझा कर सकते हैं। अब कई दोस्तों के मन में सवाल आ रहा होगा कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स का फोटो खींचकर फ़ोन की गैलरी या गूगल ड्राइव में भी तो रख सकते हैं, फिर डिजी लॉकर ही क्यों? तो दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। कई जगह पर अगर आप गैलरी से फ़ोटो दिखाएंगे तो शायद वो मान्य ना हो, जैसे एयरपोर्ट्स पर, लेकिन डिजी लॉकर ऐप से दिखाए गए डॉक्यूमेंट्स सरकारी स्तर पर मान्य होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट्स आप खुद अपलोड नहीं करते, बल्कि वो सीधे जारी करने वाली संस्था जैसे आपका बोर्ड, यूनिवर्सिटी या RTO ऑफिस से आपके अकाउंट में डिजिटल रूप से वेरीफाई होकर आते हैं। और IT एक्ट के तहत इसे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बराबर का दर्जा मिला हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि

ये पूरी तरह से मुफ्त है, सुरक्षित है और इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है। बस अपने आधार कार्ड और लिंक्ड मोबाइल नंबर की मदद से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो अब कागजात को संभालने की इस चिंता से पाइए मुक्ति, क्योंकि डिजिटल दौर की यही है सबसे बेस्ट युक्ति। आशा करती हूँ कि आप आज ही अपने स्मार्टफोन में डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड करेंगे और अपने दस्तावेजों के खोने या खराब होने की चिंता को हमेशा के लिए अलविदा कहेंगे। चलिए, ज्ञान और तकनीक की बातें तो हो गई, अब वक्त है थोड़ा सा गुनगुनाने का। आइए रुक करते हैं आज की शाम के अगले बेहद खूबसूरत नगमे की।

साथियों, अब वक्त हो चला है रोजगार सूचना का। SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कंबाइन ग्रेजुएट लेवल के तहत 12,256 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके जरिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, ASO और ऑडिटर जैसे बड़े पदों पर भर्ती की जाएगी। योग्यता किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 21 मई 2026 से शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। अधिक जानकारी के लिए SSC की ऑनलाइन वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। आशा है आप इस जानकारी का जरूर लाभ उठाएंगे। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा

खुशी और गम हमारी ज़िंदगी के सिक्के के दो पहलू हैं। आज अगर गमों का अंधेरा है तो ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा, जल्द ही खुशियों की रोशनी इस अंधेरे को दूर करेगी, बशर्ते आप हिम्मत बनाए रखिए और छोटी छोटी चीज़ों से खुशियों को ढूंढिए। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। तो दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि आज के दौर में न जीतना ज़रूरी है और ना ही हारना ज़रूरी है, ये खेल ही लाजवाब है, इसे बस खेलना ज़रूरी है। इसी के साथ सुनते हैं आज का अगला गीत।

मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, बशर्ते आप ज़रा हिम्मत तो करें, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, आप ज़रा कोशिश तो करें। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ मैं कीर्ति मीना अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों और मनोरंजन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।

0: अभी आप आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति में सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। अब लेते हैं एक अंतराल।
1: मिस सीमा
2: जी,

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट
0: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा।

और अब सुनिए विशाल मिश्रा की आवाज में स्त्री टू से ये खूबसूरत गीत अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा हुआ, जिसे संगीत दिया है सचिन जिगर ने।

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म से अगला गीत सुनिए अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ है, अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे हुए बोल और प्रीतम ने इसे संगीत दिया है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक।

जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा,
1: डीडी डायरेक्ट।
0: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा, डीडी डायरेक्ट।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 5:58 हुए हैं और अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन और पंजीयन योजना 2026 को स्वीकृति दी। इसके माध्यम से 48.32 लाख निजी संपत्ति धारक वैधानिक अधिकार पाकर मालिक बन जाएंगे। बैठक में प्रदेश के चहुमुखी विकास, जनकल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कुल 21,485 करोड़ की स्वीकृति दी गई। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसी श्रेणियों में उत्कृष्टता प्रदर्शित की है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रोड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं एक साथ काम कर रहे हैं। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। ये मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिन के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेव और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ लेन देन का रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर वित्तीय सेवा विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए धन्यवाद दिया।

दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश कादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। जी हाँ, और आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आपका स्वागत कर रही है आपकी रेडियो साथी अंशु अग्रवाल। जी हाँ, शाम के 6:11 हो रहा है और आई एम श्योर इस वक्त आप सभी अपने ऑफिस से, अपने दफ्तरों से घर की ओर निकल चुके हैं, और मैं देख सकती हूँ कि मौसम ने भी थोड़ी सी जो है अपनी करवट ली है, थोड़ा सा मौसम बदला है। और ऐसी शाम में जब आप अपने घर की ओर निकल रहे हैं, अपनी कार में हैं, मेट्रो में हैं, और उस समय अगर आपके मनपसंद गीत आप तक पहुंच जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के किशोरदा की आवाज़ में ये गीत आपको सुनवाते हैं। लेकिन गीत सुनवाने से पहले छोटी सी हिंट मैं आपको देना चाहूँगी। ये गीत, ये फिल्म आई सन 1971 में, और मुंबई के बांद्रा किले के परिसर में इसको फिल्माया गया था। साथ ही बांद्रा वर्ली सी लिंक जब नहीं बना था, उसको अस्तित्व में आने से पहले सन 1970 में मुंबई के समुद्र के सामने इस गीत के दृश्य को पूरी तरह से शूट किया गया था। तो आप फिल्म का नाम सोचिए और मुझे लिख भेजिए इस फिल्म का सही नाम। तब तक एंजॉय कीजिए ये गीत।

जी हाँ, ये फिल्म थी कटी पतंग। आवाज़ थी किशोर दा की और संगीत दिया आर डी बर्मन साहब ने और गीत लिखा आनंद बख्शी जी ने। किशोर दा की आवाज़ में एक और खूबसूरत गीत आपके लिए।

0: इति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको नरेन्द्रदत्त सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया प्रोक्तं यत् शिक्षा सशक्तीकरणस्य महत्वपूर्णं साधनं विद्यते, अपि च वास्तविक विकासः तदैव सम्यक् रूपेण प्राप्स्यते यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकेन, आर्थिकेन, शैक्षिकेन च रूपेण विकसिताः भविष्यन्ति। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इत्यनेन विगतमासे 23.20 अरब रूप्यकाणां आदान प्रदान विषयकं शिखरं समावाप्तम्। केन्द्रसर्वकारेण आव्रजन नियमे निर्गतायाः अधिसूचनायाः अनुसारम् अधुना 80+100 दिनानि यावत् आगम्यमानाः वैदेशिकाः यदि स्वकीयं प्रवाससमयं वर्धयितुमिच्छन्ति तर्हि तेभ्यः आव्रजनावधेः समाप्तिपूर्वम् एव पञ्जीकरणम् अनिवार्यमस्ति। भारतस्य मुख्यन्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः इत्यसौ अद्य सर्वोच्चन्यायालयस्य 5 न्यायाधीशेभ्यः पदस्य शपथवचनं प्रायच्छत्। सर्वोच्चन्यायालये न्यायाधीशानां संख्या समेध्य 38 सञ्जाता। अपि च विज्ञानप्रौद्योगिकीमन्त्री डॉ. जितेन्द्रसिंह, जर्मनीदेशस्य थुरिङ्गिया इत्यस्य मन्त्री, राष्ट्रपती च मारियो वोग्ट् इत्यसौ च अद्य नवदिल्ल्यां क्वाण्टम् सञ्चारस्य फोटोनिक्स् इत्यस्य उद्योगनेतृत्वभूतस्य डीप्टेक् सहयोगस्य च विषये चर्चितवन्तौ। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मुवर्यया प्रोक्तं यत् शिक्षा सशक्तीकरणस्य महत्वपूर्णं साधनं विद्यते। शिक्षा एव जनान् आत्मनिर्भरं, जागरूकः, सक्षमश्च कारयति। अद्य नवदिल्ल्याम् असौ जनजातीय छात्रवृत्तिलाभार्थिनः सम्बोधयति स्म। अस्मिन् अवसरे सा प्रोक्तवती यत् वास्तविक विकासः तदेव सम्यक् रूपेण प्राप्स्यते यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकेन, आर्थिकेन, शैक्षिकेन च रूपेण विकसिताः भविष्यन्ति।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: सा रेखांकितवती यत् सर्वकारस्य छात्रवृत्तियोजनया जनजातिवर्गेभ्यः उच्चशिक्षायाः अवसराणां च आदानेन प्रदानेन तेषां जीवनं परिवर्तितम्। द्रौपदी मुर्मुवर्या अकथयत् यत् भारते प्रतिभासम्पन्नानां नैयून्यं न अस्ति, अपि तु तेषाम् अभिज्ञानं, पोषणं, तेभ्यः उचितमार्गदर्शनप्रदानं च आवश्यकमस्ति।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इत्यनेन विगतमासे 23.20 अरब रूप्यकाणां आदान प्रदान विषयकं शिखरं समावाप्तम्। वित्तीय सेवा विभागः सार्वजनिक संदेश माध्यमे लिखिते संदेशे डिजिटल इति रूपेण धनादान प्रदानं स्वीकर्तुं नागरिकान् प्रति आभारं व्यक्तीकृतवान्। अवधेयं यत् UPI इत्येतत् प्रकल्पं विश्वस्य सर्वोच्चत्वेन रियल टाइम पेमेंट इति प्रकल्परूपेण समुद्भूतमस्ति, यत् देशस्य डिजिटल अर्थव्यवस्थायाः आधारः वर्तते। केन्द्रसर्वकारेण आव्रजन नियमे विदेशनियमेषु

0: नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार मध्य प्रदेश के सीहोर और बैतूल जिलों में पारंपरिक हस्तशिल्प कलाओं को जीवंत रखा गया है। स्थानीय कारीगर अपनी कला के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीहोर जिले के बुदने की। यहाँ दूधी की लकड़ी से निर्मित मनोहारी खिलौनों का उद्योग बदलते समय के साथ भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। माना जाता है कि ये उद्योग लगभग 100 से 200 वर्ष पुराना है और विश्वकर्मा समुदाय की कई पीढ़ियां इस पारंपरिक कला को आगे बढ़ा रही हैं। बुदनी विशेष रूप से अपने रंग बिरंगे लकड़ी के खिलौनों और हस्तशिल्प उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के कारीगर दूधी तथा अन्य स्थानीय लकड़ियों का उपयोग कर खिलौने, लट्टू, छोटी गाड़ियां, रसोई सेट, झूले, सजावटी वस्तुएं और घरेलू उपयोग की सामग्री तैयार करते हैं। इन उत्पादों की मांग प्रदेश के साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों में भी बनी हुई है। इस पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग को आगे बढ़ाने में बुदनी के कारीगरों और व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बारे में हमारे सीहोर संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान ने स्थानीय कलाकारों और व्यापारियों से बातचीत की।
1: मेरा नाम सुनीता विश्वकर्मा है। मैं बुदनी के लकड़ी खिलौना उद्योग से जुड़ी महिला कामगार हूँ। सरकार की मदद से अब मैं और मेरा परिवार इन लकड़ी के खिलौनों का व्यवसाय कर रहे हैं। हमारे बनाए आकर्षक खिलौनों की मांग प्रदेश और देश तथा विदेश में खूब हो रही है। अब हम इस बात पर गर्व अनुभव करते हैं कि सरकार के सहयोग से हमारे खिलौना उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद में मान्यता मिली है। हमारे क्षेत्र में जो खिलौना क्लस्टर खोला गया है उससे हमारे बनाए खिलौनों की ब्रांडिंग देश और विदेश में हो रही है।
2: मेरा नाम रमेश विश्वकर्मा है। मैं पीढ़ियों से बुदनी शहर में खिलौने बनाने का कार्य करता चला आ रहा हूँ। ये खिलौने जंगल में उगने वाली दूधी नाम की लकड़ी से बनाए जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर भी एक स्टॉल रेल मंत्रालय द्वारा बुदनी के खिलौनों का लगाया गया है।
0: महिला व्यापारी कंचन बता रही हैं,
3: बुदनी के लकड़ी के खिलौने जो कि आज केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। ये जो खिलौना का व्यवसाय है ये एक नवाबी शासन का इतिहास से जुड़े हुआ है। इसकी शुरुआत बुदनी के कई ऐसे परिवार हैं जिसमें स्वर्गीय श्री लक्ष्मण प्रसाद जी वैद, बालाराम जी, श्री राम गोपाल जी, इनके परिवारों के द्वारा की गई थी। और शुरुआती समय में ये भोरे और लट्टू पारंपरिक खिलौनों से ये शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये एक बड़े हस्तशिल्प उद्योग के रूप में विकसित होता गया। बुदनी के खिलौनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये दूधी की एक लकड़ी होती है, उससे बनाए जाते हैं, जो कि हल्की होती है, सुरक्षित और टिकाऊ होती है। और यही कारण है कि बुदनी के जो खिलौने हैं वो पूरे देश में और विदेश तक अपनी पहचान बना चुके हैं। पुणे, राजस्थान, मद्रास ऐसे कई प्रांतों में ये खिलौने यहाँ के जाते हैं।
0: बुदनी का लकड़ी खिलौना उद्योग न केवल स्थानीय लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन है बल्कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक कारीगरी का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। और अब रुख करते हैं बैतूल जिले का। बैतूल से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित टिगरिया गाँव आज क्राफ्ट विलेज के नाम से अपनी अलग पहचान बना चुका है। इस हस्तशिल्प कला को जीवित रखने और गांव को विशिष्ट पहचान दिलाने में वाघमारी परिवार की अहम भूमिका रही है। ये परिवार पीतल और बेल मेटल से आदिवासी संस्कृति से जुड़ी आकर्षक कलाकृतियों का निर्माण करता है। इनकी बनाई गई हस्तशिल्प कृतियां देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना रही हैं। पारंपरिक भटेवा कला में दक्ष शिल्पकार बलदेव वाघमारे से हमारे संवाददाता मयंक भार्गव ने बातचीत की।
4: बैतूल जिले के 9-10 गाँव में जो भरेवा समुदाय के लोग रहते हैं ये सभी लोग इस काम को करते हैं। जो भरेवा कला जो है बड़े गर्व की बात है कि बैतूल जिले को पहला GI टैग मिला हुआ है और भरेवा कंगन के नाम से एक कलाकृति तैयार किया था जो नेशनल अवार्ड जीत चुका है 2024-25 का। और इस कला को देखने के लिए देश के अलग स्कूल कॉलेज के बच्चे लोग आते हैं। पुणे सिम्बायसिस के बच्चे एक टीम, गुजरात से NIT, लगभग 500 से ऊपर कलाकार बैतूल जिले के अंदर इस काम को

एक समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम, विषय था खिलौना उद्योग और पारंपरिक हस्तशिल्प शिल्पकला। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश, और अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं स्ट्रीट डांसर से। ये गीत गाया है जासमीन संदल्स कैरी संधू ने, जिसे लिखा है प्रिया सरिया ने, और इसमें संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

शुभ मंगल ज्यादा सावधान फिल्म से अगला गीत सुनिए जारा खान अनुराधा पौडवाल की आवाज में वायु मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे हुए बोल हैं और संगीत है तनिष्क बागची और आनंद मिलिंद का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। और अब सुनिए सयोनी फिल्म से ये गीत, गाया है अरिजीत सिंह और ज्योति नूरान ने। इसे लिखा है अलौकिक राही और जुनून बैंड से है ये गाना, और इसमें संगीत दिया है जॉय अंजन जुनून बैंड ने।

0: कैरेक्टर ढीला है।
1: और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए क्रियो फिल्म से इला अरुण रोमी और सृष्टि तावड़े की आवाज में, जिसे लिखा भी है जूनो और सृष्टि तावड़े ने, और इसमें संगीत दिया है भार्ग और रोहित ने।

0: और इस गीत के साथ चित्रपट संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश और अब लेते हैं एक अंतराल।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: Sì, Sena!
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातीले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, कौशल विकास और जन जन संबंधों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिनों के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उन सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। बोर्ड ने बताया कि पोर्टल की सेवा में व्यवधान डालने के लिए 2 मिनट के अंदर लगभग 15 लाख आवेदन भेजे गए। बोर्ड ने कहा कि सिस्टम पर उपलब्ध फाइलों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के 1 लाख से अधिक प्रयास हुए। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और हरिहरन अमसा करुणन तथा MR अर्जुन की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ग्राम सभा। शाम 8 बजे कार्यक्रम समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष किसान कल्याण प्रस्तुत होगा। शाम 8:35 पर और रात 10 बजे फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। आज रात 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम कहकशा प्रस्तुत होगा और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में ख्याल गायन का आनंद लीजिएगा, जिसे पेश करेंगे रामदास मुंगरे और राग होगा गौड़ मल्हार। अब कुछ प्रमुख कार्यक्रम जो आप सुनेंगे कल यानी 3 जून की सभा में। कल सुबह 6:05 पर भक्ति रस से सराबोर करने प्रस्तुत होगा कार्यक्रम वंदना। कल सुबह 6:30 पर श्री रामचरितमानस गान का आनंद लीजिएगा। कल सुबह 6:40 पर चिंतन और कल सुबह 6:45 पर कृषि चर्चा सुनिएगा। कल सुबह 7:20 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। कल सुबह 8:30 पर सुरमई सवेरा फिल्मी संगीत पर विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। सुबह 9:15 पर सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा। सुबह 10 बजे होगा जिले की चिट्ठी, आप सुन सकेंगे इसे आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में। इसके साथ ही सुबह 10:05 पर महिला संसार प्रस्तुत होगा और कल सुबह 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग माला प्रस्तुत होगा। ये सभी कार्यक्रम सुबह 11 बजे तक आप सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में। और अब कुछ प्रमुख कार्यक्रम जो आप सुबह 11 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में सुनेंगे। कल दोपहर 12 बजे और 2:30 पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम में पूरी करेंगे आपके पत्रों द्वारा भेजी गई गीतों की फरमाइश। इसके साथ ही कल सुबह 11 बजे आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम

0: फोन करें गेट सुने और दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक सिस्किया की 8वीं कड़ी प्रस्तुत होगी। कल दोपहर 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुख संगीत और शाम 5:02 पर युवाणी कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। ये सभी कार्यक्रम आप आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति में सुनेंगे। कल शाम 5:33, शाम 6:30 और 8:35 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। कल शाम 6 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रस्तुत होगा और कल शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा कार्यक्रम ग्राम सभा। कल शाम 8 बजे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष मध्यम वर्ग कल्याण प्रस्तुत होगा। कल रात 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। रात 10 बजे नाटक अशोक वन का पेड़ प्रस्तुत होगा जिसके लेखक और प्रस्तुतकर्ता है जगदीश अधिकारी। इसके साथ ही कल रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में आनंद लीजिएगा। रमेश प्रेम द्वारा विचित्र वीणा वादन का राग होगा बिहाग। इसी के साथ आज की सभा के शेष कार्यक्रम और कल की सभा के कार्यक्रमों का विवरण संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 7:10 हुए हैं और अब प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला

0: चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थी युवाओं से की मुलाकात। ओएसएम विवाद में केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला, जांच समिति भी गठित। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 21,485 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी, स्वामित्व योजना और सिली सिलाई यूनिफॉर्म समेत कई बड़े फैसले। और त्रिशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जज गिरबाला सिंह और बेटे समर्थ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में जनजातीय छात्रवृत्ति योजनाओं के लाभार्थी युवाओं से मुलाकात की और उन्हें प्रेरक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और अवसर की। राष्ट्रपति ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ये युवाओं के सपनों को पंख देने का काम करती है।
1: शिक्षा ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। मेरी जीवन यात्रा में भी शिक्षा का ही अहम योगदान है। आपकी शिक्षा और आपका अनुभव उन बच्चों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए जो सीमित संसाधनों के साथ बड़े सपने देख रहे हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी साथ लेकर चलेंगे तो भी सच्चे अर्थों में राष्ट्र का समावेशी विकास संभव है।
0: सीबीएसई के मूल्यांकन विवाद में केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी ओएसएम के ठेके में गड़बड़ी की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसी बीच सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु सिंह का भी तबादला कर दिया गया है। ओएसएम वो व्यवस्था है जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कर शिक्षक कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑनलाइन जाँच करते हैं। इसी सेवा की खरीद में अनियमितता के आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में आम लोगों, किसानों और विद्यार्थियों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए 21,485 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। सबसे अहम फैसला स्वामित्व योजना को लेकर किया गया है। इस फैसले को लेकर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया,
2: जो केंद्र सरकार की स्वामित्व अधिकार की योजना थी, मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें निर्णय लिया है कि हम सारे 48 लाख एक जो लाभान्वित हमारे जो जिनको पट्टे प्राप्त, जो रजिस्ट्रिया प्राप्त होनी है, उनको हम रजिस्टर्ड दस्तावेज देंगे। यह पूरा निःशुल्क रहेगा और हर व्यक्ति को यह मध्य प्रदेश देश के अंदर सबसे पहला राज्य बनेगा जो रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज उपलब्ध करवाएगा।
0: इसके अलावा सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को अब सिली सिलाई तैयार यूनिफॉर्म दी जाएगी। कैबिनेट ने बरगी बांध क्रेन हादसे की न्यायिक जांच, हिंदी फिल्म तन्वी द ग्रेट को टैक्स फ्री करने और नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले सरकारी बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत बसें शुरू करने की तैयारी जोरों पर है, ताकि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों के घर आसानी से पहुंच सके। प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने मशहूर शायर और पद्मश्री प्राप्त डॉ. बशीर बद्र के निधन पर उनके परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से चर्चा कर बशीर बद्र के नाम पर एक साहित्यिक पुरस्कार स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश उर्दू अकादमी 4 जून को भोपाल के रविन्द्र भवन में यादे बशीर बद्र कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें फिल्मकार विशाल भारद्वाज, गायिका रेखा भारद्वाज और शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी समेत कई नामी हस्तियां शिरकत करेंगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR

0: न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की 5 दिन की रिमांड पूरे होने के बाद पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को आज विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजते हुए 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रखने का आदेश दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में मॉनसून की तैयारियों की समीक्षा की। मौसम विभाग ने इस साल मॉनसून के सामान्य से कम यानी करीब 90% रहने और अनीनों का असर पड़ने की आशंका जताई है। श्री चौहान ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि जिन इलाकों में कम बारिश की आशंका है वहां वैकल्पिक फसलों, सूखा सहनशील बीजों और जल प्रबंधन की पूरी तैयारी रखी जाए। भारत की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था में यूपीआई ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मई 2026 में यूपीआई के जरिए 23.2 अरब यानी करीब 2312 करोड़ लेन देन हुए, जिनकी कुल कीमत लगभग 30 लाख करोड़ रुपए रही। इसका मतलब है कि हर रोज औसतन 73 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए हुए। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन मांगे हैं। इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ये सम्मानित पुरस्कार राष्ट्रपति उन बच्चों को देते हैं जिन्होंने वीरता, खेल, कला, विज्ञान, पर्यावरण और सामाजिक सेवा में कोई खास उपलब्धि हासिल की हो। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन सिर्फ awards.gov.in पोर्टल के जरिए ही जमा किए जा सकते हैं। बड़वानी पुलिस जनजातीय छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए रक्षा सखी अभियान चला रही है, जिसके तहत अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में छात्राओं को महिला सुरक्षा कानूनों, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव की जानकारी दी जा रही है। महज 15 साल की उम्र में आईपीएल में धमाल मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी अब एक खास शोध का विषय बनने जा रहे हैं। आईआईएम इंदौर उनकी कम उम्र में मिली सफलता के पीछे के कारणों और उसके प्रभावों पर गहरा अध्ययन करेगा। संस्थान के डायरेक्टर हिमांशु राय के मुताबिक शोध में समझने की कोशिश होगी कि परिवार, कोच और सामाजिक सहयोग किस तरह किसी युवा प्रतिभा को निखारने में मदद करते हैं। 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है और इसकी मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। बैतूल जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर बसे ग्राम टिकरिया को भारत सरकार ने क्राफ्ट विलेज का दर्जा दिया है। इस गांव में वाघमारे परिवार पुरातन भरेवा कला से पीतल और बेल मेटल की अनूठी कलाकृतियां बनाता है, जिसमें मोर, चिमनी, हाथी, हिरण और भगवान की प्रतिमाएं शामिल हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर कलेक्टर ने ग्राम लूनाहेड़ा और बूढ़ा में प्राचीन बावड़ियों का निरीक्षण किया, जिन्हें जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पुनर्जीवित किया गया है। सीहोर जिले के इछावर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 22 वर्षीय बाइक सवार युवक की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार बारात बस ने उसे टक्कर मार दी थी। आगर मालवा कलेक्टर ने जनसुनवाई में प्राप्त हुए 74 आवेदनों में से निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही समाधान किया। छिंदवाड़ा में नगर निगम अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। बैतूल में 6 जून को जिला पंचायत परिसर में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और नागरिकों में फैल रहे भय को देखते हुए नगर पालिका परिषद ने विशेष अभियान चलाया है। झाबुआ कलेक्टर ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों को निर्देश दिए। शहडोल में क्षय रोग नियंत्रण अभियान के तहत इन दिनों गांव-गांव, शहर-शहर टीबी की स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। खंडवा में आज आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके शीघ्र निराकरण के निर्देश भी दिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहन का जय जमुना बहन की राम राम। देखो भैया, रो मौसम तो प्रतिदिन बदल रहा है। कभी तेज धूप निकलत है तो कभी बादल हो जाते हैं और गरज चमक के संगे पानी पड़ जाते हैं। तो भैया, बदलत भय मौसम में हमें अपने सभी बातों को ध्यान रखना पड़ता है, चाहे सेहत हो, चाहे खेती किसानी हो, चाहे घर की दूसरी चीज़ें हों, सब चीज़ों को ध्यान रखें। और भैया देखो, सावधानी अपन को बरतने हैं तो अपन देख रहे हैं कि जा समय थोड़ी बहुत परेशानी इनको दौर चल रहा है, चाहे अपन अपने देश की बात करें, समाज की बात करें, है ना, देश की सुरक्षा, देशवासियों की सुरक्षा, खुशहाली, इन सबन को ध्यान में रखत भाई। अब भाई हाल में अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कछु बातें बताई हैं, थी ये 7 महत्वपूर्ण जो बातें हैं जिनको उन्हें जिक्र करो, इन्हें अगर हम 7 वचन कहें तो कौन अतिशयोक्ति नहीं होगी, है ना भैया बहनों। अपने देश में बढ़त भाई महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़त भाई कीमतन को दिखत भाई हालात कछु थोड़े से परेशानी में नज़र आ रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये बात कही है कि हम कछु 7 प्रमुख बातें हैं, इनको अपने जीवन में अपनाएं, उन पर ध्यान दें और उनको अपनाउत भय चलें तो हम बहुत सारी समस्याएं से बच सकत हैं। अब जैसे कि भैया इन्हें हम विस्तार से देखें तो वो हैं, सबसे पहले तो उन्होंने कही स्वदेशी अपनाओ। अपने जीवन में अपन को बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़त है तो अपन अपने स्वदेशी उत्पादन को प्रयोग करें, या अपने देश में जो उत्पाद बन रहे हैं, जो अपने देश में जिनको निर्माण हो रहा है, उनको अपन ज़्यादा महत्व देवें, उनको उपयोग करें और लोकल, अब जो ये कही जाते ना कि वोकल फॉर लोकल, वो बात को पालन करें और अपने घरेलू उत्पाद से तात्पर्य जो अपने देश में बन रहे हैं, उन उत्पादन को, उन चीज़ों को अपन अपने दैनिक जीवन में अपनावे मिले हैं, चाहे कपड़ा होवे, चाहे भैया जैसे अपन अपने रसोई के सामान होते हैं, चाहे दैनिक जीवन साबुन सरफ की बातें होती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो अपन देखते हैं, जो अपने देश में बन रही हैं, अपन उनको ही उपयोग करें तो वासें अपने देश की मुद्रा अपने देश में ही रहे और आर्थिक रूप से जो संकट उत्पन्न हो रहा है वो संकट से अपन कछु हद तक निजात पा सकत हैं। सोने की खरीदारी में कटौती करें, है ना, जैसे उन्होंने कही देश की जो विदेशी मुद्रा है वाको भंडार मजबूत करवे के लाने कम से कम 1 साल तक अपन को सोनों खरीदे से बचना है। विदेशी यात्राएं से बचाव की बात कही, विदेश घूमे जावे के लाने अपने पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दें, है नहीं, मतलब विदेशी चीज़ें देखने जा रहे अपन, बाकी बजाय अपन अपने देश में एक बढ़िया चीज़ें हैं देखने वाली उन्हें ही देखें, पर्यटन स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, पार्क हैं, अपने जो अपन बच्चन को ले जाते हैं तमाम अच्छे पार्क होते हैं जिनमें चिड़ियाघर होते हैं जिनमें तमाम तरह के जानवर होते हैं, उन सबको दिखाएं, है ना। और भैया देखो, हम और आप तो साधारण ठहले तो विदेश की बात अपन छोड़ दें, लेकिन वैसे भी अपन अगर अपने देश की चीज़ों को अपन ध्यान देते हैं, उनको अपनाउत भय चलाते हैं तो अपने देश की तरक्की होते हमें। और भैया उनने कही ईंधन की बचत, तो भैया देखो ईंधन की बचत तो बहुत ज़रूरी है, पेट्रोल डीजल इनकी खपत को अपन को कम करने हैं, जहाँ तक संभव हो सके अपन अलग अलग वाहनों की बजाय एक सार्वजनिक वाहन को उपयोग करें, चाहे जैसे बस से कहूँ जाने तो आजकल देख रहे हैं अपन अपन ने अपनी कार ली और चल दें घूमे, बाकी बजाय अपन बस से या ट्रेन से जाएं तो बसें अपन बहुत हद तक ईंधन की बचत कर सकते हैं। एक बात उन्होंने कही वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें, वर्क फ्रॉम होम यानी जो अपने जहाँ काम कर रहे हैं कार्य क्षेत्र से, अपन अगर घर से वो काम कर सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, तो अपन घर से वो काम

काम निपटावे के लाने प्रयत्न करें। कैसे अपन अपनी जैसे कंपनी में काम कराते हैं कछुबहन भैया, ऑफिस में काम कराते हैं, वहाँ जावे अभी मैं भी तो पेट्रोल डीजल के वाहनन की सहायता लेने पड़ा थे, तो बा से भी काफ़ी हद तक पेट्रोल डीजल की खपत में अंतर आउत है। तेल की खपत कम करने हैं। और भैया जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अपने किसानन के लाने हैं कि प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। प्राकृतिक खेती यानी रासायनिक उर्वरकन को अपन अपने खेती में कम प्रयोग करें, है ना भैया। और जो बात तो देखो अक्सर आपसे हम करते ही रहते हैं कि भैया हमें अपने जैविक खेती की तरफ ध्यान देने हैं, जैविक विधियों को अपनाने हैं, रासायनिक उर्वरण को खादन को अपन को अब धीरे धीरे करके बंद करने हैं। कैसे कि पहले कहा तो कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा के चक्कर में अच्छे उत्पादन मिले, बढ़िया पैदावार हो, इसके चक्कर में अपने किसान भैया ने खूब अपने जो है रासायनिक उर्वरकन को प्रयोग करो, लेकिन वासे का है अपने जो खेत की मिट्टी रहती बाकी संरचना पे अंतर पड़ो, और भी कई तरह से रासायनिक उर्वरक नुकसानदेह होते हैं। तो भैया अपन को जैविक विधियों को प्रयोग में लाने हैं, जैविक उर्वरकन को प्रयोग करने हैं और रासायनिक को धीरे धीरे छोड़ना है। कैसे एकदम से कोनो चीज़ को अपन बंद नहीं कर सकते, धीरे धीरे करके ही अपन बाकी तरफ बढ़ सकते हैं। तो धीरे धीरे करके प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें, जैविक विधियों के द्वारा खेती करें, ताकि हम अपने खेती से जो उत्पन्न होने वाले चाहे अनाज हो या सब्जियां हो उनकी गुणवत्ता तो बढ़ाएं, संगे संगे अपने पर्यावरण को अपने वातावरण को भी साफ सुथरा और स्वच्छ बनाएं, प्रदूषण मुक्त बनाएं। तो भैया ये 7 बातें हैं जिनको अपन को ध्यान रखने हैं, और मुख्य रूप से अपन ही प्राकृतिक खेती और अपनी जो तेल की जो खपत कम करने हैं इन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना है भैया। जो तो भाई बात अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की 7 बातें के बारे में, और अब बात कर रहे थे अपन जैसे प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधन है पानी है, बिजली है, जंगल के जो खनिज पदार्थ हैं, इन्हन को अपन को दुरुपयोग नहीं करना है, इनको दुरुपयोग रोकना है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी है। कैसे देखो भैया अपन देख रहे हैं इन सबकी एक सीमित, हर चीज़ को एक सीमा होते, एक सीमित भंडार होते। अगर हम अंधाधुंध रूप से वाक उपयोग करते हैं, वाक दोहन करते हैं, तो आगे चल के बाकी लाने हमें समस्या खड़ी हो सकता है। अपने इन प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लाने हमें छोटे छोटे उपाय करना चाहिए, छोटे छोटे लेकिन असरदार जो कदम हमें वो उठाना चाहिए, और इन्हें अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन दैनिक जीवन में शामिल करना चाहिए। जैसे कि पानी की बचत है भैया, अपन देखते हैं बच्चन को एक आदत होते खूब पानी रुड़काउते में, और बड़े देखत रहते हैं उन्हें रोकत नहीं है, और कई बार तो कछु बड़े लोग भी बहुत पानी को उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, उपयोग करते दुरुपयोग करते हैं। तो भैया हमें प्रयत्न करने हैं कि हम अधिक से अधिक पानी बचाएं। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि पानी की कितनी परेशानी है, हर घर में पानी की किल्लत हो रही है। कैसे कि गर्मी के मौसम में पानी को उपयोग ज़्यादा हो जाता है, और धरती में तो अपन को पता है कि अपने जो जल स्रोत हैं वो धीरे धीरे पानी उनमें कम होने लगाते, गर्मियों में सूखन लगाते, तो जो जल स्तर है वो नीचे चले जाते हैं, तो पानी को संकट उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने दैनिक उपयोग में कम से कम पानी की जो है खपत करें, यानी कम पानी में हम काम चलाएं। बहुत से नल देखते हैं अपन के भी सही से बंद ही नहीं हो रहा, उनमें से बहुत पानी फालतू बहत रहते, दुरुपयोग होते हैं, उनको दुरुस्त कराओ बहुत ज़रूरी है। तो पानी की बचत कर लें अपन, ऊर्जा की बचत कर लें, ऊर्जा यानी बिजली। जैसे अपन देखते हैं घर में अपन रह रहे हैं 4 कमरे में, तो 4 कमरे में कौन लाइट चल रही हो, हमें ऐसा नहीं करना, हमें जहाँ हमें उपयोग आवश्यकता है लाइट की वही कमरा में लाइट जलाएं। हम वहाँ से निकल रहे हैं, हम वहाँ को लाइट को खटका बंद कर दें, पंखा को खटका बंद कर दें, ताकि पंखा के लाइट के माध्यम से जो बिजली की बर्बादी होते वैसे हम बहुत हद तक बच सकें। और भैया जो है LED बल्ब को प्रयोग करना चाहिए, ऐसे जहाँ में बिजली की जो खपत है वो कम होते हैं। फिर कछु चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अपन पुनर्चक्रण कर सकते हैं, यानी पुनः उपयोग कर सकते हैं। इनमें आते हैं जैसे प्लास्टिक, कांच और कागज़, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको रिसाइकिल करो जा सकते हैं, पुनर्चक्रण इनको करो जा सकते हैं। तो भैया इनको पुनर्चक्रण के माध्यम से ये पुनः अपने यूज के लाने फिर से तैयार हो जाए, अपने उपयोग के लाने उनको उपयोग करें। और सबसे बड़ी बात पर्यावरण को बचावे के लाने, तो भैया प्लास्टिक की चीज़ों की बजाय जैसे अपन बाज़ार जाते हैं तो प्लास्टिक की थैलियों में जो सामान लाते हैं बाकी बजाय अपन कपड़ा की थैला को उपयोग करें, जो अपने लाने बहुत फ़ायदे की बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है भैया कि पेड़ लगाएं, यानी पौधरोपण करने हमें आगे आगे वाले

इस समय में गर्मी को मौसम आ रहा है, वहाँ में हम गड्ढा खोद के डाल दें और वहाँ में हम पौधे लगा भी कलाने तैयारी करें, ताकि जो आगे पौधा जो है बड़े होकर वृक्ष बने और हमें हमारे पर्यावरण को प्रदूषण से बचाएं और हमें बहुत सारे फायदे दें। भैया देखो अब जय की संग घड़ी इशारा कर रही है कि टाइम होगा वह अपने चौपाल से विदा लेवे को, तो हम आपसे लेते हैं विदा। सभी भैया बहन को जमुना बहन की राम राम, जय जवान जय।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहा है?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। तो पहली वाली बात कहा,
2: परम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: जय जवान जय किसान।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवे बारे सगे भैया बहन खां मंगरू भैया की और
0: जमुना बहन की राम राम, राम।
1: किसान भैया रो देखो अपन देख रहे की इस समय जो है पाई किसान भैया के खेत खाली है
0: और
1: गर्मी को मौसम चल रहा है तो जो हमें कहा है कि भाई बिलात किसान भैया है जिन्हें जो है भाई खेतन में जो है जैसे मेड़बंदी को काम है वो कर लो है खेतन की गहरी जुताई कर ली है और जो है जो गोबर को खाद है डारवे को जैसे काम है ये सब कर रहे हैं लेकिन कछु भैया ऐसे हैं कि जिनने अब अभी जो है चेते नहीं है अभी इनके खेत ऐसे ही डरे हैं और जब आषाढ़ी को समय आएगा तो बाकी दो पहले जुताई कर देंगे बीज डाल देंगे बस करेंगे फिर उसके बाद कहेंगे कि उत्पादन नहीं मिल रहा।
0: बिल्कुल सही कह रहे भैया।
1: तो अब लाने अबे भी देखो समय है।
0: समय है सही है बात है।
1: अब जिन भैया ने जैसे पहले जुताई कर दी
0: हाँ।
1: तो उनके लाने देखो कितने अच्छा मौका मिल गया जहाँ दो तीन बेर पानी पर गो तो वहां में कहा है कि बड़ी जब माटी के डीमा फूट गए वहां में एक बेर उनने और जुताई कर दी तो माटी उनकी बड़ी भुरभुरी हो गई और जिनने खाद डाल दो है तो बिन के लाने भी कितने अच्छा मौका है बढ़िया से खेत में मिल जाएगी खाद तो जो कितने अच्छा काम हो ना तो अब सगे किसान भैया इनके लाने जो काम को करत रहना चाहिए और जैसे ही अपना साड़ी को समय आए बस समय बीज खाद लेके अपन जो है भाई बोनी कर सकत है। देखो अपन तो चिंता कर ही रहे लेकिन भाई सरकार भी जो है भाई किसान भैया की चिंता करत रहे तो समय समय पे बिला तरह की योजना
0: सही कह रहे हो
1: भाई किसान भैया के लाने दिए थे
0: हाँ तमाम योजनाएं चलाओ थे सरकार जैसे की का होते सरकार की मनसा ही जो है कि जो समाज के अलग अलग वर्ग हैं वे सब तरक्की करें और विकास की मुख्य धारा से जुड़ें और किसान भैया खास तौर से जो रीढ़ है अपने देश की अपन कहा था ना अपना देश जो है कृषि प्रधान देश है तो किसान जो है अपने यहाँ अन्नदाता कहो जाते हैं और किसान की स्थिति हमेशा अच्छी रहे जाके लाने सरकार द्वारा हमेशा प्रयास करे जाते हैं और जई कड़ी में आउत हैं बहुत सारी योजनाएं आती हैं लेकिन महत्वाकांक्षी एक योजना है जाको नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।
1: हाँ तो जब देखो किसान भैया की देखो प्रधानमंत्री जी ने चिंता करी है और वहां में जब बताओ है कि जैसे अपन जो है 18 साल की उम्र से लेके और एक निश्चित आयु है उतने तक जो है
0: हाँ, 40 साल तक जो अपन को जमा करना है
1: तो वहां में कहा है कि प्रीमियम की राशि अपन जमा करने हैं वार्षिक रूप से और जब भाई 60 साल की उम्र हो जाएगी तब से अपने के लाने जो है 3,000 रुपये महीना अपने लाने जो है पेंशन के रूप में मिलेगी
0: 36,000 साल के जो मिलेगी
1: 36,000 रुपये साल के। अब समझ लो 60 साल की उम्र में काबू भैया के हाथ पांव नहीं चल रहे हैं काबू के मोड़ा मोड़ी साथ नहीं दे रहे हैं काबू रोग बीमारी हो गई है
0: बिल्कुल भैया
1: तो कहे को मतलब जो है कि जैसे काबू ना कछू ना कछू सहारो जो है एक तरह से अब भैया के लाने जो है मिलेगा
0: बिल्कुल सही बात है भैया। और जहाँ में जो भी प्रावधान है कि जैसे मान लो अपने कौन किसान किसान होनी हो जाते है ना

0: कर रही हैं। हाँ। तो किसान भैया के लाने देखो अपन देख रहे हैं कि बिला तरह की जो है ऐसी योजना के माध्यम से जो है किसान भैया के लाने जो है लाभ लेना चाहिए। धीरे धीरे जी काम को करें और जानकारी के लाने अपन जो है जा सकते हैं और जो हमें पूरा पतो कर सकते हैं कि यहाँ में कौन कौन से कागज लगेंगे, कहाँ आधार है,
1: कैसे
0: जहाँ में
1: पंजीयन कराए
0: हैं। तो जो सबके लाने जो है अपन प्रयास करें वहाँ योजना की शुरुआत कर सकते
1: भैया। और हम तो जो कहते हैं करनी ही चाहिए, कैसे कि अपन को अगर अतिरिक्त रूप से कुछ फायदा चाहिए और शासन की योजना से लाभ चाहिए तो उनके प्रति हमें जागरूक होकर क्रियाशील होकर अपन जाएं और जो अपने कंप्यूटर के जो पोर्टल होते हैं एमपी ऑनलाइन की जो दुकानें हैं उन पर जाके जानकारी लें, वहाँ भी ऐसी योजनाएं के लिए पंजीकरण करो जाते हैं।
0: तो अपन किसान भैया जो कर सकते हैं वो अपने जितने प्रीमियम की राशि है उम्र के हिसाब से अलग अलग, 18 साल की उम्र अलग है, 20 साल बार की अलग, 30 की अलग है, अलग अलग प्रीमियम की राशि है, तो वो अपन जो है जमा करा के जाए योजना को लाभ ले सकते हैं और अपने को बुढ़ापा आसानी से काट सकते हैं।
1: बिल्कुल भैया
0: है कि नहीं है। तो किसान भैया इनके लाने जो बात को बिल्कुल
1: ध्यान रख रहे हैं। और भैया अब हम सोच रहे हैं कि आज जो क्रम है बाकी और बढ़े है ना भैया, तो आज है क्रम किसान बाणी गांव में किसानों के साथ
0: हो।
1: तो जामे आज हम आपको लेके चल रहे हैं ग्राम आमखेड़ा विकासखंड बदरवाद जिला शिवपुरी, जामे प्रस्तुति सहयोगी मोहन सिंह यादव को और जाके प्रस्तुति जो है वो प्रस्तुत करता है डॉक्टर समर्थ अग्रवाल।
0: तो भैया सुना था जो स्थल रिकॉर्डिंग पे आधारित कार्यक्रम।
1: हाँ भैया
0: किसान भैया देखो अपन किसान भैया के नाने आकाशवाणी के माध्यम से बिरात तरह की जानकारी अपन देते हैं और जी में अपन शिक्षा की जानकारी देते हैं, स्वास्थ्य की देते हैं, कृषि की देते हैं और भी अपन खेती से जुड़े भय सहायक धंधे जिनके बारे में अपन किसान भैया के लाने जानकारी देते हैं कि अपन जो है ईखो करें और अपनी आमदनी को बढ़ाएं और जीखो किसान भैया देखो अपना भी रहे हैं और जी से उन्नति कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, बीज खाद को उपयोग कर रहे हैं, आधुनिक खेती कर रहे हैं और अपन जो है किसान भैया के गाँव में जाके वो कौन तरीका से खेती कर रहे हैं, कौन से कृषि यंत्रण को उपयोग कर रहे हैं, तो जे सवाई के बारे में जान के अपन उनसे सीधी बात कर रहे थे, उनके अनुभव लेते हैं और फिर उनके अनुभव के लाने अपन जो है आकाशवाणी के माध्यम से सुनवाओ थे और अप सुनवावे को उद्देश्य जा रहे थे एक गांव के किसान भैया कैसे खेती कर रहे हैं, अच्छी खेती कर रहे हैं, आधुनिक कृषि यंत्रण से उपयोग कर रहे हैं, उनकी पैदावार अच्छी हो रही है, तो जाए सुन के जो है दूसरे गांव के किसान भैया भी खेती करें और वे भी आधुनिक कृषि यंत्रण को उपयोग करें, आधुनिक खेती करें और उत्पादन अच्छा लें, उन्नति करें, तरक्की करें और खेती के संग हैं विभिन्न सहायक धंधे को अपनाएं। और किसान भैया अपन जो है आ गए हैं विकासखंड बदरवास के ग्राम अमखेड़ा में जो जिला शिवपुरी है, अच्छो गाँव पहलाना दिख रहा है खेती की दृष्टि से कैसे कह जो है मैं खेती करने वाले जो किसान भैया हैं बिलात कृषि यंत्रण से जो है आधुनिक कृषि यंत्रण से खेती कर रहे हैं और पैदावार भी बिलात अच्छी ले रहे हैं। जब गांव में गेहूं, चना, धनिया, मसरा और साग भाजी की खेती जो है गर्मियों में करते हैं और जी के संग ये पशुपालक हैं, सहायक धंधे के तौर पर इसे भी इनके लाने बिलात आमदनी होते है। जब मैं अपन देखें पर्यावरण की दृष्टि से जो मैं बिलात कम से कम 100 पेड़ जो मैं बड़े छायादार लगे हैं, फलदार लगे हैं, तो जब गांव जो है हमारे लाने बिलात अच्छा लगो सो अपन जो है अब चला चलत आ गए हैं गांव की चौपाल पे किसान भैया पे बैठे हैं, तो इनसे अपन सबसे पहले करते हैं राम राम। तो किसान भैया देखो भाई बीच में भैया हैं जो किसान भैया, तो अपन जाने थे इनसे भाई खेती किसानी के बारे में, तो भैया सबसे पहले अपना नाम बताओ।
2: करतार सिंह यादव।
0: करतार सिंह जी अपन खेती कराते हैं और अपन खेती कर रहे हैं चना की, तो जैसे अपन ने चना की खेती करी तो वहाँ में जो है अपन ने खेत की तैयारी कैसे करी?
2: खेत की तैयारी जुताई करके और खेत की तैयारी करी जा सोयाबीन काटवे के बाद में बाकी दबाव नहीं होते और फिर जुताई करके और चना बो जाता।
0: तो चना जैसे अपन ने बीज की अगर बात करें अपन तैयारी के बाद में, तो बीज अपन जो है कौन सी किस्म को लाओ अपन ने?
2: 315 चने।
0: तो वहाँ अपन ने जब वो नहीं करा थे तो वहाँ को अपन बीज को बीज उपचार करते हैं?
2: हाँ बीज उपचार करते हैं।
0: बीज उपचार के बाद अपन जो बोनी करते हैं, तो जैसे अपन बात करें एक बीघा में बोनी की, तो वहाँ में एक बीघा में अपन बीज की मात्रा अपन कितनी लेते हैं?
2: 25 किलो
0: है ना। और भाई अपन जैसे बात करें तरीका की बोनी की, तो बोनी अपन छिड़कवा विधि से करते हैं या फिर अपन सीड ड्रिल से करते हैं?
2: सीड ड्रिल से करते हैं।
0: अब आते देखभाल की बात।

0: सुबह में चना के अपन जो देखभाल है वह कैसे कराते हैं?
1: चना की देखभाल जी कराते हैं कि देखो जाते हैं वहाँ में पानी मानी को होगा का 25-30 दिन बाद पानी दो जाता है, इल्ली लगते तो दवाई छिड़की जाते है।
0: और वहाँ में अपन पानी की अगर बात करें तो अपन क्या पानी अपन दे देते हैं?
1: दो पानी दे देते
0: हैं। और जैसे बात आओ तो जैसे बाकी बड़वार होते हैं फूल के समय पे घेटी के समय पे जैसे वहाँ में कोई रोग कीड़ा है तो बाप ने कैसे मालूम चला थे? और अगर अपन बात करें लागत की एक बीघा की तो एक बीघा में चना की लागत जो है कितने का आ जाते हैं?
1: जोताई मुताई लगा के आ जाते 3,000 रुपये।
0: तो भाई किसान भैया कहलाने चना की खेती करना चाहिए?
1: चना की खेती करने चाहिए, ओगरा लगन लगो अब ज्यादा इसलिए कम होने लगे।
0: तो उसके बाद अपन खेत में कोई काम कराते हैं कि नहीं कराते?
1: जुताई करते हैं,
0: गहरी जुताई। तो गहरी जुताई अपन जब कराते हैं तो उसमें जो है ओगरा की जो दवाई है बापन अगर समय डाल दें तो बासे बा नष्ट हो सकते हैं। और दूसरी बात जब ये ओगरा के लाने अपन ओगरा रोधी एक किस्म चना भी आ गया है तो वा को उपयोगी कर सकते हैं?
1: ओगरा निरोधक होता ना चना तो वो आखिरी में उगर जाते हैं 25%।
0: गर्मी में जो काम कर रहे थे खेत खाली हो रहे हैं जैसे अपन गहरी जुताई कर ली और दूसरा भी अपन कोई काम कर सका था गर्मी में खेत में?
1: गर्मी में खेतन में हो सकता ना सब्जी हो सकती है, भिंडी हो सकती है और भी हो सकते हो।
0: तो जो किसान भैया के पास पानी हो तभी हो पाएगी कि
1: तो समूचे गाँव में है ना पानी तो सब जगह खेतन।
0: तो अपन अपने खेतन में सब्जी साग भाजी करते हैं?
1: साग भाजी कम करते हैं मतलब पूरी जमीन में नहीं करे, तार फेंसी नहीं है इसलिए।
0: फिर भी अपने पास जितने अपन कर सकते हैं उतने में साग भाजी कराते हैं?
1: कराते
0: हैं। तो जो किसान भैया कराने अलग से अतिरिक्त आमदनी हो जाता है जो खेती से मिलने हैं बाकी अलावा तो ही अपन रासायनिक खाद को उपयोग करते हैं कि जैविक खाद को उपयोग करते हैं?
1: रासायनिक खाद को उपयोग करते हैं।
0: तो रासायनिक खाद को उपयोग अपन कर चले जा रहे हैं तो अपने इससे पैदावार बढ़ रही है कि घट चली जा रही है?
1: घट रही है।
0: तो जागो का कारण है आपको पता करो आपने क्यों घट रही है?
1: देसी खाद होना चाहिए गोबर को तो बढ़ेगी।
0: तो बागे लाने अपन का जो प्रयास कर रहे हैं कि देसी खाद अपन खेतन में डाल रहे हैं वो पैदावार बढ़ाएं?
1: हाँ कर रहे हैं ना, देसी की तरफ जा रहे हैं ज्यादातर।
0: तो जैसे कहा है कि भाई भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और आगे चल के पैदावार अच्छी हो। तो करतार सिंह जी आपने भाई किसान भैया के लाने मिला तो अच्छी जानकारी दी, के लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भैया देखो अपन आ गए हैं जो भैया के पास तो जाना थे अपन इनको नाम, तो भैया अपना नाम बताओ।
2: भरत सिंह यादव।
0: भरत सिंह जी भाई उम्र कितनी है?
2: 62
0: 62 साल भाई उम्र हुआ ही और अपन जई गांव में रह रहे हैं। तो अपन जो है खेती किसानी काम कर रहे थे।
2: खेती किसानी
0: तो अपने पास अगर खेती किसानी में अपन बात करें तो अपने पास खेती की जमीन कितनी है?
2: जमीन 100 बीघा।
0: 100 बीघा अपने पास जमीन है तो वह सिंचित है के?
2: सिंचित
0: है। तो वहाँ में अपन अगर बात करें खेती तो खेती के जो यंत्र हैं वे अपने पास कौन कौन से हैं?
2: ट्रैक्टर है, पंजा है, सीडल है, टोहड़ी है, बस यही वो नहीं
0: जो अपने पास हैं। तो अपन खेती जैसे अपन कर रहे हैं तो अपन क्या साल से खेती कर रहे हैं?
2: मोटर है बुरन में तो जन्म जिंदगी से बुरे अपने बाप दादा न खड़ी अपन न खड़ी।
0: तो पहले अपन जैसे खेती करते तो पहले कौन तरीका से खेती करते?
2: हर बैलन का तरीका।
0: हर बैलन से
2: ट्रैक्टर को आगे चलो।
0: तो हर बैलन से अपन जब खेती करते तो पहले खेते की जुताई जैसे अपन करनी है तो वहाँ में कितने टाइम लगाते हो?
2: बहुत टाइम लगा।
0: और जैसे अपन बात करें कटाई की वहाँ में भी
2: टाइम लगता कटाई में तो मशीन से कम लग टाइम लगते।
0: और जैसे अपन बात करें पैदावार की तो पैदावार अपन कैसी कम मिलती?
2: पैदावार अब अच्छी मिल रही, पहले नहीं मिलती ऐसी।
0: जैसे अपन हर से करते तो पैदावार नहीं मिलती और अब
2: मिल रही है।
0: तो अब ऐसी का चीज हो गई है जिसके कारण अपन जो खेती में पैदावार बढ़ गई है?
2: पानी हुआ, बोर हो गए, अब मत बोर बंद कर दो भाई की भैया आएगी।
0: और नहीं तो जैसे अपन बेलन की जुताई है तो बेलन की जुताई बंद हो गई ना?
2: तो बेलन जुताई ट्रैक्टर से हो रही जुताई तो
0: हमें अपना समय बच रहा हूँ नहीं बच रहा हूँ
2: समय तो बच रहा
0: है। से आदमी कभी का जुताई कर तुझे बताओ और ट्रैक्टर से कितनी जुताई कर ले?
2: हाँ ट्रैक्टर से ज्यादा जुताई हो जाता, बेलन से कम जुताई होती।
0: तो सुविधा पहला ना भैया,
2: सुविधा तो भैया
0: तो पहले का है कि आदमी के पास जो है साधन कम रहते और खेती में पैदावार भी कम होती तो मन से खेती करा तो अब साधन हुए हैं तो आदमी मन से खेती नहीं कर रहा
2: हूं। नहीं कर रहा
0: हूं। है ना
2: सुजाता मिनी सुजाता लोकवन।
0: अच्छा तो अपन ने कौन सी करी?
2: अपन ने मिनी सुजाता करी।
0: तो अपन ने जैसे घर को बीज है तो बाहर ले जाके निकाल के सीधे अपन ने खेत में डाल दो?
2: हाँ बाकी सफाई करके।
0: सफाई करके अच्छा बाबू अपन बीज को जो अंकुरण परीक्षण होते हैं और बीज उपचार होते हैं वो अपन कराते हैं?
2: कोई नहीं करे,
0: कोई नहीं करे, अपन भी नहीं करें। और जाइए अपन मान के चलो अंकुर बीज को अंकुरण कर लें और बीज की अंकुरण परीक्षण क्षमता जांच लें तो जहाँ में पाओ कुछ पैसा खर्च होगा समय
2: गाँव के जानते नहीं क्या करेंगे फिर भी क्या करें।
0: तो भाई हम बतावे तो आते हैं कि कैसे करने हैं क्या करने हैं, आप तो मानो तो है ना।
2: कब अब आयो
0: रेडियो पे रोज बताते हैं, आप रेडियो सुनो तुम संजा के पेपर पढ़ो वहाँ में सब आते हैं।
2: पेपर आते नहीं रेडियो टीवी पे आते हैं,
0: टीवी पे आते कृषि दर्शन आते भाई आप देखो। तो आ कहा है कि अपन करेंगे तो बात ही कहा है कि अपनी

0: पैदावार बढ़ेगी। तो जैसे अपन ने वो नहीं कर रही, अब एक बीघा में अपन ने जो बोनी करी वहाँ बीज अपन ने कितने किलो?
1: 30 किलो।
0: जैसे बोनी करी के अपन ने वैसे छिटक में बीज
1: सीजल से सीजल
0: डबल पेटी की
1: एक पेटी
0: तो बीज खाद मिला के बहो। अब आगे बाद देखभाल की बात करें तो अपन ने बाकी फिर देखभाल अपन ने कैसे करी बोनी के बाद?
1: देखभाल का 30-30 दिन हो पानी देता वो ये खाद छिड़क भाई कड़ियाँ जितने कड़ियाँ ऐसी कोई दिलचस्पी गाँव में कोई नहीं कर रहा हूँ।
0: तो अपन ने वहाँ में क्या पानी दिया भाई पिसी में?
1: 3।
0: तो जैसे अपन एक बीघा की अगर लागत की बात करें गेहूँ की तो एक बीघा पर लागत कितनी आ गई हुई है?
1: 1500 रुपया।
0: अच्छा ठीक है, 1500 रुपया आपको हुआ। उसके बाद अगर अपन बात करें पैदावार की तो एक बीघा में बाकी पैदावार पहलान कितने मिल?
1: 6-7 क्विंटल।
0: तो कहने का मतलब जहाँ है कि गेहूँ की खेती करो फायदेमंद है?
1: फायदा तो सब में है, मसूर में फायदा
0: तो जाको भूस भी काम में आ जाता है ना, चना
1: तो कर लेते गाँव की तो 1,00,000।
0: तो भैया आपने भाई किसान भैया के लाने बिलात अच्छी जानकारी दी, के लाने बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भैया देखो भाई बीच बैठे जो किसान भैया, तो अपन इनसे जाना थे इनको नाम, तो भैया अपना नाम बताओ।
2: राजेंद्र गिरी गोस्वामी।
0: राजन जी अपन खेती कराते हैं और पशु भी पालते हैं
2: जी।
0: तो अपन जैसे पशु पाल रहे हैं तो खेती के संग पशु पाल वो का जरूरी है?
2: क्योंकि खेत पशुओं से भी आय मिलती है, दूध भी मिलता है उससे, अंडे मिलते हैं उससे, खाद मिलता है जो उसमें खेती में खाद डाला जाता है देसी खाद, उससे फसल अच्छी होती है, इसलिए पशु जरूरी है पालना।
0: और पशुओं से अगर अपन बात करें आमदनी की तो पशुओं से अपने अगर जो आमदनी भी होते हैं?
2: हाँ होती है ना, दूध की आमदनी होती है और खाद की आमदनी होती है और उससे गौमूत्र से कई मतलब दवाइयाँ ही बनती हैं, दवाइयों के काम में आता है उसके गौमूत्र।
0: तो अपन जैसे पशु पाले हैं तो अपन ने जो पशु पाले गाँव उनकी रहवे की व्यवस्था कैसी का कर रखी है?
2: गौशालाएं में उनको मतलब बांधने की व्यवस्था है, उनको चारा डालने की व्यवस्था है उसको।
0: तो जैसे अपन ने उनकी सार बना रखी है तो उसमें अपन उनकी साफ सफाई की कैसी अपन ने काम की व्यवस्था कर रखी है?
2: उसमें मतलब बढ़िया उसमें औधी बनाई जाती है, उसकी सफाई की जाती है, उसमें पानी की व्यवस्था की जाती है, उसको मतलब पानी से साफ करके उसको मतलब चारा पाने के लिए औधी बना के मतलब।
0: अच्छा जैसे अपने पास दुधारू पशु हैं वे कितने हैं अपने पास?
2: अपने पास इस समय मतलब 10 हैं।
0: तो उनके अपन जैसे कछु में दुधारू पशु भी होंगे तो दुधारू पशु में दूध बढ़ावे के लाने अपन उन्हें कौन कौन सी चीज़ें खवाते हैं?
2: दूध बढ़ावे के लाने उसको खली देते हैं और बरसीन जो चारा होता है वो खिलाते हैं, भूसा के संग मुसानी बना के पशु औषधालय से मतलब पौष्टिक आहार भी मिलता है वो खिलाते हैं।
0: तो जैसे गाय का दूध की पैदावार पर ही बढ़ जाते हैं
2: जी।
0: अब जैसे अपन बात करें पशुपन के, जैसे अपन झुंड में रखा थे पशुपन के लाने, अब अगर बीमार पड़ जाए तो अपने लाने कैसे पता पड़ा थे अगर पशु बीमार है?
2: तो उसके वो लक्षण अलग दिखते हैं, जैसे मान लो उसको या तो जैसे कप रहा है या मतलब उसको बुखार है, उसको चरता नहीं, उसको दूध कम निकलने लगता है, ऐसे मतलब जो लक्षणों से उसकी जानकारी मिलती है।
0: तो वो कहलाना फिर अपन वो झुंड से अलग कर देते हैं कि उनके संग ही रखा थे?
2: नहीं उनको अलग करते हैं, अलग करने के बाद में उसको मतलब डॉक्टर बुलाते हैं, डॉक्टर की सलाह से ही उनका मतलब इलाज करवाते हैं।
0: और जैसे उनके अपन देखते हैं कि बरसात के पहले टीकाकरण होते हैं, सर्दियों के पहले टीकाकरण होते हैं पशुओं में कछु बीमारी के, तो वह टीकाकरण भी अपन ने कहूँ करवाए?
2: नहीं टीकाकरण होता है बिल्कुल, उसमें जुलाई में टीकाकरण होता है, एक वो घोटू रोग चलता है उसका टीका लगवाया जाता है, एक बुखार चलता है उसका टीका लगवाया जाता है, ऐसे मतलब सब मतलब चार साल में कम से कम 3 टीके मतलब लगवाए जाते हैं।
0: तो दूध जैसे उत्पादन होते हैं उसको उपयोग अपन कैसे कराते हैं, उसको बेचते हैं कि घर में ही उपयोग कराते हैं?
2: उसको जैसे ज़्यादा अगर दूध की आमदनी है तो उसको अपन बेचते भी हैं, और कम आमदनी है तो उसको घर में बहाकर उसका घी बनाते हैं और चाय के उपयोग में लेते हैं उस दूध को।
0: तो कहने का मतलब जो है कि अपने जो है शुद्ध दूध अपने घर से अपने मिल जाते हैं?
2: जी शुद्ध दूध मिलता है बिल्कुल।
0: और जैसे अपन बात कर रहे हो कि गोबर की, तो गोबर को उपयोग अपन कैसे काय में खेती में करते हैं कि अपन वैसे ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं?
2: ईंधन के रूप में भी करते हैं, उनके कंडे बनाते हैं गोबर के तो ईंधन के रूप में आता है, और जो उसकी खाद बनती है वो उसको खेती उसमें भूमि में डालते हैं तो वो खेती काम में आती है।
0: तो खेती में जैसे अपन गोबर की खाद को उपयोग कर रहे हैं तो बागों का जो फायदा है?
2: नहीं फायदा है उसमें मतलब फसल अच्छी होती है।
0: और जैसे अपन जो रासायनिक खाद डाल रहे हैं और बार डाल रहे हैं फसल तो जैसे भी हो रही है?
2: नहीं तो वो ये रासायनिक खाद जो है वो नुकसानदायक है भूमि के लिए, और देसी खाद है वो मतलब लाभदायक है।
0: तो जैसे कहा है कि पैदावार जैव मतलब गोबर की खाद से अच्छी होते है कि रासायनिक खाद से अच्छी होती है?
2: नहीं गोबर की खाद से अच्छी होती है।
0: तो जामे अपने लाने जो है पैदावार कौन सी से अच्छी मिलत है?
2: गोबर की खाद से अच्छी होती है। एक बार गोबर का खाद डालने से कम से कम 3-4 वर्ष तक मतलब अच्छी

0: की फसल निकलती है और रासायनिक खाद हर साल डालना पड़ता है जब जाके वो फसल सही उपज देती है।
1: तो अपन जैसे खेती कर रहे हैं तो खेती के संग पशु पाल वो जरूरी है?
0: जरूरी है।
1: और पशु अपने पास पले हैं और बाकी लाना खेती वो जरूरी है?
0: खेती भी जरूरी है।
1: तो दोनों अपने लाना करेंगे तो उसे कहा है कि अपनी आमदनी बढ़ेगी?
0: जी बिल्कुल बढ़ेगी।
1: तो किसान भैया के लाना खेती के संग पशु पालना चाहिए?
0: जरूर पालना चाहिए।
1: तो किसान भैया देखो आपने भैया के लाना बिलात अच्छी जानकारी दी, के लाने बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और के बाद अपने पास जो किसान भैया हैं तो अपन इनसे जाना थे, इनको नाम तो भैया सबसे पहले अपन नाम बताओ।
2: रवि यादव।
1: रवि जी अपन खेती करते हैं
2: जी।
1: तो अपन ने जो है अब जावे रखा कौन कौन सी खेती करी?
2: जावे अपन ने गेहूं करे, धनिया करी, चना करा, मसूर।
1: तो जैसे अपन धनिया की अगर बात करें तो धनिया में जो है अपन ने खेत की तैयारी कैसे करी और जाकि बोनी कैसे करी और कब कब करी, ये तरह जानकारी भाई किसान भैया इनके लाने बताओ।
2: ने जैसे ही सोयाबीन की फसल कटी बाके बाद खेत तैयार करो, फिर अपन ने पानी दाओ, थवानी करी, बाके बाद फिर दोबारा अपन ने खेत तैयार करो, उसके बाद जब जब चना की बोनी कराते हैं अपन गेहूँ की, उससे थोड़ी 20-25 दिन बाद इसकी धनिया की बोनी करती हैं।
1: तैयार के बाद में अपन बात करते हैं धनिया के बीज की। तो धनिया को बीज अपन जो है कहाँ से लाए और जाको अपन ने बीज को उपचार करो कि अपन ने कौन तरीका से फिर बोनी करी?
2: नहीं, धनिया के बीज को उपचार तो नहीं करो, धनिया को बीज अपन गुना से लाए और जाके बोनी का बीज लगभग 7 से 10 किलो के बीच में पर भी हम बोनी करते हैं। हाँ,
1: तो जाके अपन जो बोनी कराते हैं बोनी को जो तरीका है वो तरीका कौन तरीका से अपन करते
2: हैं? तरीका की बोनी जो ही अपन सीडल से कराते हैं पर उसमें थोड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब मिट्टी एकदम बारीक होना चाहिए तो उसमें ज्यादा अच्छी।
1: हाँ, जाके बाद जैसे अपन बोनी कर दी, अब बोनी के बाद उनकी देखभाल की बात आउट है तो देखभाल फिर वहां अपन कौन तरीका से कैसे कराते हैं?
2: हाँ, तो देखभाल का जो थोड़ा उगने में टाइम लगता है धनिया में 20 से 25 दिन के बाद खेत में दिखती है, तो उसके बाद फिर जब 40-45 दिन की हो जाती है तो जब पानी देते हैं तो उसमें सल्फर पाउडर डालना पड़ता है, उसके बाद फिर इसको देखना पड़ता है माहू वगैरह कुछ रोग तो नहीं लग रहा और पानी दे देती है।
1: पैदावार पर जो है आ जाते हैं वो जाके अपन कटाई कर रहे थे।
2: हाँ, तो जाके पैदावार वही लगभग 90 दिन के बाद ही आती है,
1: मतलब 3 महीना के बाद।
2: हाँ,
1: और जैसे अपन बात करें लागत की तो 1 बीघा में जाके लगभग लागत अपनी कितने का जाते हैं?
2: धनिया में एक विशेष ज्यादा लागत नहीं आती, कम ही लागत आती है।
1: फिर भी अगर अपन माने तो
2: क्या सल्फर दवाई लेनी पड़ती है और फिर अगर माहू वगैरह लगती है तो वो दवाई डालनी पड़ती है और ज्यादा कोई खर्चा है नहीं इसका।
1: जुताई से लेकर और अपन कटाई तक पूरा खर्चा अगर जोड़े अपन 1 बीघा को तो लगभग कितने हो जाए अंदाज
2: इसका? वो तो फिर लगभग लगाओ आप कम से कम मतलब 2-3 हजार के लगभग तो यार
1: 3-1 हजार में। और अपन बात करें 1 बीघा की पैदावार की,
2: तो पैदावार तो 1 बीघा में 4 कुंटल 5 कुंटल और 6 तक निकल जाते हैं।
1: अपनी अब कटाई हुई धनिया?
2: हाँ, धनिया की कटाई।
1: तो कितने के एवरेज रहो?
2: अपना एवरेज वही लगभग 5 के लगभग रहा,
1: 5 कुंटल बीघा है ना। तो अगर अपन बात करें जाके भाव की तो भाव अपन ने कदे मिलवेगी?
2: भाव तो अभी इस बार तो अभी डाउन है, तो गुना मंडी का रेट मालूम किया था तो भाव अभी 4 हजार के लगभग जा रही है, कम है, लेकिन हर बार 6 हजार से स्टार्ट होती थी।
1: 4 हजार है तो 24 हजार रुपया मतलब जो है 1 बीघा में पहलाने मिलने और वहाँ में 4 हजार अपन लागत घटा दो तो 20 हजार रुपये बीघा का फायदा है।
2: हाँ, फायदा अगर भाव मिल जाए 6 हजार का तो।
1: और अपनी किसान मीन के लाने अपन अच्छे धनिया की अगर पैदावार लेने हैं तो उनके लाने आपका क्या हो चाहोगे?
2: उनके लाने यही कहना चाहेंगे धनिया का जो बीज अच्छा हो और उसकी जुताई बिल्कुल मतलब बड़े डीमा नहीं होना चाहिए खेत में, बिल्कुल पतली जुताई हो बारीक और खेत में पानी दे के अच्छे से करें तो धनिया की अच्छी उपज किसान ले सकता है और अच्छा फायदा ले सकता है, चना मसूर से अच्छा फायदा धनिया मिल सकता है।
1: तो किसान भैया ने कहा चना वो धनिया की खेती करना चाहिए?
2: बिल्कुल करनी चाहिए।
1: तो आपने जो है किसान भैया का अच्छी जानकारी दी। और भैया देखो सब बात समझ गई है कि अपने अगर धनिया करने हैं तो जो तरीका से करेंगे तो अपने अच्छी पैदावार मिलेगी। रवि जी आपने अपने किसान भैया ने कहा बिलात अच्छी जानकारी दी, ई कहलाने आपको बहुत बहुत
2: राम राम।
1: और किसान भैया देखो अब अपाई जो है आमखेड़ा गांव से हो रही चलवे की बेरा, तो सारे किसान भैया से कहते हैं राम राम,
3: राम राम, राम, राम।
4: हाँ, तो भैया अपन सुन रहे थे जो क्रम किसान बाणी गांव में किसानों के साथ के अंतर्गत स्थल रिकॉर्डिंग पे आधारित कार्यक्रम और जामे ग्राम है तो आमखेड़ा विकासखंड बतरवा जिला शिवपुरी, प्रस्तुति सहयोग मोहन सिंह यादव और प्रस्तुति डॉक्टर समर्थ अग्रवाल की है।
1: और भैया देखो अपन ने जब सब सुन लिया के बाद अपन महीन के ऐलान बताओ चाह रहे कि देखो अपन खेती किसानी कर रहे थे
3: और खेती किसानी में जा समय से अच्छो समय पूरे साल भर कबू नहीं आते।
4: बिल्कुल,
3: एक तो खेत खाली रहते हैं है ना, वो में अपन कोई भी काम जो हो बड़े आसानी से कर सकते हैं और जाके जो अपन जो काम कर लेंगे तो बात से कहा है कि अपन जो भूमि की उर्वरा शक्ति है बस साल भर तक जो है बनी रह सकत है।
4: बिल्कुल,
3: जैसे मेड़बंदी कर ली तो बात से कहोगे खेत को पानी खेत में रहेगो,
4: बिल्कुल
3: तो बात से जो है भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, और नहीं तो कहा है कि पूरा पानी इसके संग माटी बाहर निकल के आ जाएगी तो बात से उर्वरा शक्ति जो है कम हो जाएगी,
4: पोषक तत्व भी बह के बाहर चले जाते हैं
3: ना, तो जो काम को करने हैं। दूसरी बात जो है गोबर की खाद अपन जा समय में जो है डाल सकते हैं, वैसे भी कह रहे हैं कि जैविक खाद उर्वरकन को उपयोग जो है अपने लाने करना चाहिए है ना, जहाँ मैं केंचुआ की खाद है वर्मी कम है ना, और जो गोबर की खाद है और भी जैसे जो भी खाद अपने लाने जो मिलत है उसके लाने अपन सब खेत में अगर इस समय में उपयोग करें तो बात से कहा है कि अपने लाने जो है अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति जो है बनी रहेगी और वहां से पैदावार अपनी अच्छी रहेगी और वहां में पैसा भी बचेगा।
4: बिल्कुल सही कह रहे भैया,
3: है कि नहीं, और पैसा बचेगा तो फिर आगे दूसरे काम में आ जाओ अपने में।
4: हाँ।
3: और जहां में तो कहा है कि रासायनिक खाद उर्वरक डाले चले जा रहे हैं, उर्वरा शक्ति कम हो रही, लागत बढ़ रही है और पैसा की नुकसान यही है और पैदावार वहीं की वहीं है, तो जहां में कहा है कि पैदावार बढ़ेगी तो पहलाना है जो काम को बिल्कुल करत रहना चाहिए। जैसे हमें गोबर की खाद डाल दो बड़ी एक दो बार जोताई कर दो तो जैसे मैं लोगों तीन साल नो अपन है जो है कोई भी खाद डालने की जरूरत नहीं है और पैदावार अपन अब जो रासायनिक खाद से ले रहे हैं वैसे डेढ़ गुना तक की जो है पहलाने मिलेगी और जब स्वास्थ्य के लाने लाभदायक है, जी को भाव भी पहलाने अच्छो मिला थे
4: बिल्कुल,
3: और जहाँ लागत भी अपनी जगह कम रहे थे
4: और पर्यावरण भी शुद्ध रहे थे,
3: पर्यावरण भी शुद्ध रहे थे, तो कितनी तरह की बातें इसमें शामिल हो गई है ना, तो किसान भैया के लाने चाहिए कि अपन जो है जो काम को जरूर कर
4: बिल्कुल
3: है ना। और अपन देखो भैया के लाने बताते हैं कल के मौसम की जानकारी है ना, तो कल अपने शिवपुरी जिले को न्यूनतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता रहेगी 50% और हवा की गति रहेगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अपने लाने जो भी है कि अपन जो मौसम की जानकारी ये किसान भैया के लान जी से बताते हैं कि अपन जैसे खेती किसानी में कोई काम करने हैं तो आप मौसम में देख के अपन करेंगे
4: बिल्कुल,
3: तो अपन है वो मुझे कहा है कि अपने लाने फायदा होगा, तो जो सभी बातों को अपन ध्यान में रख के करेंगे तो किसान भैया पहले आने बिलात फायदा
4: बिल्कुल भैया। और अब जो भी ध्यान देने की घड़ी का कह रही है
3: देखो चल भी की बेरा
4: बिल्कुल भैया,
3: तो चल भी से पहले अपाई मंगरू भैया और
4: जमुना बहन की राम राम
3: जय जवान जय किसान।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
6: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि
1: सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान।
0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष किसान कल्याण।
1: इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट एम्पावरिंग फार्मर्स थ्रू वेलफेयर एंड फार्मर सेंट्रिक पॉलिसीज। Participants are Shekhar Iyer, political analyst, and S.P. Singh, senior journalist. The moderator is Sonu Sood.
3: In the last 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has continually stressed on farmers' welfare as one of the topmost priorities of the government. Agricultural production and agricultural exports have gone up steadily, and we have become a leading producer of food grains, millets, milk, coconut, spices, fruits, vegetables in the world. While ensuring food security for 140 crore Indians, the strong agricultural growth has made us an integral part of the global food value chain. In the last 12 years, the government has brought in path-breaking, targeted reforms for every stage of the agricultural cycle, optimizing productivity and ensuring transparent delivery of the benefits of government schemes through use of latest technology and digitization. To discuss the holistic government initiatives to maximize farmer welfare over the last 12 years and how it has given stability and momentum to our agriculture sector, we are joined today by two special guests, Mr. S.P. Singh and Mr. Shekhar Iyer. Mr. Singh, Mr. Iyer, a warm welcome to both of you at this special Akashwani series on completion of 12 years of NDA government.
4: Namaskar, thank you.
3: So, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का हमने एक तेजी देखी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिस तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, ना सिर्फ फूड ग्रेन्स में, हॉर्टिकल्चर में, बाकी जो कृषि के एलाइड सेक्टर्स हैं, किस तरह से आप आंकते हैं सरकार का जो ये 12 वर्षों में अप्रोच रहा है कृषि क्षेत्र की तरफ, उसमें कौन सा ऐसा प्रमुख केंद्र बिंदु है जिससे आपको लगता है कि ये संभव हो पाया है?
4: देखिए, इस सरकार की जो अगर सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर अगर हम देखें तो खेती किसानी के मामले में और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने की उन्नत दिशा में ले जाने में या किसानों की दशा और दिशा को सुधारने में अगर किसी ने अहम रोल अदा किया है तो इस सरकार के इस 12 साल को एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जा सकता है, एक अच्छा फेज कहा जा सकता है। सबसे पहला काम इस सरकार का अगर देखें तो सुधार के तौर पर, कृषि सुधार की दिशा में कृषि मंत्रालय का नाम पहले बदला गया। इसका नाम कृषि मंत्रालय था, इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया गया। इसका पर्पज सिर्फ यह था कि किसानों, कृषि के साथ जो किसान से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, खेती और किसानी। दूसरा, किसान कृषि का की परिभाषा को सरकार ने बदला, वो उसके तरीके पहले था खेती और बाड़ी, लेकिन खेती के साथ देखते देखते बाड़ी कहीं गायब हो गई, विलुप्त सी हो गई। तो इस सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उन्होंने बाड़ी को आगे बढ़ाया, यानी खेती की परिभाषा को, कृषि की परिभाषा को बदला और उसके दायरे को बढ़ाकर उसमें उन सेक्टर्स को भी डाला जो चूक हो रही थी या विलुप्त हो रहे थे, जैसे बागवानी का, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, प्लस इसके अलावा डेयरी, पशुपालन और बी कीपिंग, मतलब खेती किसानी से जुड़े हुए जो उद्यम थे, सह उद्यम जिन्हें था, जो किसानों की जो आमदनी बढ़ाने की बात होती है, प्रधानमंत्री बार बार कहा करते हैं कि दोगुना करने की बात कही थी, मैं बार बार कहता हूं कि खेती के साथ अगर बाड़ी को जोड़ दिया जाए तो दोगुना नहीं, कई गुना की वृद्धि आमदनी बढ़ाई जा सकती है। और सरकार का पूरा प्रयास था कि हम कैसे खेती के साथ बाड़ी को आगे बढ़ाएं, और बाड़ी के आगे बढ़ाने का यह नतीजा है कि आज हम दुनिया में खेती के साथ साथ हार्टिकल्चर में, फिशरी में, आज हम हार्टिकल्चर में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कई ऐसे फ्रूट्स हैं, कई ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें हम दुनिया में नंबर 1 उत्पादन करने वाले कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से हम चावल, चीनी, गेहूं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो चुके हैं। हम फिशरी के मामले में दुनिया के चीन के बाद दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर, जबकि हमारे यहाँ अभी जो एक्सप्लोरेशन होना चाहिए फिशरी का वो बहुत कम है। यानी इस सरकार का जो पूरा फोकस था खेती किसानी में लगे हुए किसानों के साथ, खेती तो वो करता था जिसके पास खेत होता था, लेकिन वो खेती में जो लोग लगे हुए थे जिनके पास जमीन नहीं थी, भूमिहीन किसान, वंचित वर्ग, गरीब वर्ग, जिसका कोई पूछने वाला नहीं था कि उन्हें क्या मजदूरी मिल रही है, वो कैसे उनका खर्च चल रहा है, कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं, इस सरकार ने सबसे बड़ा फोकस उनके साथ किया जो बाड़ी को जोड़ा, जिसमें जमीन की जरूरत नहीं होती है। दो पशु रख लीजिए, चार पशु रख लेता है गांव का भूमिहीन किसान, उससे उसका काम चल जाता है, उससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और वो अपने किसान के खेत पर खेती करता है, उससे पैसे मिल जाते हैं और अपने पशुपालन है, भेड़ पालन है, मतलब ढेर सारी से पशुपालन से भी पैसे मिलते हैं।

0: सेक्टर खोल दे, बी कीपिंग है जिसमें कुछ नहीं लगता है, ऐसे ही फिशरी है। फिशरी में गांव के जितने भी तालाब थे, सोचिए मनरेगा के तहत इस सरकार ने कई लाख जीर्णोद्धार कराया तालाबों का, पुराने तालाबों का, और नए तालाब को तैयार करवाया। उसमें जब पानी भरा तो वो उन लोगों को दिया गया जिनके पास, जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास खेती नहीं थी, ऐसे, और जो लोग जिनको पानी से बहुत पुराना नाता था, ऐसे मछुआरों को जो ये काम दिया गया, तो वहां पे मछली का उत्पादन होने लगा, ऐसे ही डेयरी का उत्पादन होने लगा। जब डेयरी का उत्पादन हुआ तो दूध कहाँ बेचेगा वो, एक बड़ी समस्या का पैदा होने से पहले ही सरकार ने सोच लिया था कि उनके लिए क्या करना है। तो उसने कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाया और एक नया कोऑपरेटिव मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय खड़ा कर दिया। और उसकी चेन इतनी है कि गांव का हमें लगता नहीं कि कोई किसान बचा होगा या कोई गांव बचा होगा जिसमें पैक्स ना हो, जिसमें सहकारिता का आंदोलन न पहुंच गया हो और किसान उससे जुड़े ना हो। जी
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, मिस्टर सिंह हैज यू नो आउटलाइंड सो ब्यूटीफुली दैट व्हाट हैज बीन द बेसिक चेंज इन द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर। वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू द स्टेबिलिटी एंड द मोमेंटम दैट वी हैव सीन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इवन इन द डिफिकल्ट इयर्स ऑफ कोविड द एग्रीकल्चर सेक्टर केप्ट ग्रोइंग। हाउ डू यू सी द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू हैव बीन द यू नो मेजर areas where the government you feel has you know hit the bullseye and which is why we are seeing this buoyancy in our agriculture sector?
2: You know, for over a decade, you know, government of India under Prime Minister Modi ji's direction, you know, has placed agriculture at the heart of a vision of a plan of Viksit Bharat. So when we are talking of Viksit Bharat, agriculture is at the core of it, and that is why over the last 10 years, you have seen several schemes that have been launched, several projects. They are so interconnected, which ensures there is latest research also plays a part, technology plays a part, and farmers are empowered to ensure productivity and also their livelihoods become sustainable.
1: Yes.
2: And all the time, the goal has been to double the income of farmers. So whatever ideas you have seen in the last 10 years has been directed at that. And as recently, just a few days ago, we saw the Prime Minister giving a clarion call that India is, if India's economy is going to reach the third largest economy, that India should be annadata for the entire world. See, that is a kind of concept, that is a kind of imaginative vision with which this government is approaching agriculture. Yes, our farmers have been handheld, उनको मदद किया गया है, उनको हाथ पकड़ के खड़े होने के लिए जो भी साधन की जरूरत है वो सारी चीजें भी देते हुए भविष्य को भारत कृषि क्षेत्र में हाउ इट विल गो अहेड एंड हाउ इट विल बिकम द प्रोवाइडर फॉर द एंटायर वर्ल्ड, दैट इज बिहाइंड इट। सो इन दिस ड्रीम, यू नो, टू सी दैट द रूरल इंडिया ट्रांसफॉर्म्स, यू हैव सीन दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन इनटू अकाउंट ऑल द न्यू प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग, like climate change, then ensuring market access, the challenges in market access, the setting up of warehouses, setting up of cold storages, and also running green trains. You know, produce from one region is immediately transported to the large market. So today, if you are seeing Karnataka tomatoes being available in Delhi, Nasik onions are moving to Bombay and to South, that this whole thing, that entire India being one market, so that our farmers get a better price, has been is just one indication how things are moving. Apart from that, you have also seen there are several other things which this government has done, which is, you know, looking at direct income support. For instance, the PM Kisan, then there is a Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, you know, to provide a safety net for the crop loss against natural disasters. Because somewhere or other you have a cyclone or a flood or, you know, something or the other happens for which our farmer is not prepared. Then credit access, the Kisan credit card, you know, that is also a big thing to provide short-term and long-term credit. Apart from that, you have also seen in this budget, initiative has been where, you know, like a PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, so that, you know, it focuses on low productivity districts. Focus on that. Then also, the overall thing is, you know, mission for Atmanirbharta in pulses, which is the new area, the thrust area, to see that our dependence on import of pulses, that is dal, vagara, vagara, we don't have to depend. And lastly, I must add, the Prime Minister has also brought focus to natural farming. So that the future is natural farming. We can have chemical-free agriculture. And towards that goal, you are seeing a lot of steps being taken of late.
1: Yes. मिस्टर सिंह, जैसा कि मिस्टर अय्यर ने कहा कि बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, अलग अलग जो स्टेज होती है एक एग्रीकल्चरल साइकिल की, अगर हम पहली जो स्टेज है इनपुट्स की उसकी बात करें, तो उसमें क्वालिटी इनपुट्स अफोर्डेबल रेट्स पर मुहैया कराना, इस पर जो प्रमुख कार्य किया गया है उसको अगर आप सटीक रूप में हमें बता सके।
0: खेती में इनपुट की लागत को घटाना और उसके उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि किसानों को कैसे फायदा मिल सकता है। तभी फायदा होगा जब इनपुट कास्ट घटेगी और उनके उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, यानी उचित मूल्य या लाभकारी मूल्य मिलेगा। उसके लिए सबसे पर दो हिस्सों में बांट के देखा जाए तो खेती के लिए जरूरी होती है मिट्टी, खाद, पानी, बीज और किसान, लेबर ये और पैसा। तो इन सब चीजों का कैसे किया, मिट्टी की सबसे पहले सेहत जांची गई, सॉयल हेल्थ कार्ड के नाम पर देश के सारे किसानों के खेतों को जांचा गया, परखा गया कि उनके खेत में किस तत्व की कमी है, जो कम है वही चीज डाली जाए, क्योंकि अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं था। तो सबसे पहले मिट्टी की जांच कराई गई,
1: 25 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ
0: लगभग सभी किसानों के करा दिया गया। उसका मकसद यह था कि हर 3 साल पर यह कराया जाता है ताकि इससे पता चल सके कि मिट्टी में कौन सी चीज कम है, कौन सी ज्यादा है, उसी हिसाब की खाद डाली जाए। दूसरा काम किया खाद का, फर्टिलाइजर का। हमारे यहाँ याद होगा आपको कि 2014 से पहले फर्टिलाइजर को लेकर हर सीजन में हाय तौबा मचती थी, लेकिन 14 के बाद ये स्थिति नहीं रही। तो आखिर कहाँ से खाद की उपलब्धता कहाँ से आ गई, ये था कि जो हमारे यहाँ लीकेज हुआ करता था उसे सरकार ने रोका। नीम कोटेड यूरिया, यूरिया का उपयोग किसी और इंडस्ट्रियल उपयोग में कर लिया जाता था रॉ मटेरियल की तरह से, इसको रोकने के लिए उसमें नीम का तेल या नीम की खाद को मिला दिया गया, जिससे वो नीम लेपित यूरिया जब दी गई किसानों को तो वो किसी और उपयोग की नहीं, सिर्फ खेतों के ही उपयोग की थी। उससे 10 से 20 हजार करोड़ रुपया सरकार का सब्सिडी का सीधे सीधे बचा। तीसरी जरूरत थी इनपुट था पानी, सिंचाई। सिंचाई के हिसाब से देखें तो पानी की हमारे यहाँ मैक्सिमम पानी जो नीचे जमीन से निकाला जाता है, पंप होता है या नहरों से जाता है, वो सिंचाई के काम में आता है। लेकिन पानी की जितनी जरूरत है और जितनी खेती है उसमें बहुत डिफरेंस था, बहुत मुश्किल थी। और हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी थी सिंचाई की वो ठीक नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थी। तो इसके लिए सबसे पहले सूक्ष्म करके जो माइक्रो इरिगेशन को सरकार ने हैवी सब्सिडी के आधार पर हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि इससे 30 से 70% तक पानी बचता है। जो फ्लडिंग के तौर पर हमारे यहाँ सिंचाई होती थी, फ्लडिंग सिस्टम से हट के वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, ये सिस्टम नहीं, कम से कम पानी, यानी बूंद से बूंद पानी या थोड़ा थोड़ा पानी भी चाहिए, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री हर भाषण में शुरुआती दौर में इस पर जोर दिया करते थे कि गन्ने की खेती भी इससे हो सकती है। चौथा था बीज, बेहतर सीड। अगर आप, बड़ी सिंपल सी कहावत है कि बोए बीज बबूल का, आम कहां से होए, तो जब आप बेहतर सीड अगर उपयोग नहीं, बीज नहीं उपयोग करते हैं, तो उससे बेहतर उत्पादकता की उम्मीद, यील्ड अच्छी नहीं होगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेहतर बीजों का उपयोग का, हमारे साइंटिस्ट, इतना बड़ा ICR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास है, हमारे हर साल सैकड़ों बीज हर तरह के तैयार हो जाते हैं, आविष्कृत होते हैं, लेकिन वो खेतों के, किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पाते थे। उसको कैसे पहुंचाया जाए, इस सिस्टम को ठीक किया। और बीज पहुंचाने के लिए, और हमारे यहाँ बीज की जरूरत थी, कि अभी अय्यर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जलवायु का जो विपरीत स्थितियां पैदा हो रही हैं और रोग, तो डिजीज से बचने के लिए, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ढेर सारे रोग फैलते हैं, ऐसे रोगों से प्रतिरोधी क्षमता वाले बीज तैयार किए गए। और जलवायु जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए या बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाए या बहुत तेजी से बहुत ज्यादा पानी आ जाए, इन तीनों स्थितियों से बचने वाले ऐसे सीड तैयार किए गए जो उन फसलों पर इनका असर कम से कम हो या न्यूनतम हो। ये सबसे बड़ा काम किया इन्होंने इनपुट को घटाने का। उससे आगे बढ़ के इन्होंने किया बाजार को, कैसे बाजार इनको कैसे उपलब्ध कराया जाए, बेहतर बाजार। अब हर किसान तक बाजार को पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन नहीं, इस डिजिटल दुनिया में ये बहुत आसान बना दिया इस सरकार ने। प्रधानमंत्री ने कहा ई मार्केटिंग, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसको ई नाम के नाम से जाना गया, और इससे हर किसान अब जुड़ देता है अपने टेलीफोन से, अपने मोबाइल से, वो चाहे तो देश की हर मंडी से वो कनेक्ट होता है, उसे हमेशा पता चल सकता है कि किस मंडी में किस कमोडिटी का या किस उपज का क्या भाव चल रहा है, और अपनी मंडी के अपने व्यापारी से मोल भाव करने का उसे मौका मिल
1: जाता है। रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाता
0: है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। तीसरा सबसे बड़ी बात थी कि जोखिम, किसान कहा जाता था कि ऊपर वाले पर भगवान बरसेंगे तो बारिश होगी, खेती होगी, मतलब सब कुछ ऊपर वाले पर निर्भर था। नहीं, इस सरकार ने इसको तय किया कि नहीं, किसानों को किसी के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। किसान को जोखिम फ्री किया गया, उसको एक ऐसा कवच दिया गया कि उसकी खेती अगर नुकसान हो जाती है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। बीमा योजना लाई गई, प्रधानमंत्री बीमा योजना इतना बढ़िया योजना है कि बहुत नॉमिनल, और जो प्रीमियम जमा होता है वो पैसा किसान नहीं देता, उसका बहुत छोटा सा 5% किसान देता है, बाकी और 2.5% से 5% बाकी सब सरकार के खाते से जाता है किसी भी कंपनी को। उसका फायदा मिला तो जोखिम बच गया है, अच्छे सीड मिल गए, अच्छे इनपुट मिल गए और अच्छा बाजार मिल गया। और सरकार ने इसके अलावा सरकार ने अपनी ओर से एक कवच दिया कि आपका जो भी बाजार के मुकाबले बाजार में मूल्य अगर आपकी उपज का कम मिलता है तो वो सरकार खरीदेगी। सरकार ने इस बात की एक तरह से आज से नहीं बहुत लंबे समय से ये परंपरा चली आ रही है कि सरकार खरीदती है, लेकिन
1: तब से हम न्यूनतम समर्थन मूल्य,
0: न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। किसान इसको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है कि गाढ़े दिनों में सरकार हमारे साथ खड़ी रहती है। सरकार की पूरी कोशिश है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेंगे, लेकिन कोशिश ये होती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद न करनी पड़े, उसकी उपज का मूल्य बाजार में बेहतर मिले। यानी एमएसपी के का जो घोषित मूल्य है, अगर कोई किसी चीज का 2500 रुपए क्विंटल मूल्य है, अगर बाजार में 2700 या 3000 रुपया मिलता है तो किसान 27 या 3000 पर बेचेगा, 2500 पर सरकार को नहीं देगा। यही सरकार की पूरी कोशिश है कि बाजार में उसकी उपज उसके कहे दाम पर मोल तोल के आधार पर बेहतर मूल्य उसको मिले। ये सरकार ने बहुत बेहतर,
1: बिल्कुल। तो जैसा आप कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट और रिम्यूनरेटिव प्राइस दोनों पर ध्यान दिया गया है। मिस्टर अय्यर, व्हाट वुड यू से, यू नो द आइडिया इज टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स एंड एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स ऑल्सो, सो हाउ फार यू फील द फूड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वैल्यू एडिशन mechanisms, they have emerged as the central pillar of your India's farm to market strategy and have been successful.
2: See, the farmer needs correct inputs at the right time, at a right price, and after that, at the time of harvest, he needs some financial help to, you know, take care of the expenditures. Then after the produce is, you know, harvested, he needs a market and a good price that will, I mean, that will take care of his cost as well as give him some reasonable profit to sustain his livelihood. So towards this end, what that he revised, keep into account the rise in the input cost, and as per the Swaminathan committee report, the effort has been to see that at least the cost is covered as per the recommendation to the great extent possible. At the same time, as Sinsap was saying, if the market offers a better price, the farmers have a choice to move on. And with this e-market, I mean with the e-NAM, and along with that, you know, now the lot of attention is being given for storage facilities. See, the biggest problem is when the prices, you know, have not reached their optimum level, the farmer has a problem in disposing his produce. So therefore, he requires a good storage facilities. And we have seen in the last two budgets, and in fact, the last budget has set aside at least 1 lakh crore to particularly to take into account this particular problem. Because you need to see financial risk management, and what is needed today is a large-scale infrastructure investment to increase farm incomes and build these kind of facilities and connectivity. So this is very important. This is the thrust area. So the government has been encouraging also private-public partnership also in this region for having a chain of, you know, cold storage chains in everywhere. Because invariably when you hear stories of, you know, farmer in distress because, you know, the production, there is, like, for instance, a crop like onion or a crop like cotton or even a crop like even tomatoes. See, what happens is suddenly there is a glut in the market and the prices fall. And there is no food processing industry which is developed to the full extent to take care of this. So the government thrust area is food production as well as necessary food processing industry that can take care of these vagaries, cost by nature or by otherwise, to see that the farmer doesn't lose out on getting the best price.
1: Yes. कमिंग टू यू मिस्टर सिंह, अभी आपने थोड़ी देर पहले कोऑपरेटिव मॉडल की बात करी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनी इन 12 वर्षों में, इसका कृषि क्षेत्र को किस तरह फायदा हुआ है, और जिस तरह का हम कोऑपरेशन मॉडल्स कृषि क्षेत्र में देख रहे हैं डेयरी सेक्टर में या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनका क्या फायदा हो रहा है उसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो है या मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये किस तरह का भूमिका प्ले कर रही है?
0: देखिए, कोऑपरेटिव को लाने से पहले कोऑपरेटिव का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, ये सरकार के आने के साथ ही एक नया मंत्रालय बना, सहकारिता मंत्रालय। जिस तरह से उसका विस्तार हो रहा है, गांव शायद ही देश का कोई ऐसा गांव बचा हो जहां पर कोऑपरेटिव आंदोलन न पहुंचा हो। और किसान तो हमें लगता है किसान ऐसा होगा जो किसी न किसी तरह से कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा, चाहे उसे लोन लेना हो, क्रेडिट चाहिए होगा, दूसरा उसे सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, या शुगर का प्रोडक्शन हो, यानी किसी भी चीज से अगर जुड़ा किसान है तो वह कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा। सरकार ने इसको कैसे जोर से दिया, आप समझिए कि डेयरी डिपार्टमेंट को, डेयरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या है। दुनिया का आज की तारीख में हम 25% केले हमारा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया डेयरी में, और प्रोडक्शन वाइज हम दुनिया के नंबर एक प्रोडक्शन करने वाले देश बन चुके हैं। जरा सोचिए कि इतना बड़ा डेयरी सेक्टर में काम करने वाला भारत आखिर कैसे यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया। तो यह आंदोलन सिर्फ सहकारिता के बूते हुआ, सहकारिता के नाते हुआ, और ये पिछले 10-12 सालों में तो कई फोल्ड के, कई गुना के वृद्धि दर्ज कर रहा है, इसकी ग्रोथ बहुत तेज है। डेयरी सेक्टर में सबसे ज्यादा भूमिहीन किसान इसमें काम करते हैं, 2-4-5 पशु रख करके, दुधारू पशु रख लिया और दूध सवेरे उनका कलेक्शन सेंटर पे पहुंचा देते हैं और उनको पैसा मिल जाता है, हाथ के हाथ पैसा मिलता है। कोऑपरेटिव सेक्टर से खाद मिलती है, सारा इनपुट, अब समझिए कि हमें लगता है कि 60-70% किसान फर्टिलाइजर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू कोऑपरेटिव ही जाता है, उनके पास पहुंचता है, और सब उधारी पर मिलता है, सब क्रेडिट पर मिलता है। किसान को जब सख्त जरूरत होती है फर्टिलाइजर की, सीड की, किसी भी इनपुट की, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू ही जाता है, और जब उसकी खेती हो जाती है, जब उसकी उपज तैयार होती है, जब वो मार्केट में बेच लेता है, यानी उपज को खरीदने का भी काम कोऑपरेटिव सेक्टर की एजेंसीज ही करती है। हर स्टेट की अपनी नोडल एजेंसीज हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जो उनके लिए काम करती हैं। अब इसके बाद फिर वो पैसा जमा करते हैं। एक छोटा सा डेटा दूंगा आपको कि पिछले 14 के पहले हमें लगता है कि मुश्किलन 25 से 28 हजार रुपया, या मैक्सिमम मान लीजिए 30 हजार करोड़ कुल टोटल क्रेडिट रही होगी कोऑपरेटिव की ग्रामीण क्षेत्रों में। कोऑपरेटिव सेक्टर का एक कॉर्पोरेशन है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NCDC बोलते हैं, उसका आज की तारीख में जो डिसबर्समेंट है, इस साल का जो बजट है, जो उसका टारगेट है, वह 1.5 लाख करोड़ का है। जरा सोचिए एक साल में, सिर्फ एक वर्ष का 1.5 लाख करोड़, और पिछली सरकारों का, पिछली कितनी सरकारें नहीं, वो सिर्फ 25 और 30 हजार करोड़ पर टिकी रही।
1: तो ये एक आजादी भी मिल रही है छोटे और सीमांत किसानों को जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं उनसे।
0: सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट लेंडर से उनका बचाव हो गया, सूदखोरों से उनको पैसा नहीं लेना पड़ता, अपनी टैक्स से ले सकते हैं या कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हैं। दूसरी बात कि सरकार ने सबको KCC दे रखा है, आपने जो कहा ना कि इस सूदखोरों से तो इनका छुटकारा ही हो गया, क्योंकि KCC आपके हर एक के हाथ में आ गया। हाँ, एक बात और, जितने भी दूसरे एलाइड सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संबद्ध जो क्षेत्र हैं, उन्हें किसान सरकार मानती ही नहीं थी, उनके उनके किसी परिभाषा में आते नहीं थे। आज जो पशुपालक हैं, डेयरी वाले हैं, जो दूध वाले हैं, या मछुआरे हैं, बी कीपिंग वाले हैं, बागवानी करने वाले हैं, इन सबको किसान मान लिया गया है। और किसान क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ किसान को नहीं, खेती करने वाले को नहीं, ये सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी KCC का लाभ मिलता है, यानी बहुत नॉमिनल ब्याज दर पर उनको जितना उनकी डिमांड होती है उसको पैसा मिल जाता है। इसलिए उनकी स्थिति में बहुत भारी सुधार हुआ है।
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, कैन यू टेल अस दैट दिस गवर्नमेंट हैज ऑलवेज हैड एन इंक्लूसिव अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट इन एनी एंड एवरी सेक्टर। सो इफ यू टॉक अबाउट द वल्नरेबल सेक्शन, द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ऑफकोर्स यू मेंशन द PM किसान सम्मान निधि योजना, द वेरी वर्ड सम्मान इज गिविंग रिस्पेक्ट टू द फार्मर्स। देन द फसल बीमा योजना यू टॉक्ड अबाउट, किसान मानधन योजना इज गिविंग पेंशन फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एंड नियरली अबाउट 25 लाख फार्मर्स हैव एनरोल्ड। एंड ऑल्सो अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एंड एनलाइटनिंग स्टेटिस्टिक इज दैट 51% beneficiaries of PM Fasal Bima Yojana belong to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, OBC categories. And of course, you mentioned PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, which is going to benefit 1.7 crore farmers in most low productivity areas, the aspirational districts. So you feel that it is one of the intentions of the government is to take this prosperity to every farmer, be it in a remote area or be it from a backward area?
2: Absolutely, absolutely. You see, the overall philosophy of Prime Minister Modi has been that beech se lekar bazaar tak, and this is a broad concept, you know, from the seed to the market, the final produce, in that whatever process is involved, including the economic condition of the farmer, the health of the farmer, and also use of modern technology. And do not forget, particularly irrigation. Now, in the last budget, they have got it for micro.

0: irrigation, where 5,000 crore has been set apart. See,
1: Yes.
0: apart from major irrigation projects, because the underlying philosophy is per drop more crop. That is, for every drop that is being, water, that is, that the productivity must go up, which will require, streamlining your canals, repair and maintenance of your canals, sub canals, and all these requires, all the ministries of the government along with the state governments. They have to work hand in hand to ensure the benefit reaches everybody. You mentioned about the Dalit farmers, you mentioned about tribal farmers. They have a problem of their own, a very unique problem. That is also being tackled in a different way, particularly, the climatic conditions as well as the land condition. There are places which are receiving rainfall throughout the year. There are
1: Yes.
0: places that do not receive rainfall at all.
1: Yes.
0: So you have already schemes to tackle that also. This particular approach we have seen is there is not one single aspect that is neglected. And
1: Yes.
0: our farmer knows that he has a confidence that this government, whatever problem comes, they will take care of it. And
1: Yes.
0: take, for instance, the role of technology. I want to make a special mention.
1: Yes.
0: Now, Drone Didi Yojana. Now, look at Drone Didi Yojana. This is to empower the women self-help groups in our villages. But that is also connected with agriculture and productivity. Now,
1: Yes.
0: these Didi, Drone Didis are being trained to use the technology for, pesticides, spreading the pesticide, spraying of pesticide, as well as finding out the condition of the crops. We had the vast acreage under crop. What is the condition of the crop? So this kind of technology availability is also giving boost to the farmer, like the soil health card and other things. So the overall idea is, there should be an integrated development.
1: एब्सोल्युटली. सो मिस्टर सिंह, जैसा इन्होंने कहा मिस्टर अय्यर ने कि एक परिकल्पना है कि हम जो विश्व है उसको भी एक्सपोर्ट करें. हम ऑलरेडी एक्सपोर्टर, मेजर एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर बन गए हैं. 2014 से देखें तो 37% बढ़े हैं हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, $51 बिलियन हो गए हैं. और इसमें जो प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स है उनका शेयर भी बढ़कर 20% को पार कर गया है. सो एक शिफ्ट है टुवर्ड्स हायर वैल्यू एडेड. सो एक प्रोग्रेसिव शिफ्ट दिखाई दे रहा है फूड प्रोसेसिंग की तरफ. फूड प्रोसेसिंग पर बहुत सरकार ने जो बल दिया है, PLI भी आया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए. इसके बारे में आप हमें थोड़ी बता सकते हैं, जो वैल्यू एडेड और फूड प्रोसेसिंग है इस पर बल दिया जाना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है?
2: फूड प्रोसेसिंग क्या है कि रॉ फूड आइटम्स, यानी जो कृषि उपज है, अगर उसको हम प्रोसेस्ड करके बेचते हैं, वैल्यू एडिशन कर देते हैं, तो उसका मूल्य बेहतर मिलेगा, किसान को फायदा होगा. हो क्या रहा है कि जैसे हमारे यहाँ जितना दूध पैदा होता है पूरे देश में, दुनिया का सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश, जिसका मोर देन 60% कच्चा यूज होता है, जिसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है, 30-40% ही दूध का अभी अभी तक प्रोसेसिंग हो पाती है. अगर इस दूध की प्रोसेसिंग होने लगे तो बेहतर मूल्य किसानों को और बेहतर मूल्य मिल सकता है और कंज्यूमर्स को भी राहत मिलेगी. इसी तरह से अगर हम देखें हमारे यहाँ जो फिशरी है, फिशरी एक बड़ा सेक्टर है. अगर हम इसकी प्रोसेसिंग सेंटर खोल दें, प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग बेहतर होने लगे, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक डिमांड जो पूरी होगी होगी, और फिशरमैन को बेहतर मूल्य मिलेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, लाभकारी मूल्य मिलेगा. तो हमारे देश में जितने भी अब तक फूड प्रोसेसिंग के वो बने सेंटर बनाए गए, मेगा फूड पार्क बनाए जाते हैं, कितने साल से हमें लगता है 20-21 साल से हम सुनते आ रहे हैं, जब से ये मिनिस्ट्री बनी है, इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ जितनी संभावना है. यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, काम उस गति से नहीं हुआ है. इस सरकार का फोकस पूरा रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री का, कि किसानों की उपज का बेहतर मूल्य तब मिलेगा जब उसके उपज का प्रोसेसिंग होगी, प्रसंस्कृत के तौर पर जाएगा. कोई भी चीज टमाटर के, तो जैसे टमाटर है, आलू है, एक सिंपल वे में अगर टमाटर जाता है तो किस साल के कुछ महीनों तक ही वो सप्लाई की जा सकती है, लीन पीरियड में उसके मूल्य बढ़ जाते हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कंज्यूमर्स पर. तो कंज्यूमर्स को भी प्रभावित ना होना पड़े, किसान को अच्छा मूल्य मिले साल भर, इसके लिए प्रोसेसिंग का होना बहुत जरूरी है. और जितने भी प्रोड्यूस हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उनके सारा प्रोसेसिंग सेंटर उसी जगह पे होना चाहिए जहाँ से वो पैदा होते हैं.
1: तो इस संदर्भ में मिस्टर सिंह, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 1,185 प्रोजेक्ट्स मॉडर्न प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं नवंबर 2025 तक. और जो PLI, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए लाई गई है, जिसके अंतर्गत 169 एप्लीकेशंस को मंजूरी मिली है. और PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम भी है, जिसमें 4 लाख से अधिक एप्लीकेशंस के माध्यम से 1,70,000 से अधिक लोन्स को मंजूरी मिली है. सो आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है, और आपको लगता है कि इसमें, जैसा आप कह रहे हैं, कि स्कोप और भी ज्यादा है?
2: कोरोना के पीरियड में प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, और कही ही नहीं थी बल्कि उन्होंने घोषणा

0: की थी कि 1,00,000 करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड का अनाउंसमेंट किया था और उस फंड का पिछले अगले 5 सालों तक उसका उपयोग किया जाएगा। और अब समझिए कि 1,00,000 करोड़ का एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है तो ये जितना आपने बताया मत्स्य संपदा हो चाहे फूड संपदा हो, जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं बनाई जा रही हैं सब उसका पार्ट है। और इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग के सेक्टर पर पूरा फोकस रहेगा। जब प्रोडक्शन बेहतर होगा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो हो सकता है उसके खराब होने के चांस हो जाएंगे, तो उसको अगर प्रसंस्करण कर देते हैं तो वो हमारी चीज बच जाती है। और कम उत्पादन में बेहतर उपयोग करने का तरीका है प्रसंस्करण। प्रसंस्करण से कई फायदे होते हैं, जो किसान को फायदा, कंज्यूमर को फायदा, और उससे जो उस पूरी चेन बनती है उसमें लोगों को रोजी रोजगार मिलते हैं, इम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है।
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, एज वी मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम दैट वी हैव रीच्ड अ रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड अ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हैज ऑल्सो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड इन द लेटेस्ट बजट प्रमोशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक कोकोनट, कोको, कैश्यू, सैंडलवुड इन कोस्टल रीजन्स एंड अगर ट्रीज इन नॉर्थ ईस्ट एंड आमंड्स, वॉलनट्स एंड पाइन नट्स इन हिली एरियाज, दीज हैव बीन डिफाइंड एज द फोकस एरियाज। सो यू थिंक यू नो दिस काइंड ऑफ वेरी फोकस्ड अप्रोच दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग लुकिंग एट द वेरी वास्ट एंड वेरीड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, दैट इज द वे टू गो फॉरवर्ड यूजिंग द स्ट्रेंथ्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी?
2: No, you have raised a very, very important dimension to the government's priority. Particularly, yes, you talked of the need for to go in for high-value crops. You know, in fact, the Prime Minister, soon after the last budget, you know, he specifically addressed a webinar where he spoke about this and he appealed to the farmers to take care of this diverse climatic condition and focus on scaling up the harvest of these high-value crops. Yes. And some of the crops you mentioned. Because today, as the Prime Minister looks at the possibility of Indian farmers getting great access to world market, it is important for to take care of quality, to take care of branding and standards of our produce. This is very, very important. And for that, you know, agriculture experts, industry and farmers will have to jointly work towards this goal, which is actually the thrust area. Because as the markets of world are opening, as the Prime Minister himself put it, and global demand is changing, so we need to see that how we are more export oriented in our production. That is very, very important because we have a rich agroclimatic zones. That is why, you know, Prime Minister particularly mentioned, you know, you mentioned cashew, cocoa, sandalwood, and this national mission on edible oil and pulses and the national mission for natural farming are particularly to meet this objective.
1: Thank you so much, Mr. Iyer. We are running out of time. Thank you so much, Mr. Singh, for this in-depth discussion on the various aspects of the progress in agriculture and farmers' welfare that has taken place in the last 12 years of the NDA government and the way forward. Thank you.
2: Thank you very much.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: इन द स्पेशल सीरीज यू वर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट Empowering farmers through welfare and farmer-centric policies. The participants were Shekhar Iyer, political analyst, and S.P. Singh, senior journalist. The moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
5: समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष किसान कल्याण कार्यक्रम सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। एक्शन रीप्ले से सुनिए ये गीत दलेर मेहंदी की आवाज में, जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने और प्रीतम ने दिया है संगीत।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश और अब लेते हैं एक अंतराल।
1: विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करती हुई एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज

0: कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने

0: स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास एक रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत

0: अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी है, जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। हुकूमत ने सीबीएसई की जानिब से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए खिदमात की दस्तियाबी की जांच के सिलसिले में पैनल तश्कील दिया है। हुकूमत ने लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का चेयरपर्सन मुकर्रर किया है। भारत ने नेपाल के साथ बाहमी मामलात के हल के लिए किसी तीसरे फरीक की शमूलियत को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने फिजा से जमीन पर वार करने वाले अंदरून मुल्क तैयार करदा रुद्रम 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने अपने आगाज के 2 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ से ज्यादा सारेफीन का संगे मील पार कर लिया है। यूक्रेन में रूसी हमलों में 21 अफराद हलाक हो गए हैं। और खवातीन क्रिकेट में आज रात टोंटन में तीसरे और आखिरी T20 बैनुल अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने सीबीएसई की जानिब से ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM सिस्टम खिदमात की खरीद से मुतालिक मामलात की जांच के लिए एक रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी की सरबराही सलाहियत साजी कमीशन की चेयरपर्सन राधा चौहान करेंगी। कमेटी से अपनी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर अमले

0: और तरबियत के महकमे को पेश करने को कहा गया है। तलबा को फराहम करदा स्कैंड कॉपियों में पाए गए मामलात के वेरिफिकेशन का अमल और 12वीं जमात के जवाबी पर्चों की दोबारा जाँच जारी है। ये सहूलत सिर्फ उन्हीं तलबा को दस्तियाब है जिन्होंने जाँच किए गए अपने जवाबी पर्चों की स्कैंड कॉपी हासिल की हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: सरपंचन अनासर की जानिब से लगातार साइबर हमलों की वजह से रुकावट के बाद CBSE पोर्टल जल्द ही लाइव कर दिया गया है। ताहम CBSE ने यकीन दहानी कराई है कि वो तलबा की हर तरह से मदद को यकीनी बनाने के लिए लगातार चौकसी बरत रहा है। CBSE ने मजीद कहा है कि तलबा के फीडबैक की बुनियाद पर प्लेटफॉर्म को मजीद बेहतर किया गया है और सेशन टाइम में भी इजाफा किया गया है ताकि कामकाज को ज्यादा आसान तर्ज पर और बिला रुकावट तरीके से अंजाम दिया जा सके। CBSE ने कहा है कि 12वीं जमात के जवाबी पर्चों की दोबारा जांच से मुतालिक उसका पोर्टल फिलहाल 8,000 से ज्यादा सारिफिन की मदद कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में CBSE ने बताया है कि 16,000 से ज्यादा तलबा अब तक कामयाबी से अपने मंदरजात पेश कर चुके हैं। CBSE का पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा और ऑफलाइन दरख्वास्तें या मुद्दत गुजरने के बाद दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएंगी। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: इस दौरान सीनियर IAS अफसर लोखंडे प्रशांत सीताराम को सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE का नया चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। जनाब सीताराम वजारत दाखिला में एडिशनल सेक्रेटरी की खिदमात अंजाम दे रहे थे। उनकी तकरूरी राहुल सिंह की जगह हुई है जिनका बतौर एडिशनल सेक्रेटरी ज़िरात और किसानों की बहबूद के महकमे में तबादला कर दिया गया है। हुकूमत ने वरुण भारद्वाज को भी CBSE में सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। वो आला तालीम के महकमे में डायरेक्टर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। तकरीरों से मुतालिक काबीना की कमेटी ने इन तकरीरात को मंजूरी दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तालीम बाख्तियार बनने का ताकतवर वसीला है जो लोगों को खुदकफील बाखबर और बासलाहियत बनाती है। सदर जमहूरिया आज नई दिल्ली में स्कॉलरशिप स्कीम के कबायली मुस्तफदीन से खिताब कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हकीकी मानी में तरक्की तभी मुमकिन है जब माशरे के सभी तबकात समाजी इकतसादी और तालीमी तरक्की करें।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: सदर जमहूरिया ने इस बात को उजागर किया कि हुकूमत की स्कॉलरशिप स्कीमों ने कबाइलियों की जिंदगी में यकसर तब्दीली लाई है और उनके लिए आला तालीम और नए मौके तक रसाई मुमकिन हो पाई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा कि भारत में हुनर की कोई कमी नहीं है और उन्होंने उसे फरोग देने के लिए उसकी निशानदेही करने, परवान चढ़ाने और सही मकाम अता करने पर जोर दिया।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि आप जैसे अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की गुज़िश्ता 12 साल के दौरान दूरंदेश क़यादत ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र के तहत भारत में खातिर खा तब्दीली लाई है। इस मुदत के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम के बारे में खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम के बारे में हम बात करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान भारत में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के सिमत में नुमाया तब्दीली हुई है जो हुकूमत की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है। इन कोशिशों का मकसद ख़वातीन को सेहत, तालीम, रोज़गार के मौके, माली शमूलियत और क़यादत के शोबों तक रसाई को बेहतर बनाना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो 2015 में शुरू की गई थी ने लाखों ख़वातीन को अपना कारोबार शुरू करने और इसे वसअत देने के लिए बग़ैर ज़मानत के कर्ज हासिल करने के काबिल बनाया है। इस स्कीम के तहत रवा माली साल मार्च तक 40 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज मुस्तफिदीन को फराहम किए गए हैं जिनमें से 17 लाख करोड़ रुपए खवातीन को दिए गए। प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमनिया जैसे अहम प्रोग्रामों ने मुश्तरका तौर पर खवातीन की बैंककारी बचत और कारोबारी प्लेटफार्म तक रसाई को मजबूत बनाया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 33 करोड़ अकाउंट्स खवातीन के नाम हैं। दीपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने जोर देकर कहा है कि भारत और नेपाल के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में किसी तीसरे फरीक का कोई रोल नहीं है। वजारत खारजा में तर्जमान रणधीर जायसवाल ने नेपाल के वजीर आजम की भारत नेपाल सरहद से मुतालिक रायजनी और उसके बाद नेपाल की वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा बयान के जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरहद से मुतालिक मामलात के सभी पहलुओं से निमटने के लिए कायम शुदा बाहमी तरीक़ेकार मौजूद है। जनाब जायसवाल ने कहा कि हालांकि भारत नेपाल सरहद के तकरीबन 98% हिस्से की वाजह तौर पर हदबंदी हो चुकी है, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा है जिस पर काम होना है।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा

0: 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार,
1: लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा है जिस पर काम होना है।
0: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा

0: 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा
1: रोड्रिगेज कल से भारत के 4 रोजा दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि उनके हमरा खारजी उमूर, इक्तसादी व मालियात, साइंस और टेक्नोलॉजी, मवासिलात व इत्तलात और नकल व हमल के महकमों के वुजरा भी होंगे। जनाब जायसवाल ने कहा कि मोहतरमा रोड्रिगेज अपने दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी से दोतरफा बातचीत करेंगी। इस बातचीत में तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, सेहत देखभाल, अद्वियात और काबिल तजदीद तवानाई जैसे शोबों में इश्तराक के इम्कान तलाश करने पर तवज्जो मरकूज।

रोनुमा होने वाले हालात को पूरी सच्चाई के साथ अपनी तख्लीकात में पेश करते थे। उनकी शायरी में इनकलाब, उम्मीद और जद्दोजहद का पैगाम नुमाया तौर पर मिलता है। वो मायूसी के बजाय हौसला और तब्दीली के कायल थे, जैसा कि उनका मशहूर शेर है, इनकलाब आएगा रफ्तार से, मायूस ना हो, बहुत आहिस्ता नहीं है जो बहुत तेज नहीं। सामीन, अब समाप्त फरमाइए प्रोग्राम की पहली पेशकश, टी धर्मेश की आवाज में मुराद की गजल।

मी अवार्ड, सोवियत लेनिन नेहरू अवार्ड और पद्मश्री जैसे एजाजात से नवाजा गया। यकुम अगस्त 2000 को उनका इंतकाल हुआ और मुंबई के जूहू कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किए गए। डॉक्टर वहीद अख्तर के मुताबिक सरदार जाफरी की शख्सियत मुख्तलिफ फिक्री, तहजीबी और अदबी अनासर का हसीन इम्तिजाज थी। उन्होंने अपनी रासिकुल अकीदा तरक्की पसंदी के बावजूद तख्लीकी हुस्न, फनी वकार और अदबी अजमत को हमेशा बरकरार रखा और यही उनकी असल बढ़ाई और असरी मानवियत का राज है। सामीन, इसी के साथ ये प्रोग्राम खत्म होता है। अब आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है उर्दू प्रोग्राम कहकशां, मारिफत स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी, शामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 4620002। इसी के साथ रुश्ता को इजाजत दीजिए।

0: कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। सुनिए डॉन फिल्म से ये गीत आशा भोसले की आवाज में। इंदिवर के लिखे हुए बोल हैं जिन्हें संगीत में पिरोया है कल्याण जी आनंद जी।

और अब अगली आवाज सुनिए किशोर कुमार की फिल्म घर से। ये गीत लिखा है गुलजार ने, जिसे संगीत में पिरोया है आर डी बर्मन ने।

जमाने को दिखाना है फिल्म से अगला गीत सुनिए आरडी बर्मन और साथियों की आवाज में, लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत दिया है आरडी बर्मन।

की आग में जल मरने वालों के, मगर अफसोस आज की दुनिया में मजनू फरहा रांझा तो है, मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों आशिक फिर भी आशिक है, और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है, एक ही बात कहना चाहता है, बोलिए क्या।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का, और अगला गीत सुनिए कॉलेज गर्ल फिल्म से, जिसके गायक और संगीतकार हैं बप्पी लहरी और रचनाकार हैं शिव कुमार सरोज।

मोहम्मद रफ़ी, आरडी बर्मन और साथियों की आवाज़ में अगला गीत सुनिए शान फिल्म से, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए कुर्बानी फिल्म से। नाजिया हसन की आवाज है, इंदी बर्की लिखे हुए बोल, जिन्हें संगीत में पिरोया है बिद्दू ने।

इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आनंद लीजिए ख्याल गायन का। राग है गौड़ मल्हार। प्रस्तुत कर रहे हैं रामदास मुंगरे।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी का आनंद ले रहे थे। आपने सुना ख्याल गायन राग गौड़ मल्हार में, प्रस्तुति थी रामदास मुंगरे की। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान अपने।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की।

मीडियम वेव न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आकाशवाणी प्रसारण सेवा लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।